सुप्रभात। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 28वीं तिथि, तदनुसार ईस्वी सन 2026 के जून माह की 18 तारीख। सुबह के 5:58 और 50 सेकंड हो रहे हैं। हम उपस्थित हैं अपनी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। इस सभा में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। अब समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोद्योमिर जेलेंस्की, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
2: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान की बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। खेती किसानी कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुनते हैं, पशुपालन पलायन रोकने में कितना मददगार है, इस संदर्भ में जानकारी अनिता तिर्की से।
3: पलायन का सबसे प्रमुख कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त न होना है। यद्यपि कुछ ग्राम पंचायतों में रोजगार के अवसर उपलब्ध भी हैं, तो ग्रामीण श्रमिकों के जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि खेती से अपर्याप्त लाभ। हमारे यहाँ की खेती पूरी रूप से मानसून पर निर्भर करती है। अगर अच्छी मानसून हुई तो साल के कुछ महीनों में ग्रामीणों को रोजगार मिल जाता है, परंतु ज्यादा महीनों में उन्हें खेत में कार्य करने में कुछ भी नहीं रह जाता और वे पलायन के लिए मजबूर हो जाते हैं। प्राचीन समय में पशुओं की सहायता के बिना खेती संभव नहीं था। खेती के अधिकांश कार्यों में जानवरों का सहारा लिया जाता था, लेकिन आज आधुनिक यंत्र जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर, वाटर पंप इत्यादि के इस्तेमाल के चलते पशुओं का खेती में इस्तेमाल कम होते जा रहा है। परंतु आज की खेती के साथ पशुपालन के कई लाभ भी हैं। यह एक प्रकार से इंटीग्रेटेड खेती है, जिसमें फसलों और पशुओं दोनों का लाभ मिलता है। पशुओं से मिलने वाले गोबर और मूत्र से भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। खेती से हम वर्ष भर आमदनी ले नहीं पाते, लेकिन पशुपालन से हमें वर्ष भर नियमित रूप से आय प्राप्त होती है। पशुपालन का अर्थ केवल गाय बैल पालना ही नहीं, बल्कि गाय भैंस भेड़ बकरी सुअर मुर्गा बटेर बत्तख जैसे पशु पक्षी भी पशुपालन का हिस्सा है। अगर आधुनिक तकनीक और तरीकों से इनमें से किसी का भी पालन किया जाए तो यह

0: लाभ का एक महत्वपूर्ण स्रोत होगा। उपयोगिता के दृष्टिकोण के फार्म में विभिन्न प्रकार के पशु पाले जाते हैं। दुधारू पशुओं को दूध देने के उद्देश्य से पाला जाता है, जैसे कि गाय और भैंस। इन पशुओं से हमें दूध प्राप्त होता है। दूध की मांग बाजार में आजकल बहुत है और इसकी अच्छी कीमत भी मिल जाती है। मांस के लिए उपयुक्त पशु जैसे बकरी, भेड़, सुअर, मुर्गी आदि के मांस को उत्पादन के लिए रखा जाता है। मांस के लिए उपयुक्त पशु जैसे बकरी, भेड़, सुअर, मुर्गी आदि को मांस उत्पादन के लिए रखा जाता है। आजकल बाजार में मांस की अत्यधिक मांग है, इसलिए इन पशुओं से भी अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। मुर्गी और बत्तख को अंडा के लिए पाला जाता है। आजकल बाजार में अंडों की मांग भी बढ़िया है, इसलिए इन पशुओं को पालने से अच्छी मात्रा में अंडे प्राप्त हो जाते हैं और बाजार में महंगे बिककर पशुपालकों की आय में वृद्धि करते हैं। पशुपालन को लाभकारी बनाने के लिए परंपरागत तरीके से करने के बजाय यदि आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से किया जाए तो कम खर्च में ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। इसके लिए मोटे तौर पर विशेष रूप से तीन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जिसके अंतर्गत पशुपालकों को पशु प्रजनन या नस्ल का चुनाव, खिलाई पिलाई और सामान्य प्रबंधन के साथ पशु रोग के बचाव की जानकारी होना आवश्यक है। इन बातों का उचित ध्यान नहीं रखने पर अधिक खर्च करने के बाद भी पशुपालक पशुपालन को लाभकारी व्यवसाय नहीं बना सकते। अगर एक किसान 10 से 12 लीटर औसत दूध उत्पादन वाली 5 गायों का पालन करे तो प्रति माह उन्हें कम से कम 20 से 25,000 रुपए की शुद्ध आमदनी होगी और एक साल में 2.5 से 3 लाख रुपए तक की आमदनी होगी। अगर आप 10 बकरी को वैज्ञानिक तरीके से पालेंगे तो 2 साल में लगभग 80 से 100 बच्चे की बिक्री कर सकते हैं और 2 सालों में इससे आपको मुनाफा 4 से 5 लाख शुद्ध होगी। उसी तरह सुकर पालन भी एक लाभकारी व्यवसाय है। सुकरी एक बार में 8 से 12 बच्चों को जन्म देती है, जो लगभग 7 से 9 महीने में मांस के लिए तैयार हो जाते हैं। इसका वजन 70 से 90 किलो हो जाता है। साल भर में 10 सुकरी और 1 सुकर से आप 4 से 5 लाख रुपया शुद्ध आमदनी कमा सकते हैं।
1: खेती किसानी कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पशुपालन पलायन रोकने में कितना मददगार, जानकारी दे रही थी अनिता तिर्की। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं चिंतन, संकलन एवं वाचन है दिनेश कुमार लाल का।

0: खराब आदतों को त्यागना ही विसर्जन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार हैं, और जब हम इनका त्याग करते हैं तो यही विसर्जन है। साथ ही जहां खुद का ध्यान ना रहे, यानी इस आत्म तत्व को जब तक हम उस परम तत्व में विलीन कर देते हैं, तो हम स्वयं का विसर्जन करते हैं। कोई भी मनुष्य ना तो संपूर्णतः अच्छा है और ना ही कोई 100% खराब। प्रत्येक मनुष्य में अच्छी और खराब दोनों आदतों का समावेश होता है, लेकिन प्रत्येक मनुष्य के जीवन का ध्येय यही होना चाहिए कि वो विकारों से दूर रहे। हमें हमेशा खराब आचरण को दूर करके सदा आचरण को अपनाना चाहिए। बहुत से लोग नए साल में या किसी अन्य विशेष दिवस पर प्रण करते हैं कि वे अपनी समस्त खराब आदतें त्याग देंगे, लेकिन उनका प्रण 2-4 दिन में ही टूट जाता है। इसका कारण उनका मन है, जिसे वे साध नहीं पाते, और यही मन उन्हें विचलित कर देता है। इसके लिए अपनी इच्छा शक्ति भी दृढ़ करनी चाहिए। उसे मन से दृढ़ता पूर्वक ये मानना चाहिए कि निश्चित तौर पर खराब आदतें दूर हो सकती हैं। खराब आदतें मनुष्य का चरित्र नहीं, बल्कि उसका स्वभाव है, और वो इससे छुटकारा पा सकता है। विसर्जन का मतलब यही है कि ब्रह्मांड से हम आत्म तत्व के रूप में आए और फिर उसी में विलीन हो गए। कबीरदास जी से किसी ने पूछा कि आत्मा क्या है और मनुष्य के मरने के बाद ये कहाँ चली जाती है। कबीरदास जी ने कहा कि जैसे घड़े में आप पानी रखिए और उसे तालाब में रख दीजिए, तो घड़े और तालाब का पानी अलग अलग होगा, लेकिन जैसे ही घड़ा फूटता है वैसे ही भीतर का पानी तालाब में मिल जाता है। इसी तरह हमारा शरीर भी एक घड़ा है, आत्मा इसके अंदर जल के समान है। जैसे ही शरीर से यह निकलती है तो वो सागर रूपी ब्रह्मांड में मिल जाती है। मनुष्य को सोचना चाहिए कि जो कुछ भी दुनिया में चल रहा है ये सब प्रभु की संरचना है, और इसमें हम मात्र एक खिलौने हैं। हम केवल अपनी भूमिका निभाने आए हैं और अपने हिस्से का अभिनय करके चले जाएंगे। जब आपको हमेशा इस बात का ज्ञान और आभास रहता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो एक धोखा है और इसमें कुछ भी शाश्वत नहीं है तथा सभी कुछ अस्थाई है, तभी मनुष्य स्वयं को विसर्जित कर पाता है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, संकलन एवं वाचन था दिनेश कुमार लाल का। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम में सबसे पहले समवेत स्वर में ये गीत निराला की रचना है, संगीत कानू घोष की।

अभी आप समवेत स्वर में ये देशभक्ति रचना सुन रहे थे। गीत था निराला का और संगीत कानू घोष का। और अब भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कुछ भक्ति गीत। ये पहला गीत हरिओम शरण की आवाज में, रचना भी हरिओम शरण की ही है, संगीत है मुरली मनोहर स्वरूप का।

और ये अगला भक्ति गीत है पंडित सुखदेव और पंडित गोपाल शर्मा के स्वर में। शब्द रचना पंडित रामानंद शर्मा की है और संगीत मुरली मनोहर स्वरूप का।

और ये अगला भक्ति गीत है, जगजीत सिंह की आवाज़ में, संगीत भी जगजीत सिंह की है और इसे लिखा है सूरदास ने।

कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको सुनवाते हैं भूपेंद्र के स्वर में ये अगला भक्ति गीत। पारंपरिक रचना है, संगीत दिया है मुरली मनोहर स्वरूप ने।

और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं सुधा मल्होत्रा की आवाज में ये रचना, सुमित्रा कुमार सिन्हा की है, संगीत है रघुनाथ सेठ का।

0: और अब इसी रचना के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।
1: 3

राजा दशरथ ने कैकेयी को कई प्रकार से समझाया। अनु ने विनय की कि वो विवेक से सोच समझकर दूसरा वर मांगे, क्योंकि राम के बिना उनका जीवन नहीं रह पाएगा। किंतु राजा के कोमल वचन कैकेयी की क्रोधाग्नि में मात्र आहुति का काम कर रहे हैं। रानी की एक ही टेक है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहां आपकी माया नहीं चलेगी। या तो जो वर मैंने मांगा है वो दे, नहीं तो ना ही करके अपयश के भागी बने। सवेरा होते ही यदि राम मुनिवेश धारण करके वन को नहीं जाते तो हे राजन, निश्चय जानिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश।

इतना कहकर कैकेयी ऐसे उठ खड़ी हुई जैसे क्रोध की नदी उमड़ी हो। दो वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का हठ उस नदी की तीव्र धारा है, मंथरा की प्रेरणा भंवर है, और क्रोध रूपी वो नदी राजा दशरथ को मूल रूप से ढहाती हुई विपत्ति के समुद्र की ओर ले चली है। राजा ने समझ लिया कि स्त्री के रूप में मृत्यु उनके सिर पर नाच रही है। उन्होंने कैकेयी के चरण पकड़कर विनती की कि वो सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी न बने, वो उनका मस्तक मांग ले जो वो शीघ्र दे देंगे, राम के विरह में उन्हें न मारें। किंतु राजा की गुहार व्यर्थ हुई। उन्होंने जान लिया कि रोग असाध्य है। अत्यंत आर्तवाणी से हा राम कहकर वो पृथ्वी पर गिर पड़े।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब आपको जानकारी दिए चलते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के संदर्भ में कुछ जानकारियां। अब से थोड़ी देर बाद 7:05 पर आप सुनेंगे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। इसके अंतर्गत भेंटवार्ता होगी कंधा का जाम होना और उपचार। भेंटवार्ताकार होंगे डॉक्टर पवन कुमार, भेंटकर्ता संजीव कुमार लाल। 7:15 का वक्त होगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम सुबह सुरेली का। 7:45 पर आप सुनेंगे खुला आकाश कार्यक्रम के अंतर्गत एक वार्ता, विषय है विश्व फलक पर हिंदी कविता। वार्ताकार हैं डॉक्टर रवि भूषण। प्रातः 8:45 पर लोकगीत का कार्यक्रम होगा लोकरंग। इसमें आज आप सुनेंगे खोठा लोकगीत, कलाकार होंगे रीता कुमारी और उनकी साथी। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा रसरंजन प्रातः 9:00। नौ बजकर 30 मिनट पर शास्त्रीय संगीत के आयोजन में आज आप सुनेंगे चिर सुंदर ठाकुर से सितार पर राग ललित में आलाप और जोड़ के बाद दो गतें। दोनों ही गतें 3 ताल में निबद्ध होंगी। गायक कलाकार तो आप जान रहे हैं चिर सुंदर ठाकुर होंगे। तबले पर संगत कर रहे हैं संदीप चटर्जी। 10:00 का वक्त होगा विज्ञान जगत कार्यक्रम का। इसके अंतर्गत चर्चा होगी प्लास्टिक बोतल के उपयोग से करें परहेज। साथ ही भेंटवार्ता आप सुनेंगे वर्तमान जीवन शैली में योग के फायदे। भेंटवार्ताकार होंगे प्रियंका विश्वकर्मा, भेंटकर्ता बसंत कुमार। प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की। 10:30 का वक्त होगा जानकारी और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम जुहार रांची का। प्रातः 11:30 पर आप सुनेंगे अपनी पसंदीदा फिल्मी गीतों को आपकी पसंद कार्यक्रम के अंतर्गत। दिन के 12:00 महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम लेकर आएंगे गृहलक्ष्मी। इसके अंतर्गत चर्चा होगी स्थानीय परिवेश और संस्कृति के अनुरूप हो भोजन, उतना ही लें थाली में अन्न न जाए नाली में। साथ ही एक बाल ध्वनांकन पर आधारित खाद्य सुरक्षा और भारतीय कृषि के संदर्भ में जानकारी होगी और आपको जानकारी मिलेगी AI का बढ़ता प्रयोग और सावधानी के संदर्भ में। प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की। 12:30 का वक्त होगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। एक बजकर 20 मिनट पर आप सुनेंगे उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। कलाकार होंगे सिद्धेश्वरी देवी। 1:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। आज इसके अंतर्गत आप सुनेंगे गजल गुलाम अली, मेहंदी हसन और जगदीश सिंह के स्वर में। फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा जय भारती 2:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग होगा 3:00। रांची मेलोडीज

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अब समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, पहले संस्कृत फिर हिंदी में।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। फ्रांस देशस्य यात्रावधौ स्वकीय प्रवासस्य चरमे सोपाने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः रात्रौ पेरिस नगरं सम्प्राप्तवान्। पेरिस नगरे आगमन समये विश्रांति निलये एकत्रिताः भारतीय समुदायस्य सदस्याः उत्साहपूर्वकं तदीय भव्यं स्वागतम् अकुर्वन्। अद्य प्रधानमंत्री प्रमुख विपणीनां मुख्य कार्यकारिभिः सह चर्चां करिष्यति। तदनन्तरं सः यूरोप महाद्वीपस्य प्रमुख प्रौद्योगिकी मञ्चे विवाटेक शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति, तत्र च स्वसम्बोधनं प्रदास्यति। सायंकाले असौ एकस्मिन् सामुदायिक कार्यक्रमे भारतीय प्रवासिभिः सह संवादं विधास्यति। G7 देशैः वैश्विक स्थिरतायाः सुरक्षा सहयोगस्य अथ सीमापार संघटित अपराध निवारणस्य उद्देश्येन विभिन्नाः प्रमुखाः घोषणाः विहिताः। मुख्य वक्तव्ये नेतृभिः अमेरिका ईरान देशयोर्मध्ये संजातं संधि निश्चयम् अभिनन्दितम्। अन्य घोषणापत्रे G7 देशैः मादक द्रव्यस्य अवैध कार्यं निरोद्धुं संकल्पो विहितः। अस्मिन् अभियाने ब्राजील दक्षिण कोरिया देशौ अपि सहमतिं प्रदर्शितवन्तौ। फ्रांस देशस्य एवियन नगरे चलायमाने G7 शिखर सम्मेलने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सर्वहितकारी सतत आर्थिक विकासः इत्याख्ये मुख्य विषये आयोजितायां महत्वपूर्ण कार्यगोष्ठ्यां भागं भजते। सत्रेऽस्मिन् G7 देशाः सहभागी राष्ट्राणि अन्ताराष्ट्रिय मुद्रा कोषस्य OECD इत्यस्य च प्रतिनिधयः उपस्थिताः सन्ति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य मध्यप्रदेशस्य ओडिसायाः च पञ्चदिवसीयायां यात्रायाम् अस्ति। प्रथमदिवसे सा मध्यप्रदेशस्य बैतूल नगरे आध्यात्मिक जागृत्या जनजातीय समाजस्य सशक्तिकरण कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। द्वितीयदिवसे सा ओडिसायाः

0: श्रीरंगपुरे चिकित्सा शिविरस्य ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनायाः च उद्घाटनं विधास्यति। तृतीय दिवसे राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह पहाड़पुरे कौशल केन्द्रस्य निरीक्षणं करिष्यति, सहैव रायरंगपुरे जनसभां च संबोधयिष्यति। चतुर्थ दिवसे 7 जून मासस्य 21 दिनांके जबलपुरे अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसोत्सवे भागं ग्रहीष्यति, सहैव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालयस्य दीक्षांत समारोहे अध्यक्षतां विधास्यति। यात्रायाः चरमे सोपाने साख्यूनो राष्ट्रिय उद्याने सहरिया जनजातीय सदस्यैः चीता अन्वेषकैः च सह संवादं विधास्यति। संयुक्त राष्ट्र संघस्य खाद्य संस्थाभ्याम खाद्य एवं कृषि संघटनेन अथ विश्व खाद्य कार्यक्रमेण च विज्ञापितं यत् आगामिषु मासेषु युद्ध जलवायु परिवर्तन धन न्यूनता कारणात् विश्वस्य 13 प्रमुख क्षेत्रेषु बुभुक्षा संकटं अधिकं गभीरं भविष्यति। संयुक्त प्रतिवेदनस्यानुसारं सम्प्रति जगति 66.2 कोटि जनाः तीव्र खाद्य असुरक्षया पीडिताः सन्ति। अस्यां सूच्यां सुडान, दक्षिण सुडान, यमन, फिलिस्तीन, नाइजीरिया, सोमालिया चेत्यादयः देशाः अत्यधिक संकटग्रस्ताः सन्ति। प्रतिवेदने चिन्ता प्रदर्शिता यत् 20-22 तः परं मानवीय सहायतायै प्राप्यमाणं धनं 60% न्यूनं जातम्। WFF संस्थायाः कार्यवाहक निदेशकः कार्ल स्काउ महोदयः अवोचत् यत् यदि शीघ्रं किमपि कार्यान्वयनं न क्रियते तर्हि कोटिशः जनाः दुर्भिक्षस्य गर्ते पतिष्यन्ति। हॉकी क्रीडायां नीदरलैंड देशस्य राइडरहेम नगरे प्रचल्यमाणायाः FIH प्रो लीग स्पर्धा मालिकायाः द्वन्द्वे भारतीय पुरुष हॉकी दलेन जर्मनी दलं 3-1 इत्यांकान्तरालेन पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
2: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। इसमें ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने, डीप फेक और बच्चों के शोषण जैसी चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया गया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99

0: प्रतिशत वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिसिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रो लीग हॉकी मैच में भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से मनदीप सिंह, शिलानंद लाकड़ा और नीलकांत शर्मा ने गोल किए। ये मनप्रीत सिंह का 413वां अंतर्राष्ट्रीय मैच था। उन्होंने भारत के लिए सबसे अधिक मैच खेलने का कीर्तिमान बनाया। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रम के लिए देशभर में 1,70,000 से अधिक आयोजकों ने पंजीकरण कराया है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि योग संगम स्वास्थ्य के माध्यम से एकता का उत्सव है। इसके तहत देशभर में हजारों स्थानों पर लोग एक साथ योग करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य योग को जन जन तक पहुंचाना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं भेंटवार्ता। कंधा का जाम होना और उपचार। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर पवन कुमार, भेंटकर्ता संजीव कुमार लाल।
2: मित्रों नमस्कार। बदलती जीवन शैली और बिगड़ता खान पान, इसके कारण बहुत सारी समस्याएं हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती जा रही है। फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है और हम आराम तलब हो गए हैं। ऐसे में एक बीमारी जो चुपके से आपके अंदर प्रवेश करती है, धीरे धीरे वो जगह बनाती है, वो है कंधे का दर्द। कंधा आपका जाम हो जाता है, हाथ आपका ऊपर नहीं उठ पाता है और आप दर्द से परेशान हो जाते हैं। तो ये कंधे का दर्द क्यों हो जाता है, कंधा आपका जाम क्यों हो जाता है, आपकी हाथ ऊपर क्यों नहीं उठती है, क्या कारण है, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित हैं अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन कुमार। डॉक्टर साहब स्वागत। डॉक्टर साहब, कंधे में दर्द, कंधा का जाम हो जाना, बड़ी परेशानी हो जाती है, क्या कारण है, जीवन शैली से इसको आप किस प्रकार जोड़ते हैं?
3: कंधे का जाम होना स्टिफनेस हो जाता है, जिसको जकड़न बोलते हैं, और साथ में दर्द होता है। ये मुख्यतः इसके 2-3 स्टेजेज होते हैं। जैसे शुरुआत में उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग स्टेज, फिर बोलते हैं फ्रोजन स्टेज, फिर बोलते हैं थाविंग स्टेज। फ्रीजिंग स्टेज में क्या होता है, शुरुआत जब होता है ना, तो पहले कंधा आदमी उठाना धीरे धीरे कम हो जाता है, बंद हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन जो मूवमेंट की जो समस्या होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब मुश्किल मरीज को ऐसा हो जाएगा कि 90 डिग्री से भी ज़्यादा उठा नहीं सकता, मैक्सिमम 80 डिग्री 70 डिग्री ज़्यादा उठ नहीं पाता। साथ में उसको ज़रा सा भी अगर किसी तरह से कुछ डेली एक्टिविटीज करना पड़ेगा तो दर्द होगा। हालांकि ये चीज़ साल भर 2 साल के बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने से कम भी हो जाता है, बट नतीजा उससे बिल्कुल सही नहीं होता, उसके लिए आपको इलाज कराना पड़ेगा। और ये स्टेजेस जो होती है वो डिपेंड करता है, नॉर्मली ये महिलाओं में ज़्यादा होता है और बस मेनली 40 साल से ऊपर के लोगों में ज़्यादा होता है।
2: जी, तो ये एक हाथ में होता है या फिर शनि शनि दूसरे हाथ में भी ये शुरू हो जाता है?
3: जनरली ये डोमिनेंट हैंड में ज़्यादा होता है, जिसे राइट जिसका राइट हैंड यूजर से उनको राइट साइड में ज़्यादा होगा। वो यूज़ कम करने से या कभी चोट लगने के कारण, डिसयूज का होने से, जैसे उसी बल पे आप लेटे रहे हैं बहुत देर तक, हाथ आप बहुत समय से उठा नहीं रहे हैं, साथ में उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे किसी को डायबिटीज़ की बीमारी है, शुगर में खास करके 10-20% लोगों में जिनको भी डायबिटीज़ है उसमें ये प्रॉब्लम होना ही होना है। हर 5वें आदमी जो डायबिटीज का पेशेंट है उसको कंधे की समस्या

0: समस्या ज़्यादा होगी। थायराइड का अगर प्रॉब्लम है, हाइपर थायराइड है, ट्यूबरक्लोसिस है या पार्किंसनिज्म है जिसकी वजह से आदमी का एक्टिविटीज़ रिलेटिवली कम हो जाता है, तुलनात्मक कम हो जाता है, उसको ये समस्या ज़्यादा होता है। तो आपको फिर उस हिसाब से जब प्रॉब्लम जैसा होगा उस हिसाब से आपको फिर पर्टिकुलरली जांच कराना चाहिए और इलाज कराना चाहिए।
1: जी, जो जीवन शैली हमने अपनी बिगाड़ ली है, खान पान तो बिगड़ा हुआ है ही, लोग बड़े आराम परस्त हो गए हैं, तो ये कितना हद तक जिम्मेदार है इन सब चीज़ों के लिए?
0: देखिए, बेसिकली आदमी को एक्टिविटी जितना आप करेंगे उतना बेसिकली डीप मिनरलाइजेशन नहीं होगा, जितनी बोन की जो ट्रेबुकुलर जो हड्डी का जो होता है पैटर्न होता है वो मेंटेन रहेगा, बोन में जो कैल्शियम जाने की संभावना रहती है वो मेंटेन रहती है। बोन मेटाबॉल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जैसे ख़राब हो जाएगा, शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, नतीजा ये होगा कि ब्लड को बॉडी को जितना कैल्शियम चाहिए वो तो लेगा, तो वो कहाँ से लेगा? हड्डियों से लेगा। हड्डियों से लेगा तो क्या होगा? हड्डियों का क्षरण होगा। हड्डियों का क्षरण होने से जब ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी तो हड्डी टूटने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, और टूट जाएगा तो नेचुरली परेशानी हो जाएगा। तो अगर टूट जाता है हड्डी फिर उसका इलाज आप कराते हैं, और इलाज के चलते बाद में अगर प्रॉपर आपने फिर आपने फिजियोथेरापी नहीं कराई, प्रॉपर एक्सरसाइजेज नहीं कराए, उस पर समय पर ध्यान नहीं दिया तो जकड़न हो जाएगा, जकड़न हो जाएगा तो उसको पूरा फ्रीज कर जाएगा, उसको हम लोग फ्रोजन शोल्डर भी बोलते हैं, एडिसिव कैप्सुलाइटिस बोलते हैं। एडिसिव का मतलब है जैसे गोंद जैसे नहीं होता चिपक जाना, उसी तरह से जो कैप्सूल होता है शोल्डर जॉइंट का वो कैप्सूल जैसा क्या होता है चिपक जाता है, एडिजेंस हो जाते हैं, तो चिपकने की वजह से थोड़ी सी समस्या ज़्यादा हो जाता है। और चूंकि स्टिफनेस ज़्यादा हो जाएगा तो मरीज को डेली एक्टिविटीज़ जैसे खाना खाना है, टॉयलेट जाना है और हाथ उठाना है, तो नेचुरली आप कुछ कंघी करना चाहेंगे तो आपसे समय पे आपसे आपको कंघी नहीं हो पाएगा, टॉयलेट जाना है, हाथ यूज़ करना है, उसके लिए कम से कम 60 डिग्री 70 डिग्री मूवमेंट चाहिए, उतना नहीं हो पाएगा, मुश्किल होगा। 90+ डिग्री मूवमेंट होना चाहिए खाना खाने के लिए, कम से कम उठाने के लिए, वो नहीं होगा तो आपको दिक्कत होगा, उसके चलते परेशानी हो जाएगी, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा।
1: तो इस समस्या का निजात क्या है डॉक्टर साहब? इस तरह की परेशानी होगी, कंधे का दर्द हो गया, हमने चिकित्सक से संपर्क किया तो कुछ फिजियोथेरेपी भी बताया जाता है, तो किस प्रकार हम इस दर्द से छुटकारा पाएं?
0: हम लोग उसके लिए बेसिकली फिजियोथेरेपी करवाते हैं। सबसे पहले तो एक्सरे कराना पड़ेगा कि एक्सरे में कहीं ऐसा कोई चोट वगैरह तो नहीं आया, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर किसी कारण से बाद में अगर हमें मैनिपुलेट करना पड़ा और उसकी वजह से ड्यूरिंग मैनिपुलेशन अगर प्रेशर ज़्यादा पड़ा तो टूटने की संभावना है, तो उस चीज़ को ज़रूर ध्यान देना होगा। तो हम लोग शोल्डर जॉइंट का एक्सरे कराते हैं, रूटीन इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, बेसिक इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, जैसे थायराइड का टेस्ट कराना चाहिए, पर्टिकुलरली लेडीज़ लोगों को जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा उसको ध्यान देना पड़ेगा। शुगर के लिए रूटीन शुगर, ब्लड शुगर, यूरिन एग्जामिनेशन वगैरह करना चाहिए। ट्यूबरक्लोसिस अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं किसी भी कारण जिससे एक्टिविटीज़ घट जाती है उसका जांच कराना पड़ेगा। जांच हो जाने के बाद हम लोग दवा देते हैं, मेडिसिन देते हैं, जो पेन के लिए दवा देते हैं, उससे अगर रिलीफ नहीं मिलता है, अगर पेशेंट डायबिटिक है तो इवन हम लोग नॉर्मल स्लाइन अगर इंजेक्ट कर दें शोल्डर जॉइंट में तो वो दैट विल एक्ट एज ए लुब्रिकेंट, विस्कोसिटी बढ़ाता है, जो वो विस्कोसिटी बढ़ाता है तो वो आपका मूवमेंट बढ़ाएगा। इसलिए खास करके डायबिटिक पेशेंट्स में हम लोग स्टेरॉयड के जो इंजेक्शंस लगाते हैं वो नॉर्मली नहीं लगाने चाहिए, और पर्टिकुलरली मैं लगाने की मैं सलाह नहीं देता हूँ, नहीं लगाना चाहिए। अदरवाइज जो नॉन डायबिटिक हो जिसको बाकी कारणों के चलते कंधा जाम हो जाता है उनको स्टेरॉयड का इंजेक्शन देते हैं, उससे भी फ़ायदा नहीं होता है, तो हम लोग मरीज़ को थोड़ा सुन करके हल्का सीरेट करके हम लोग मरीज का कंधे का घुमाते हैं, मैंने जिसको हम लोग मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया करते हैं, एक वो काम करते हैं, उसका काफ़ी फ़ायदा होता है, और नॉर्मली अच्छे से अगर किया जाए तो उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, इनकरेजिंग रिजल्ट्स हैं। एक बार मरीज का कंधा ठीक हो जाए, सपोज़ मान लीजिए किसी को दाहिने हाथ में प्रॉब्लम है, वो कंधा ठीक हो जाए तो कम से कम दाहिने कंधे में फिर तुरंत नहीं होगा, लेकिन क्या है कि आपको एक्सरसाइजेज बाद में जितने एक्सरसाइजेज होते हैं वो आपको रेगुलर करने पड़ेंगे, जैसे बच्चों में फिजियोथेरापी बच्चों में पीटी करते हैं उसी तरह से बड़ों में करते हैं। अगर उससे भी नहीं फायदा होता है तो हम लोग आर्थ्रोस्कोपिकली दूरबीन द्वारा जांच डाल करके मशीन डाल करके हम लोग कैप्सूल जो जकड़न हो जाता है सिकुड़ जाता है उसको हम लोग कैप्सूल से कटिंग कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है जो कैप्सूल जो टाइट हो जाता है वो लूज हो जाता है, अल्टीमेटली पेशेंट का जो जकड़न हो जाता है वो कम हो जाता है
1: जी।
0: तो ये ऑलरेडी लास्ट स्टेज है, उसके पहले वाले स्टेजेस बहुत यूजफुल हैं, फायदेमंद है, वो करना चाहिए, उससे ज़्यादा फायदा होगा।

0: डॉक्टर साहब, यदि हम शब्दों से हम बताएं लोगों को, तो किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए? जैसे आपने बताया पीटी एक्सरसाइज करनी चाहिए।
1: जैसे हम लोग बचपन में जो हम लोग नॉर्मल एक्सरसाइज जो करते थे,
0: दोनों हाथ को
1: साइड से करना, हाथ को ऊपर ले जाना, हाथ को सर्किल बनाना, जैसे हम लोगों को जो एक्सरसाइज करना है सर्किल बनाना है, तो एक अंडे के आकार का सर्किल होगा, एक सर्किल होगा, बिल्कुल एक अंडे आकार का घुमाना होता है सर्किल के हिसाब से। तो हम लोग अंडे के आकार से अगर घुमाएंगे तो हम लोग कंधा नहीं घूमेगा, क्यों नहीं घूमेगा, लेकिन हम लोग एक सर्किल बना, मतलब कहने का मतलब जितना बड़ा सर्किल आप बना सकते हैं कंधा के वो रेडियस मानते हुए, उतना कंधा से आपको रेडियस, कंधा से लेकर के आप लिटिल फिंगर मिडिल फिंगर तक आप एक रेडियस मानिए और उसको लेकर के पूरा रोटेट करिए, तो वो आपको टोटल सर्कमडक्शन एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं वो हो जाता है। दूसरा में आप दीवार के सहारे हाथ को खड़े रख करके पूरा हाथ को ऊपर करिए, धीरे धीरे ग्रेजुअल नीचे करिए, आप एक आज एक दिन जितना उठाए उतना लकीर खींच दिए, दूसरे दिन फिर उठाइए, फिर तीसरे दिन उठाइए और ग्रेजुअली ये उठ जाएगा। तीसरा है कि घर में कोई रस्सी ऊपर लगाने का हो तो जो पहले हाथ अच्छा हो उसको आप ऊपर रखिए और जिस जो अफेक्टेड हैंड है उसको नीचे रखिए, और पुली सिस्टम टाइप का करके आप पुली से ऊपर नीचे हाथ को करिए, ऊपर ले जाइए फिर नीचे ले जाइए करिए, और साइड से लैटरल साइड से उसको फिर एक रोटेट कर सकते हैं। चौथा एक्सरसाइज होता है जो ये करना पड़ता है। तो एक्सरसाइजेज के बहुत अच्छे फायदे हैं और अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो समस्या आपको नहीं होगी, खास करके महिलाओं को जिनको हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, डायबिटिक्स को जिनको चीनी के चलते जाम होने का संभावना ज़्यादा रहता है, उनको ज़्यादा केयर लेना चाहिए और ये करने से उनको ज़रूर फायदे होंगे, और इसको प्रतिदिन अपने जीवनचर्या में उसको अपनाते हुए करें तो उससे ज़िंदगी आपकी अच्छी चलेगी।
0: जी, प्रतिदिन यदि हम एक्सरसाइज करते हैं, नित्य सुबह हम उठते हैं और व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं जैसा आपने बताया, तो इस तरह की बीमारी आप तक नहीं आएगी, और यदि सुबह मॉर्निंग वॉक आप करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे।
1: बिल्कुल।
0: अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन कुमार आज आप इस कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मित्रों, अपना ख्याल रखिएगा, कल एक फिर नई जानकारी के साथ हम उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, कंधा का जाम होना और उपचार। भेंटवार्ताकार थे डॉक्टर पवन कुमार, इनसे बातचीत कर रहे थे संजीव कुमार लाल। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुबह सुरीली।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको सुनवाते हैं फिल्म हैसियत का ये गीत, यसुदास की आवाज में। बोल है इंदिवर के, धुन है बप्पी लहरी की।

0: कृषि व्यापार मेला 2026 ये उत्सव नहीं महा उत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत।
1: भाइयों एवं बहनों जोहार, झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद, जोहार।
0: इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखें झारखंड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर। 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: फिल्म हीरो आवाज, माफ कीजिएगा, फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम, आवाज लता मंगेशकर की, शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: फिल्म सूर्यवंशम के इस युगल गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुबह सुरीली यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:45 हो रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम खुला आकाश के अंतर्गत एक वार्ता, विश्व फलक पर हिंदी कविता। वार्ताकार हैं डॉक्टर रवि भूषण।
1: विशेष और भाषा विशेष में सीमित केंद्रित रहने के बाद भी एक बड़ा कवि किसी स्थान विशेष और भाषा विशेष में बंधा नहीं होता। कवि विश्व नागरिक है और उसकी चिंता में यह समस्त चराचर जगत है। मनुष्य होकर भी उसका संसार केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं है, पूरी प्रकृति पृथ्वी से आकाश तक सभी कविताओं में ध्वनित चित्रित वर्णित होते हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर को विश्व कवि कहा जाता है। तुलसी, कबीर, मीरा, जायसी जैसे भक्तिकालीन कवियों के साथ हिंदी के अन्य कई मूर्धन्य कवि भी इसी आधार पर मात्र हिंदी कवि न होकर भारतीय कवि हैं, जिन्हें हम उनकी वैश्विक चिंताओं के कारण विश्व कवि भी कह सकते हैं। कवि की काया वर्तमान में रहती है, पर उसकी कविताओं में एक साथ तीनों काल, स्मृति, यथार्थ और कल्पना के रूप में विद्यमान होते हैं। कवि विजनरी होता है, भविष्य दृष्टा और स्वप्नदर्शी। हिंदी कविता का इतिहास 1000 वर्ष से अधिक का है, सरहपा से लेकर आज तक। इस सुदीर्घ काल यात्रा में हिंदी कविता विकास के कई चरणों से गुजरी है। यह काव्य समृद्धि चकित विस्मित करती है। कविता का विषय बदला, रूप शिल्प बदला, इस सतत परिवर्तनशीलता के साथ वह जिस मूल भित्ति पर अवस्थित होती है वह प्रायः सभी भाषाओं की कविताओं में लगभग समान है। छापे खाने के आविष्कार और पुस्तकों के प्रकाशन के बाद कविता भौगोलिक और भाषाई सीमा में बंधी नहीं रही, वाचिक और मौखिक परंपरा में भी वह भ्रमण करती रही है। 21वीं सदी में हिंदी कविता जिन रूपों में विश्व फलक पर है उस रूप में वह पहले नहीं थी। एक ध्रुवीय विश्व और भूमंडलीकरण तथा विश्व ग्राम के दौर में हिंदी कविता ने अपनी सर्वत्र उपस्थिति दर्ज कराई और यह उपस्थिति अनेक रूपों में है। 19वीं सदी के अंत से आज तक स्थितियां काफी बदल चुकी हैं। उस समय विश्व फलक पर हिंदी कविता कहीं नहीं थी। आज विश्व फलक पर हिंदी कविता की अपनी पहचान है और किसी भी भाषा की कविता की तुलना में हिंदी कविता कम नहीं है। कबीर पर बाहर जितना काम हो रहा है और केशव दास सहित अनेक मध्यकालीन कवियों पर उनकी कवि दृष्टि पर उस समय पर जितनी गंभीरता के साथ कार्य हो रहे हैं उनसे भारतीय विश्वविद्यालयों के अधिकांश हिंदी प्रोफेसर अपरिचित हैं। तुलनात्मक साहित्य और अनुवाद कर्म को महत्व देने के साथ ही हिंदी कविता विश्व में फैल गई है। प्रवासी भारतीयों की बात छोड़ दें, जिनका संबंध भारत और हिंदी भाषा साहित्य से अब भी बना हुआ है, विश्व के प्रायः सभी देशों में कहीं कम कहीं अधिक हिंदी कविता मौजूद है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विशेषतः स्वतंत्र भारत में हिंदी में जो नई कविता का दौर है उसमें यूरोपीय देशों के साथ अन्य देशों में हिंदी कवियों का काव्य पाठ एवं व्याख्यान आदि के लिए जाना आरंभ हुआ। बच्चन ने बाहर से ऊंची शिक्षा प्राप्त की, अज्ञेय काव्य पाठ और व्याख्यान के लिए कई विदेशी विश्वविद्यालयों में जाते रहे। बाहर की दुनिया में हिंदी कविता अनुवाद, भाषण, व्याख्यान, कार्यशाला, वार्तादि के रूप में पहुंचने लगी। 21वीं सदी में सारे बंधन टूटे, भौगोलिक और भाषाई दूरियां मिटी, प्रत्येक भाषा का कवि अपना कवि दिखाई देने लगा। 70 के दशक से सभी प्रमुख विदेशी कवियों के हिंदी में अनुवाद हुए। आज किसी भी भाषा, चाहे उसके बोलने वालों की संख्या कुछ लाखों में ही क्यों न हो, के प्रमुख कवियों का हिंदी में अनुवाद हो चुका है। खिड़कियां खुल चुकी हैं और एक व्यापक काव्य परिसर में सभी प्रमुख कवि एकत्र हैं। अशोक वाजपेयी ने भारत भवन में वर्षों पहले विश्व कविता का एक गंभीर आयोजन किया था जिसमें कई नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कवि मौजूद थे। 19वीं सदी के अंत से लगभग 1950 तक हिंदी कविता कहीं से भी विश्व फलक पर मौजूद नहीं थी। स्वतंत्र भारत में इसमें गति आई और आज यह स्थिति है कि हिंदी का कोई भी ऐसा प्रमुख चर्चित समकालीन नहीं है जिनकी कविताओं का विश्व की कई भाषाओं में अनुवाद न हुआ। भक्तिकालीन हिंदी कवियों पर जितना गंभीर काम भारत में हो रहा है उससे कम से कम 10 गुना अधिक गंभीर काम बाहर हो रहा है। कबीर इनमें सबसे प्रमुख हैं। फ्रैंकफुर्ट विश्वविद्यालय से लेकर केवल जर्मनी में ही नहीं अन्य देशों के कई विश्वविद्यालयों में कबीर पर गंभीर आयोजन हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां हुई। प्रायः सभी प्रमुख देशों के प्रमुख विश्वविद्यालयों में दक्षिण एशियाई देशों और उनके साहित्य संस्कृति के जो विभाग हैं उनमें अनेक में हिंदी का अध्ययन अध्यापन होता है। कई विश्वविद्यालयों में हिंदी का स्वतंत्र विभाग है। हिंदी के प्रायः सभी प्रमुख कवि विश्व की प्रायः सभी भाषाओं में अनुदित हो चुके हैं। कविता का एक स्वतंत्र विश्व बन रहा है। सभी प्रमुख कवियों को पढ़ा जा रहा है। अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, फ्रेंच, इतालवी, स्पेनिश, पोलिश आदि भाषाओं में हिंदी कविताओं के अनुवाद हो रहे हैं। पोलिश में कई समकालीन कवियों अशोक वाजपेयी समेत की कविताओं के अनुवाद हो चुके हैं। अनेक दूतावासों की मुख्य भूमिका रही। विश्व के करीब 100 विश्वविद्यालयों में हिंदी कविता का अध्ययन अध्यापन और उस पर गंभीर शोध कार्य हो रहा है, अनुवाद हो रहा है, कार्यशालाएं हो रही और अनेक हिंदी कवि वहां जाकर काव्य पाठ कर रहे हैं, इन भाषाओं के कवियों से मिल रहे हैं। यह कवि संवाद जो विश्व स्तर पर जारी है उसे और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। विश्व में कई विमर्श डिस्कोर्स जारी, उनमें स्त्री विमर्श वुमेन डिस्कोर्स विशेष प्रमुख है। लैंगिक जेंडर और स्त्री अध्ययन के दौर में ही पश्चिम में मीराबाई की कविताओं के अनुवाद और अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया गया है। मुख्य रूप से भक्तिकालीन कवियों और समकालीन कवियों की कविताएं विश्व फलक पर अपनी पहचान बना रही हैं, जिनमें भक्तिकालीन कवियों की कविताओं पर विशेष ध्यान है। कालेवारेट की द मिलेनियम कबीर, चार्लोट वडाडेविले की द वेवर नेम्ड कबीर, जीएच वेस्टकॉट की कबीर एंड कबीर पंथ के साथ कई ऐसे पुस्तकों की सूची बनाई जा सकती है जो कबीर और कबीर पंथ पर केंद्रित हैं। लिंडा हेस और डेविड लारेंजन के काम से अधिकांश लोग परिचित हैं। विश्व फलक पर हिंदी कविता की उपस्थिति कई रूपों में, कवियों की कविताओं के अनुवाद कई प्रकार से संपन्न हो रहे हैं, विषय को केंद्र में रखकर भी कविताओं के अनुवाद हो रहे हैं और पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं। फिलहाल एक उदाहरण डच भाषा में प्रकाशित एक जग डे स्टैड का है जो मैंने शहर देखा का डच अनुवाद है। यह शीर्षक मंगलेश डबराल के कविता शीर्षक शहर से लिया गया है। इस संकलन का प्रकाशन 2006 में हुआ जिसमें कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, त्रिलोचन, अशोक वाजपेयी, मंगलेश डबराल, नीलाव, कुमार विकल, विष्णु खरे, अरुण कमल, कात्यायनी, अनामिका, जावेद अख्तर, अनीता वर्मा, सविता सिंह और गुलजार की कुछ नगर केंद्रित कविताओं का डच भाषा में अनुवाद है जो अमस्टरडम के इंडिया इंस्टीट्यूट से डिक पलुक्कर और लोडे विस्क द्वारा अनुदित है। कवि की स्वतंत्र कविता पुस्तक, कुछ कविताएं, थीम आधारित कविताओं का चयन, आधुनिक और समकालीन हिंदी कविताओं के अनुवाद के साथ ही कवियों के व्याख्यान, उनसे अंतरंग वार्ता, सब के जरिए हिंदी कविता विश्व फलक पर पहचान बना चुकी है। उसकी विविधता और समृद्धि से, उसके गहरे कंसर्न से, उसके कथ्य रूप शिल्प के साथ चमकीली लय से अब बाहर की दुनिया परिचित हो रही है। बड़े बड़े पुरस्कार और सम्मान हिंदी कवियों को बाहर प्राप्त हो रहे हैं। कुंवर नारायण को एक बड़ा कवि सम्मान प्राप्त हो चुका है। उनके साथ केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी, विष्णु खरे, मंगलेश डबराल, अरुण कमल सहित 200 अनेक समकालीन हिंदी कवि विदेश की यात्राएं कर चुके हैं। जहां तक कविताओं के अनुवाद का प्रश्न है वह देश के भीतर भी हो रहा है। कई अंग्रेजी प्रकाशकों ने हिंदी कवियों की और हिंदी कविताओं के अनुवाद प्रकाशित किए। कुंवर नारायण की चयनित कविताओं का एक अंग्रेजी संकलन नो अदर वर्ल्ड है जिसे रूपा ने 2008 में प्रकाशित किया था। भारत के कई विश्वविद्यालयों के विदेशी भाषा विभाग, साहित्य अकादमी मुख्य रूप से इस भूमिका में है। हिंदी कविता आज अपने घर में, विश्वविद्यालयों में भले उपेक्षित हो, बाहर वह उपेक्षित नहीं है। हिंदी कविता के जो विविध स्वर हैं वे बाहर सुनाई दे रहे हैं। बाहर गंभीर शोध कार्य हो रहे हैं। हिंदी कविता अब केवल हिंदी प्रदेशों में ही सिमटी नहीं रही है, भारतीय भाषाओं में उसका स्थान है। हिंदी में तनाव जैसी पत्रिका प्रकाशित हो रही है जिसका प्रत्येक अंक किसी विदेशी भाषा के प्रमुख कवि की कविताओं के अनुवाद पर केंद्रित होता है। आज विश्व फलक पर हिंदी कविता अपने विविध रूपों में अपने सशक्त और समृद्ध रूप के साथ मौजूद है।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे, सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: अभी आप सुन रहे थे खुला आकाश कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ता विश्व फलक पर हिंदी कविता। वार्ताकार थे डॉक्टर रवि भूषण। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब आपको जानकारी दिए चलते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर बाद 8:45 से आप सुनेंगे लोकगीत का कार्यक्रम लोक रंग। आज ये कार्यक्रम आप सुनेंगे खोटा भाषा में। कलाकार होंगे रीता कुमारी और उनके साथी। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन होगा सुबह 9 बजे से। नौ बजकर 30 मिनट पर शास्त्रीय संगीत के आयोजन में आज आप सुनेंगे चिर सुंदर ठाकुर से सितार पर राग, ललित में आलाप और जोड़ के बाद दो गतें, दोनों ही गतें 3 ताल में निबद्ध होंगी। तबले पर संगत करेंगे संदीप चटर्जी। 10 बजे से आप सुनेंगे विज्ञान जगत कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा, प्लास्टिक बोतल के उपयोग से करें परहेज। साथ ही भेंट वार्ता, वर्तमान जीवन शैली में योग के फायदे। भेंट वार्ताकार होंगे प्रियंका विश्वकर्मा, भेंटकर्ता बसंत कुमार, प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की। 10:30 से जानकारी और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम जोहार रांची हम लेकर आएंगे। 11:30 से आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। दिन के 12 बजे महिलाओं का विशेष कार्यक्रम गृह लक्ष्मी होगा। इसके अंतर्गत चर्चा होगी स्थानीय परिवेश और संस्कृति के अनुरूप हो भोजन, उतना ही लें थाली में, अन्न न जाए नाली में। साथ ही इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे बाय ध्वनांकन पर आधारित खाद्य सुरक्षा और भारतीय कृषि। साथ ही आपको जानकारी मिलेगी एआई का बढ़ता प्रयोग और सावधानियों के संदर्भ में। प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की। 12:30 से आप सुनेंगे फिल्म संगीत। एक बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 1:20 का समय होगा उप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम अनुरंजनी का। इसके अंतर्गत आज कलाकार होंगे सिद्धेश्वरी देवी। 1:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। इसके अंतर्गत कुछ गजल सुन पाएंगे। कलाकार होंगे गुलाम अली, मेहदी हसन और जगजीत सिंह। 2:30 पर हम लेकर आएंगे फौजी भाइयों के लिए संगीत का कार्यक्रम जय भारती। 3 बजे होगा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। शाम 4 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। 4:02 से विज्ञान जगत। 4:35 से आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को हैं। अब हमारा अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।
3: क्योंकि की लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
4: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवेटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
6: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
7: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
5: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
8: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनीतिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
5: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग अमरीका, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
9: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेयर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेयर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
5: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
10: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
5: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
11: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
12: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
13: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
11: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
14: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
11: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
15: We have a huge pool of talent.
16: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमरीका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
17: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट एएफ थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
18: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन। फिर टूटी उद्धव की शिवसेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक 1 रिकॉर्ड 10, उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेलीग्राम को लेकर आईआईटी निदेशक से तर्क वितर्क, केंद्र सरकार ने कहा टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोक सत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, पेपर लीक से टूटता मनोबल। संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती, बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
5: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 177 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
19: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम निशित कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू अटेंड वीवा टेक समिट इन पेरिस विद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल माक्रॉन। पीएम मोदी टू ऑल्सो एड्रेस मेंबर्स ऑफ इंडियन कम्युनिटी इन फ्रेंच कैपिटल। President Draupadi Murmu to embark on a five-day visit to Madhya Pradesh and Odisha beginning today. Polling for two Rajya Sabha seats from Jharkhand and one from Mizoram to take place today. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement to come into force on the 15th of July this year. US President Donald Trump signs 14-point peace deal with Iran to end West Asia conflict. And in men's cricket, India beat Afghanistan by 170 runs in the second ODI of the three-match series to take unassailable 2-0 lead. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi arrived in Paris last night for the final leg of his visit to France. Upon his arrival in the French capital, Mr. Modi received a warm welcome from the members of the Indian community gathered at his hotel.
20: I feel India and France, it goes beyond geopolitics, education, culture, AI, innovation, it is everything.
21: So we are very thankful ki Modi ji aaye humse mile.
19: In Paris, Prime Minister Modi will attend the VivaTech 2026 alongside French President Emmanuel Macron. The VivaTech Summit is Europe's largest technology and startup event where Mr. Modi is expected to highlight India's growing innovation, ecosystem and technological advancements. Prime Minister Modi is also scheduled to address members of the Indian community during a special diaspora event. We hear more from our correspondent.
22: Today, the Prime Minister continues packed itinerary designed to supercharge bilateral trade and innovation partnerships. He will lead the charge by covering a specialized roundtable with top French and European business leaders, focusing on driving strategic investments into India's expanding industrial and tech corridors. The centerpiece of the visit takes place later today at VivaTech, Europe's premier technology and startup conference. Prime Minister Modi, alongside French President Emmanuel Macron, will lead a series of high-level engagements at the summit, culminating in a highly anticipated keynote address that highlights India's skyrocketing global digital footprint. The intensive diplomatic trip will wind down with a major community outreach initiative. The Prime Minister is slated to attend a massive diaspora reception featuring vibrant cultural performances that celebrate India's heritage. Mahesh Sopre, Akashwani News, Paris, France.
19: The Paris leg of PM Modi's visit is expected to further strengthen India-France relations, particularly

0: LA in technology, innovation, and people-to-people ties. President Draupadi Murmu will embark on a five-day visit to Madhya Pradesh and Odisha beginning today. On the first day of her visit, President Murmu will attend a program on the empowerment of tribal society through spiritual awakening at Betul in Madhya Pradesh. We have more from our correspondent.
1: President will arrive in Indore and then travel to Betul, where she is scheduled to attend a program organized by Brahma Kumaris. Later, she will visit the Omkareshwar temple and participate in the evening aarti. On June 19, the President will attend an event marking International Sickle Cell Anemia Day. On June 21, President Murmu will take part in International Yoga Day celebration in Jabalpur. She will also attend the 36th convocation ceremony of Rani Durgavati University as the chief guest. Later, she will visit Kuno National Park before returning to New Delhi. In view of the President's visit to Betul, District Collector Dr. Saurabh Sanjay Sonwani has imposed certain restrictions as part of the security arrangements. Abhinav Goyal, Akashwani News, Bhopal.
0: Polling for two Rajya Sabha seats from Jharkhand and one from Mizoram will take place today. In Jharkhand, Jharkhand Mukti Morcha's Badrinath Ram, Congress candidate Pranav Jha, and independent candidate Parimal Nathwani are contesting the election. In Mizoram, candidates from the ruling Zoram People's Movement, ZPM, and the opposition Mizo National Front, MNF, are locked in a direct contest to fill Mizoram's lone Rajya Sabha seat. The BJP and the Congress have decided to abstain from voting. The India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, will come into force on the 15th of July this year. The Ministry of Commerce and Industries informed that the Agreement on Social Security, also referred as the Double Contribution Convention, DCC, will come into effect on the same day. We have more from our correspondent.
2: The Ministry of Commerce and Industries also noted that the period of exemption under the Double Contribution Convention, DCC, has been increased from 3 years to 5 years, marking a major gain for India's temporary workers, hailing the government as a triumph of economic statecraft. Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal stated that the simultaneous enforcement of the CETA and the Double Contribution Convention will open up significant new opportunities for India's exports as India has secured immediate duty-free access on 99% of tariff lines. He said that this will allow textiles, leather, marine, engineering and processed food sectors to compete with no disadvantage and supply their world-class products. The ministry said that the India-UK CETA has been designed as a people-centric agreement that delivers benefits across society. The ministry noted that this historic economic architecture effectively prepares both nations to navigate the complexities of modern international commerce while permanently accelerating India's trajectory toward an inclusive, prosperous and self-reliant Viksit Bharat 2047. Nitika Gupta, Akashwani News, Delhi.
0: Prime Minister Narendra Modi has said that the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will significantly boost the bilateral trade and investment between India and the United Kingdom. In a social media post, Mr. Modi said that the agreement will also unlock numerous opportunities for Indian farmers, workers, MSMEs, startups and innovators and contribute meaningfully to the realization of Viksit Bharat 2047. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back to the morning news. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. Akashwani News brings you a special feature, Bharat Saal, Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Today we focus on the steps taken by the government to eradicate Naxalism and bring an unprecedented wave of developmental activity in the affected regions. We have a report.
3: The The Narendra Modi government's coordinated multi-pronged strategy combining calibrated security operations, financial choking and rapid development saturation has resulted in making the country free from Naxalism and Maoist terror. Home Minister Amit Shah had formally announced that Naxalism would be completely eradicated from the entire country by 31st March 2026 and the pledge has now been fulfilled. Several landmark security operations played a decisive role in breaking the backbone of the Maoist network over the years. Operation Octopus was conducted in Buddha Pahad region of Jharkhand in 2022 and Operation Double Bull liberated the Gumla, Lohardaga and Latehar districts of Jharkhand in February of the same year. Operation Thunderstorm targeted strongholds of Naxals in Saraikela, West Singhbhum and Khuti district of Jharkhand in 2022. Operation Black Forest, which was conducted in 2025 across a hill stretching 50 kilometers in length and 37 kilometers in width along the Telangana-Chhattisgarh border, dealt a severe blow to the remaining Maoist cadres. One of the residents of Bastar in Chhattisgarh had lauded the government's efforts, saying that it has fulfilled its promise of making the country free from Naxalism.
4: They fulfilled the promise they made. I thank Modi government, Amit Shah ji and Vijay Sharma ji from the bottom of my heart.
3: The results of the coordinated multi-pronged strategy on the ground reflected the scale of the crackdown. Several top Naxal leaders were neutralized during this period, including Hidma, Kadri Satyanarayan Reddy, Ganesh Uike and the Naxalite General Secretary Basav Raju. These security efforts brought an unprecedented wave of development activity in Naxal-affected regions. Tambu Orao, a resident of Gumla district Jharkhand, said that since the Modi government was formed, Naxalism has gradually come to an end and people living with peace and harmony.
5: A decade ago, our village was completely under the control of Naxalites. We are afraid to go out even during the day. Since 2014, when the Modi government was formed, gradually that fear has disappeared. Today we are living a peaceful life. The village is developing. They have made roads. It is very good now.
3: The National Investigation Agency played a critical role in disrupting Naxalite financing, significantly depleting their operational resources. Today, the story of Naxal-free India stands as a testament to the triumph of democracy, development and the constitution over decades of violence. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
0: U.S. President Donald Trump and Iranian President Masoud Pezeshkian have virtually signed a 14-point memorandum of understanding aimed at ending hostilities between the two countries, reopening the Strait of Hormuz, and launching a 60-day process to negotiate a final agreement on sanctions and Iran's nuclear program. We have a report.
6: The White House said that Mr. Trump signed the MOU personally while meeting French President Emmanuel Macron in Paris. On the other hand, Iranian Foreign Ministry spokesperson confirmed that the text of the memorandum has been finalized and signed by both sides. He stated that consultations with Oman and other countries have been underway for some time and that arrangements for managing the Strait of Hormuz have largely been agreed upon. The US has released the official text of the MOU. The 14-point agreement includes an immediate and permanent cessation of military operations, including in Lebanon, and a pledge to conclude negotiations on a final deal within 16 days, extending by mutual consent. Under the MOU, the US will begin removing its naval blockade and related restrictions, while Iran will facilitate the safe passage of commercial vessels through the Strait of Hormuz free of charge for an initial 60-day period. The document also outlines plans for the phased lifting of sanctions, the release of frozen Iranian assets, treasury waivers for Iranian oil exports, and a US-backed reconstruction and economic development program for Iran worth at least $300 billion. Iran also reaffirmed in the memorandum that it will not develop or acquire nuclear weapons. The agreement also provides for discussions on the future of Iran's enriched uranium stockpiles under the supervision of the International Atomic Energy Agency. With Vishal's report, Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
0: In men's cricket, India defeated Afghanistan by 170 runs in the second ODI of the three-match series in Lucknow to take an unassailable 2-0 lead. Put into bat first, India posted a massive 402 runs in 49.5 overs before being bowled out, powered by Shubman Gill's 154 and Ishan Kishan's 125. For Afghanistan, Nange Elia Karoti picked up 4 wickets, while Rashid Khan claimed 3. In reply, Afghanistan would bundle out for 232 in 44.3 overs. For India, Arshdeep Singh and Gurnoor Brar picked up each picked up 3 wickets while Prince Yadav claimed 2. Shubman Gill was adjudged the player of the match. The third and the last match will be played in Chennai on Saturday. In the ICC Women's T20 World Cup, India defeated Netherlands by 95 runs in a Group A match at Headingley in Leeds last night. Batting first, India posted a formidable 209 for 5 in 20 overs powered by Smriti Mandana's 74 and Shefali Verma's 55. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
7: Thank you, Nishit. News of Prime Minister Modi meeting US President Trump on the sidelines of G7 summit in Avignon, France is carried prominently by all the leading dailies. US President Trump says will help India, led by Prime Minister Modi, if attacked, according to Hindustan Times. India-UK trade deal to come in effect from July 15th. No tariff on key exports, writes the Tribune. Parliamentary board meet convened by Shiv Sena UBT today amid split rumours, says the Hindu. Delhi High Court seeks government reply as Telegram challenges ban over NEET exam, according to a report in the Times of India. 10-year wait ends as NSE files for IPO, while Reliance Jio set to file for IPO this week, reports Financial Express. And finally, in QS rankings, IIT Delhi tops India list for second year. Delhi University shines as well, says the Indian Express. And with that, it's back to you, Nishit.
0: Thank you, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to attend VivaTech Summit in Paris with French President Emmanuel Macron. PM Modi to also address members of Indian community in the French capital. President Draupadi Murmu to embark on a 5-day visit to Madhya Pradesh and Odisha beginning today. Polling for 2 Rajya Sabha seats from Jharkhand and 1 from Mizoram to take place today. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement to come into force on the 15th of July this year. U.S. President Donald Trump signs 14-point peace deal with Iran to end the West Asia conflict. And in men's cricket, India beat Afghanistan by 170 runs in the second ODI of the 3-match series to take an unassailable 2-0 lead. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
8: Akashwani Ranchi se prastut hai Pradeshik Samachar. नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए विधानसभा में मतदान आज शाम तक आएंगे चुनाव परिणाम। 10 लाख रुपए की इनामी हार्डकोर महिला नक्सली पुष्पा महतो ने 21 वर्षों बाद पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कृषि को व्यावसायिक रूप देने पर दिया जोर। उन्नत कृषि विधि अपनाने के लिए किसानों से की अपील। मौसम विभाग ने आज से रांची समेत 17 जिलों में मॉनसून के फिर से सक्रिय होने की जताई संभावना। तेज हवा और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी। और जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में झारखंड टी20 क्रिकेट लीग में जमशेदपुर स्टीलर्स ने संथाल स्ट्राइकर्स को 16 रन से हराकर महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा, जिसके लिए झामुमो के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी चुनाव मैदान में हैं। विधानसभा में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी, जबकि मतगणना शाम 5 बजे से होगी और चुनाव परिणाम भी आज ही आएंगे। चुनाव में विधानसभा के सभी 81 विधायक मतदान करेंगे। सत्तारूढ़ गठबंधन के पास 56 विधायकों का समर्थन है, जिसमें झामुमो, कांग्रेस, राजद और भाकपा माले हैं। वहीं एनडीए के 24 विधायकों का समर्थन निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी को प्राप्त है। इधर चुनाव में क्रॉस वोटिंग रोकने और अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए सत्तारूढ़ महागठबंधन के विधायकों ने बैठक की।
9: विधायक विधानसभा में पहुंचकर 4 बजे तक का समय है, लेकिन उसके पहले ही सारा मतदान समाप्त हो जाएगा और उसके उपरांत जो निर्णायक जो पल आएगा वो 6 बजे तक हो जाएगा और सब लोकतंत्र के प्रहरी हैं।
8: वहीं एनडीए विधायकों ने भी निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी की जीत की रणनीति बनाई।
10: यहाँ सवाल जीत हार का नहीं है, हमने तो सिर्फ समर्थन दिया है एनडीए की तरफ से और बीजेपी की तरफ से। हमने शुरुआत में समर्थित एक रूपता बनाने का आग्रह किया नाथवानी जी ने, उन्होंने सारे घटक दलों से अप्रोच किया, फिर हम लोगों ने बैठक बुलाई। तो एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी हैं और हमें पूरी आशा है कि वो जीते। जिस तरीके का हमें रुझान देखने को मिल रहा है, फीडबैक्स आ रहे हैं, तो संभवतः हम हाईएस्ट वोट लाकर जीतेंगे।
8: राज्यसभा चुनाव को लेकर ऑब्जर्वर बनाए गए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे, इसकी सभी तैयारी पूरी कर ली गई है।
11: आरओएस से रिपोर्ट आ गया, उनका वोटिंग के लिए कितना भी तैयारी करना वो तैयारी हो चुका है, उसका संबंधित रिपोर्ट भी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का हुआ है, ऑलरेडी मैनुअल दिया हुआ रिटर्निंग ऑफिसर का, उनका इलेक्शन कमीशन का मैनुअल है, उसी मैनुअल के अनुसार उनका काम निष्पादन करना है।
8: वहीं इस चुनाव को लेकर रांची में हाई अलर्ट है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए स्पेशल ब्रांच के अधिकारियों की तैनाती सादे लिबास में की गई है। वे विधायकों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखे हुए हैं। 10 लाख रुपए के इनामी हार्डकोर महिला नक्सली पुष्पा महतो ने 21 वर्षों बाद हथियार छोड़कर कोलकाता में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। झारखंड के सारंडा जंगलों में संयुक्त बलों के बढ़ते दबाव और केंद्र सरकार के माओवादी मुक्त भारत अभियान के तहत चौतरफा घिरने के बाद पुष्पा महतो ने हथियार डालने का फैसला किया। वह झामुमो के तत्कालीन सांसद सुनील महतो हत्याकांड और बुरुडी लैंडमाइन विस्फोट समेत कई चर्चित नक्सली घटनाओं आरोपी रही है। राज्य सरकार ने 2 आईएएस अधिकारी समेत राज्य प्रशासनिक सेवा के 88 अधिकारियों का स्थानांतरण पदस्थापन किया है। आईएएस अधिकारी रंजीत कुमार लाल को मेदिनीनगर का नगर आयुक्त और सुलोचना मीना को देवघर का नगर आयुक्त बनाया गया है। झारखंड में एटीएस अब झारखंड सीआईडी के अधीन काम करेगी। झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्रा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। पूर्व में एटीएस को लेकर जारी किए गए सभी निर्देशों को विलोपित कर दिया गया है। रांची में यूजीसी नेट परीक्षा को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने 6 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। निषेधाज्ञा 22 जून से 30 जून 2026 तक प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम 9 बजे तक तथा प्रभावी रहेगी। इस अवधि में 5 या अधिक लोगों के एकत्र होने, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग, हथियार लेकर चलने तथा सभा बैठक आयोजित करने पर प्रतिबंध रहेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
12: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
13: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
8: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्के ने कृषि को व्यापार के रूप में विकसित करने पर जोर दिया है। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले के दूसरे दिन कल उन्होंने कहा कि यह समय खेती को व्यवसायिक रूप देने का है और यह तभी संभव होगा जब किसान उन्नत कृषि विधि अपनाएंगे।
14: झारखंड सरकार की ये सोच है कि क्यों ना हम लोग किसानों को भी व्यापारियों के तरह सोचना और कार्य करना सिखाए। विश्व भर के प्रसिद्ध संस्थाएं हैं, वहां से आए हुए विशेषज्ञगण अपना ज्ञान यहां पे साझा कर रहे हैं, अलग अलग विषयों में चर्चा हो रहा है, लगातार किसान हर एक दिन उन सेशंस को अटेंड कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। हम लोगों को भी अपना प्रयासों को एक पटल में रखने का मौका मिला है।
8: लातेहार जिले में 3 दिवसीय ड्यूटी मीट का कल शुभारंभ हुआ। इस मौके पर डीआईजी कौशल किशोर ने कहा कि इसका उद्देश्य झारखंड पुलिस को आधुनिक तकनीक और नवीन पुलिसिंग प्रणाली से अवगत कराना है।
15: 6 क्षेत्रों के कई विषयों पर प्रतियोगिताएं होनी है, जो आमतौर पर अनुसंधान से, फोटोग्राफी से, वीडियोग्राफी से, फिंगरप्रिंट से, एंटी सबोटाज इत्यादि विषयों से जुड़ी हुई है, जिसमें कि हमारे पदाधिकारियों और कर्मियों को अपनी कार्यकुशलता का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा और जो बेहतर करेंगे उन्हें आगे चलकर

और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने आज झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों पर होने वाले चुनाव की खबर को प्रमुखता दी है। प्रभात खबर का शीर्षक है, झामुमो के वोट से वैजनाथ की जीत तय, दूसरी सीट प्रणव या नाथवानी को, आज विधानसभा के कमरा नंबर 42 में फैसला। दैनिक भास्कर ने G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बैठक की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अखबार ने ट्रंप के हवाले से लिखा है, मोदी के रहते भारत पर हुआ हमला तो हम साथ खड़े रहेंगे। हिंदुस्तान ने रांची में संघ कार्यालय पर हमला होने और दो आरोपियों की गिरफ्तारी की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, तृणमूल के बाद शिवसेना यूबीटी में टूट लगभग तय। और अब अंत में मुख्य समाचार। झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए विधानसभा में मतदान आज शाम तक आएंगे चुनाव परिणाम। 10 लाख रुपए की इनामी हार्डकोर महिला नक्सली पुष्पा महतो ने 21 वर्षों बाद पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कृषि को व्यावसायिक रूप देने पर दिया जोर। उन्नत कृषि विधि अपनाने के लिए किसानों से की अपील। मौसम विभाग ने आज से रांची समेत 17 जिलों में मॉनसून के फिर से सक्रिय होने की जताई संभावना। तेज हवा और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी। और जेएससी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में झारखंड T20 क्रिकेट लीग में जमशेदपुर स्टीलर्स ने संथाल स्ट्राइकर्स को 16 रन से हराकर महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है और ये प्रसारण आप सुन रहे हैं अपने रेडियो दोस्त हिमांशु शेखर के साथ। लोकरंग, आइए सुनते हैं लोकगीत का ये कार्यक्रम। आज आप इस कार्यक्रम के अंतर्गत खोठा भाषा में कुछ गीत सुनेंगे। कलाकार हैं रीता कुमारी और साथी।

0: कृषि व्यापार मेला 2026 ये उत्सव नहीं महाउत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत।
1: भाइयों बहनों जोहार, झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद। जोहार।
0: इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखें झारखंड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर। 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित
3: लोकरंग कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे हैं खोटा लोकगीत। कलाकार हैं रीता कुमारी और साथी।

स्क्रिप्ट के साथ ही आज का लोक रंग कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, सुबह के 9 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन।

यह है कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म खुदगर्ज। आवाजें हैं मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की, शब्द इंदिवर के, संगीत राजेश रोशन का।

0: कृषि व्यापार मेला 2026 ये उत्सव नहीं महाउत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत।
1: भाइयों बहनों जोहार, झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद, जोहार।
0: इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखें झारखंड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर। 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
4: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म दरिया दिल से। आवाज है नितिन मुकेश की, शब्द रचना विठल भाई पटेल की, संगीत राजेश रोशन का।

0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बदलो बदलो, आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: यह है कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म जीते हैं शान से। आवाजें अनु मल्लिक और कविता कृष्णमूर्ति की, शब्द रचना इंदिवर की, संगीत अनु मल्लिक का।

0: हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है, जान है, जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है।
1: हमको जॉनी नहीं मांगता, हमको पीटर नहीं मांगता, हमको साइकिल वाला माइकल नहीं मांगता,
0: तो कौन मांगता?
1: जॉनी जॉनी।

0: तो कौन मांगता?
1: ए जोली जोली, जोनी का दिल तुम पे आया जोली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: Thank you, baby. Thank you.
1: हमको टोनी नहीं मांगता, हमको पिज़्ज़ा नहीं मांगता, हमको साइकिल वाला माइकल नहीं मांगता.
0: ये तो कौन मांगता?
1: जॉनी जॉनी, चुले का दिल तुम पे आया जॉनी. तुझको ही माना मैंने अपना हनी. तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है.
0: Sandra from Bandra nahi mangta.
1: Tu kaun mangta?
2: Hey, Julie, Julie. Johnny ka dil tum pe aaya, Julie. Tere liye chad jaun suli.

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं फिल्म रखवाला का ये युगल गीत। आवाजें हैं एस जानकी और अमित कुमार की, शब्द समीर के, संगीत आनंद मिलिंद का।

फिल्म रखवाला के इस युगल गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के आयोजन में आज हम आपको सुनवा रहे हैं चिरसुंदर ठाकुर से सितार पर राग ललित में आलाप और जोड़ के बाद दो गतें। दोनों ही गतें तीन ताल में निबद्ध हैं। तबले पर संगत कर रहे हैं संदीप चटर्जी।

शास्त्रीय संगीत के आयोजन में अभी आप सुन रहे थे सितार पर राग ललित में आलाप और जोड़ के बाद दो गतें, दोनों ही गतें तीन ताल में निबद्ध थी। कलाकार थे चिर सुंदर ठाकुर, तबले पर संगत कर रहे थे संदीप चटर्जी। इसी के साथ आज का शास्त्रीय संगीत का हमारा ये आयोजन यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विज्ञान जगत। वाचन एवं सहयोग बसंत कुमार का है, प्रस्तुति है प्रभु शरण की।

0: नमस्कार, विज्ञान जगत कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से उपस्थित है हम। मैं हूँ बसंत और आप सभी का स्वागत है विज्ञान जगत कार्यक्रम में। तो हर बार की तरह आज भी हम ढेर सारी नई रोचक जानकारी और तथ्यों को लेकर उपस्थित हो चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं और क्या जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे प्लास्टिक बोतल के उपयोग से हमें क्यों परहेज करना चाहिए इसके बारे में। इसके बाद बारी होगी भेंटवार्ता की, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान जीवन शैली में योग के क्या फायदे हैं इसके बारे में। इसके बाद बारी होती है वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने की, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं वैज्ञानिक रेने लेनिएक के बारे में। और फिर इसके बाद बारी होगी खोज और आविष्कार की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं परमाणु रिएक्टर के बारे में। तो ये हमने आपको बता दिया कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करेंगे और क्या जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि प्लास्टिक के बोतल के उपयोग से हमें क्यों परहेज करना चाहिए इसके बारे में। आज के समय में प्लास्टिक की बोतलें हमारे जीवन में एक सामान्य सा हिस्सा बनकर ही नहीं, बल्कि वो एक विस्तृत रूप ले चुकी हैं और घर, कार्यालय, स्कूल, यात्रा करने से लेकर हम चाहे कहीं भी चले जाएं, प्लास्टिक की बोतल हमारे साथ हमेशा देखने को मिल ही जाती है। ये सुविधा के कारण इनका उपयोग हम सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन हमें ये बात सोचनी पड़ेगी कि भविष्य में हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या इस प्लास्टिक की बोतल की वजह से उत्पन्न हो सकती है। प्लास्टिक बोतलों का अत्यधिक उपयोग न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए कई प्रकार के खतरे उत्पन्न कर रहा है। प्लास्टिक की अधिकांश बोतलें एक बार उपयोग के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन लोग इन्हें कई बार इस्तेमाल करते हैं। लंबे समय तक उपयोग करने या धूप और गर्मी के संपर्क में आने पर इन बोतलों से कुछ हानिकारक रासायनिक तत्व भी निकलते हैं। ऐसे पानी का सेवन करने से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वैज्ञानिकों की अगर हम माने तो प्लास्टिक से निकलने वाले कुछ रसायन हार्मोन संबंधी समस्याएं, पाचन संबंधी परेशानियां और अन्य स्वास्थ्य जोखिम भी पैदा कर सकती है। पर्यावरण की दृष्टि से भी अगर हम बात करें तो प्लास्टिक की बोतल एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। प्लास्टिक आसानी से नष्ट भी नहीं होता, इसे पूरी तरह गलने में सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं। फेंकी गई प्लास्टिक की बोतलें नदियों, तालाबों, समुन्द्र और जमीन को दूषित करने का काम कर रही है। कई बार पशु इन्हें भोजन समझकर निगल जाते हैं, जिनसे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। समुद्र में पहुंचने वाला प्लास्टिक छोटे छोटे कणों में बदलकर जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। इसके कारण खाद्य श्रृंखला के माध्यम से मानव शरीर तक भी पहुंच रहा है। प्लास्टिक बोतलों के निर्माण में भी बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम और ऊर्जा का उपयोग होता है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों पर काफी दबाव बढ़ता जा रहा है और कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि देखी जा रही है, जो जलवायु परिवर्तन की समस्या को और गंभीर बनाने का काम कर रहा है। इसलिए प्लास्टिक बोतलों का कम उपयोग करना पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अब सवाल ये है कि हम प्लास्टिक बोतलों का विकल्प क्या अपनाएं? इसके लिए हम स्टील, तांबे, कांच या फिर अन्य टिकाऊ सामग्री से बनी बोतलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बोतलें लंबी समय तक चलती हैं, सुरक्षित होती हैं और पर्यावरण के लिए भी बेहतर विकल्प बन सकती हैं। जब भी घर से बाहर जाएं, अपनी पानी की बोतल साथ लेकर जाएं, लेकिन ध्यान रखें कि वो बोतल प्लास्टिक की ना हो। इससे बार बार प्लास्टिक की बोतल खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा हमें लोगों को भी जागरूक करना चाहिए कि लोग प्लास्टिक के उपयोग में कमी लाएं, प्लास्टिक की बोतलों के उपयोग में कमी लाएं और खुद को सुरक्षित रखने के साथ साथ दूसरों को भी सुरक्षित रखने में अपनी भूमिका जरूर निभानी चाहिए। तो हमने आज प्लास्टिक की बोतलों के बारे में बात की, प्लास्टिक के बोतल का इस्तेमाल हमें क्यों नहीं करना चाहिए इसके बारे में। आशा करते हैं कि आप प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल कम करना शुरू करेंगे और इसके जगह पर अन्य विकल्पों को अपनाते हुए अपने जीवन को सुखद और खुशहाल बनाने की कोशिश करेंगे। अब बारी है भेंटवार्ता की, और भेंटवार्ता में आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान जीवन शैली में योग के फायदे क्या हैं इसके बारे में। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में हैं प्रियंका विश्वकर्मा, और ये सर्टिफाइड योगा कोच हैं भारतीय खेल प्राधिकरण से। और हम सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं प्रियंका जी।
1: नमस्कार।
0: अगर हम बात करें वर्तमान जीवन शैली में योग के फायदे के बारे में, तो आज हर एक व्यक्ति खुद को स्वस्थ रखने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। सुबह में उठ करके रनिंग करना, साइकिलिंग करना, या फिर वो तरह तरह के योग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक जानकारी की कहें कमी, तो लोगों को जानकारी की कमी है कि योगासन कितने प्रकार के हैं और कैसे करना चाहिए, तो इन सभी चीजों को लेकर के आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो आपसे प्रश्न है वो यही है कि योग और सामान्य व्यायाम में क्या अंतर है, इसके बारे में बताएं।
1: सबसे पहले योग की बात करें तो अगर हम बहुत सदियों पहले जाएं तो विश्वगुरु भारत एक योग विद्या प्रदान करता है हमें, जो काफी समृद्धशाली विद्या है। इसमें इसके अभ्यास से हम अपने शरीर, मन और आत्मा के बीच एक समन्वय बैठा के रखते हैं, जो आज की इस स्ट्रेसफुल लाइफ में हमें काफ़ी हद तक मदद कर सकता है कि हम अपने जीवन शैली को कितनी स्मूथली आगे बढ़ा सके। कोई भी छोटा स्ट्रेस हो या बड़ा स्ट्रेस हो, या घर में किसी भी मेंबर का, या बाहर ऑफिस जाते ऑफिस वर्कर्स का, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन का, या कोई बीमार किसी अवस्था में इंसान है, तो वो अपने स्थिति से कैसे अच्छे से उभर सकता है और अपने सामान्य स्थिति को कितनी बेहतरीन ढंग से बढ़ा सकता है अपने लाइफ में। इसलिए योग आजकल के लाइफ स्टाइल में बहुत हद तक मदद करता है।
0: तो हम सामान्य व्यायाम में और इसमें अगर फर्क करने की बात करें तो दोनों में क्या अंतर?
1: जब सामान्य व्यायाम की हम बात करें तो सामान्य व्यायाम में हम कोई भी बॉडी मूवमेंट या अलाइनमेंट देखते हैं और उसमें बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं होता है। हमें स्वेटिंग हो जाती है और हम सोचते हैं कि हाँ हमने व्यायाम कर लिया है। बहुत सारे इक्विपमेंट्स की नीड होती है, या फिर हम जिम को भी ऐड करें तो उसमें भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स की नीड होती है। और उसके साथ ही जब हम योग की बात करें तो जब भी हम योग में किसी अलाइनमेंट का या फिजिकल एट्रीब्यूट्स, जैसे स्टैमिना हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हुआ, कोऑर्डिनेशन हुआ, स्ट्रेंथ हुआ, एंड्योरेंस हुआ, तो इन सब के साथ हम जो भी बॉडी मूवमेंट्स करते हैं या फिर जो भी योगासन करते हैं उसमें हम अवेयरनेस लेके आते हैं। तो वो जो अवेयरनेस है वो हमारा मैक्सिमम किसी भी प्रकार के इंजरी को भी कम करता है और हमें बेनिफिट भी ज्यादा अच्छा देता है।
0: यानी दोनों में काफी अंतर है। अगर आप सामान्य प्रकार से व्यायाम कर रहे हैं तो आप उसमें थक जाते हैं, पसीना आता है, समझते हैं कि हम ठीक हो चुके, लेकिन ऐसा नहीं है। आप योग करते हैं उसके अलग तरीके हैं, अलग आसन है,
1: अलग आसन है। और योग सिर्फ आसन नहीं है, एक्चुअली ये 8 प्रकार के अलग अलग इवेंट्स को जोड़ता है, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और समाधि। तो इसमें जो आसन है इसमें हम बहुत सारे फिजिकल मूवमेंट्स करते हैं,
0: यानी जो पूरा शरीर है उसमें अलग अलग चीजों को ठीक करने के लिए अलग अलग आसन है, अलग अलग क्रियाएं हैं।
1: सबसे पहले क्लिंजिंग क्रिया है, फिर हमारे नियम है जो हमें सामाजिक अर्थव्यवस्था से या सामाजिक लोगों से जोड़ती है, उसके बाद आसन है जिसमें हम अपने शरीर, शारीरिक किसी भी प्रकार की मूवमेंट्स को या फिर बेंडिंग को, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ट्विस्टिंग, हैंड बैलेंस, लेग बैलेंस जैसे कुछ आसन है उनको करते हैं, जिसमें सूर्य नमस्कार वगैरह भी आते हैं। उसके बाद प्राणायाम है, क्योंकि सटल योग जो है सूक्ष्मता की ओर लेकर जाता है, तो प्राणायाम हमें और सूक्ष्म बनाता है, हमारे प्राण शक्ति को और ज्यादा उजागर करता है, जिसमें इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी को बैलेंस करते हैं ताकि हम कोई भी वर्क करें तो उसकी इफिशियंसी भी बढ़े और बेनिफिट्स भी बढ़े। और समन्वयता में अगर हम कोई काम करें तो उसका अचीवमेंट भी काफी हाई होता है।
0: आपने इतनी बारीकी से समझाया है कि हमारे जितने भी सुनने वाले हैं श्रोता उनको काफी अच्छा भी लग रहा होगा और ये चीजें उनको समझ में आ रही होंगी। लेकिन अगर हम आज के वर्तमान जीवन शैली में योग की बात करें तो ये लोगों को किस तरीके से फायदा पहुंचा सकते हैं, अगर लोग अपने जीवन शैली में इसको शामिल करते हैं और योग करना शुरू करते हैं तो उनको क्या क्या फायदा हो सकता है, और अगर नहीं करते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है?
1: ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले मैं चाइल्डहुड से बात करना चाहूंगी, क्योंकि अगर मैं इस बार के थीम की बात करूं तो स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग लिया गया है।
0: अच्छा।
1: तो हम जब चाइल्डहुड से बात करते हैं तो चाइल्डहुड के बाद एडल्ट्स, उसके बाद एक अवस्था आता है वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था वो स्थिति है जब हम लोगों में देखते हैं कि झुर्रियां आ रही हैं, ग्रे हेयर हो रहा है, बोन वीक हो रहा है, मसल्स लूज हो रहा है, एफिशिएंसी घट रहा है काम करने का, और फ्रीडम कहीं ना कहीं चला जाता है, हमेशा साथ किसी को होना नीड होता है। तो अगर हम शुरुआत चाइल्डहुड से लेकर एडल्ट से लेकर वृद्धावस्था तक देखें, इन सारी चीजों से दूर रहना चाहते हैं तो हमें योग अपने लाइफ में 100% जोड़ना चाहिए।
0: इससे काफी फायदे हैं।
1: काफी फायदे हैं, क्योंकि जितने सारे अभी मैंने चीजें बताई वो सारी चीजों से लोग दूर होना चाहते हैं। तो पहला तो एक फिटनेस देगा, सेकंड कि हमें अपने मन, शरीर और आत्मा तीनों को जोड़ के रखता है, तो ये हमें इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, फिजिकल फिटनेस और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ये सारे जब हम इतने अच्छे एफिशिएंट रहेंगे तो चाहे किस भी फील्ड से आप रिलेट करते हैं, आप अपने वर्क में हाईएस्ट अचीवमेंट ही करेंगे, और वो भी लेस स्ट्रेस के साथ, क्योंकि आजकल छोटे बच्चों से लेके चाहे स्कूल गोइंग हो,
0: सभी के पास मानसिक तनाव है,
1: मानसिक तनाव है, डिप्रेशन है, या छोटे छोटे बात पे वो बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो जाते हैं। तो ये सभी चीजों को काम करने के लिए प्राणायाम और मेडिटेशन बहुत मदद करता है।
0: यानी कि योग करने से बहुत सारे फायदे हैं अगर आप नियमित योग करते हैं और सही योग करते हैं।
1: हाँ, एक अच्छे योगा ट्रेनर के अंदर आप अगर योग सीखते हैं तो आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलता है।
0: अगर हम रोगों की बात करें योग से ठीक होने की, तो कितने प्रकार के रोग हैं जो प्रमाणित हो चुके हैं कि योग से ठीक हो सकते हैं?
1: एक्चुअली योग जो है वो सपोर्टिव काम करता है। सपोर्टिव काम करता है, दैट मीन्स कि आपको आपके जो लाइफस्टाइल में भोजन का तरीका है या जो भी रोग हो चुके हैं उससे क्योर करने के लिए आप जो भी डॉक्टर से दिखा रहे हैं उसके साथ अगर आप योग अपने लाइफ में जोड़ते हैं तो उसका रिजल्ट्स बहुत अच्छा है। जैसे कि जो कुछ साइकोसोमेटिक डिजीज होते हैं जैसे माइग्रेन या शुगर, बीपी है, तो उनमें हम लोग कुछ योगासन, कुछ प्राणायाम और मेडिटेशन कराते हैं। जैसे अगर शुगर है तो योग मुद्रासन, मंडुकासन और जितने फॉरवर्ड बेंडिंग आसनास हैं, पादहस्तासन, अर्ध बैकवर्ड बेंडिंग है, अर्ध चक्रासन, कुछ ट्विस्टिंग है जैसे मत्स्येंद्रासन, वक्रासन, ये सब ऐड करते हैं रेगुलर। साथ में अगर सूर्य नमस्कार कर लें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि वो 7 आसनों की सीरीज होती है।
0: अच्छा।
1: जिसमें 12 बारी हम लोग उस आसन को फिर से कुछ आसनों को रिपीट करते हैं, तो उससे बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन भी हो जाता है, ज्वाइंट्स मूवमेंट भी होता है और मेंटल स्टेबिलिटी आती है।
0: कहने का मतलब है कि अगर आपका शरीर ठीक रहेगा तो आपको बीमारियां होंगी
1: ही नहीं,
0: इसलिए योग करना फायदेमंद है शारीरिक, मानसिक और आप सामाजिक तौर पे जुड़े रहेंगे लोगों से। अब हम लोग बात करते हैं आज के युग की। आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके हाथ में मोबाइल नहीं है।
1: हाँ।
0: और ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पर लोग मोबाइल और लैपटॉप कंप्यूटर यूज ना कर रहे हो, या फिर कोई ऐसा दफ्तर ना होगा जहाँ पे लोग घंटों बैठकर ऑफिस में काम कर रहे हो। तो घंटों बैठकर कंप्यूटर में काम करने वाले लोग और जो लगातार मोबाइल चला रहे हैं उनको कुछ ना कुछ शारीरिक समस्याएं, मानसिक तनाव हो रहा है। तो इन सभी चीजों को ठीक करने के लिए या फिर उससे बाहर निकलने के लिए योग के ऐसे कौन से आसन हैं जो अगर लोग करें तो उनको फायदा हो सकता है और इन सभी चीजों से उनको राहत मिल सकती है?
1: तो सबसे पहले मोबाइल की दुनिया की बात करें तो मैक्सिमम लोगों का कंधा आगे या सिर आगे झुका रहता है। कंप्यूटर पे काम करने वाले लोगों की बात करें तो कमर से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, या उन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, या हेडेक, माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स वो रोजमर्रा की लाइफ में देखते हैं। तो आप चाहे मोबाइल पे कोई वर्क कर रहे हो या कंप्यूटर पे कोई वर्क कर रहे हो, आप अपना शेड्यूल ऐसा बनाइए कि आप अगर आधे घंटे काम करते हैं तो बीच में 5 मिनट या 10 मिनट निकालिए, अपने टेबल से उठिए, ताड़ासन, तीजक ताड़ासन, कटी चक्रासन, इसमें हमने स्पाइन का कंप्लीट एक्सरसाइज किया है। जैसे ताड़ासन किया तो ये इलोंगेट हुआ, तीजक ताड़ासन किया तो साइड्स का पूरा एक्सरसाइज हुआ है, और कटी चक्रासन किया तो ट्विस्टिंग भी हुआ है। तो जितना स्टिफनेस रहता है वो रिलीज होता है हमारे स्पाइन में, चाहे लंबर रीजन में हो, थोरैक्सिक रीजन में हो, या फिर हमारा सर्वाइकल सर्वाइकल रीजन में हो, तो जितना स्ट्रेस है वो रिलीज हो रहा है, साथ में कुछ फॉरवर्ड बेंडिंग जैसे पादहस्तासन किया, हस्तोत्तानासन किया, इसमें करने में आपको ना स्पेस की जरूरत है ज्यादा, ना कोई बहुत इक्विपमेंट की जरूरत है, आप जहाँ बैठे हैं उसके जस्ट बगल में खड़े होना है और ये कुछ आसनाज है जो करना है। साथ में जब हम भोजन कर रहे हैं तो उसके पहले 5 मिनट निकालना है अपने लिए, 5 मिनट बैठकर आप नाड़ी शोधन टेक्निक टू अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कर सकते हैं।
0: आजकल लोग घंटों ऑफिस में बैठ कर के काम करते हैं और ऐसी दिनचर्या हो गई है कि लोगों के शरीर का जो बनावट है वो भी बिगड़ रहा है और कहीं ना कहीं उनमें मोटापा बढ़ने का जो बीमारी है वो बढ़ रही है। तो अगर किसी प्रकार से किसी को इस तरह की समस्या है तो योग करने के फायदे हो सकते हैं क्या?
1: 100% हो सकते हैं, क्योंकि आपको पहले ही बताया कि ये शरीर मन और आत्मा तीनों को जोड़ के करता है, तो जिस चीज में भी जैसे हम कोई वर्क करते हैं तो जब तक हम उसमें दिमाग नहीं लगाते वो अपना अच्छा रिजल्ट नहीं देता, वैसे ही अगर हम आसन अपने लिए 24 घंटे में अगर 1 घंटे भी नहीं निकाल रहे हैं तो आप कैसी लाइफ जी रहे हैं। तो अगर आप 6 घंटे या 9 घंटे काम करते हैं तो उसमें 1 घंटे तो एटलीस्ट अपने नहीं निकाल सकते, और 1 घंटे लगातार निकालना भी नहीं है। आप 5 मिनट या 10 मिनट बैठ के प्राणायाम कर ले रहे हैं, रात में अगर अपने बेड पे जाते हैं तो 15 मिनट का मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ भी नहीं आता है तो बैठ कर आँख बंद करके जो पूरी जो दिनचर्या रही है उसको रिवाइंड कर सकते हैं, वहीं आपको बहुत सारी क्लैरिटी भी मिलती है।
0: अब हमारा आखिरी प्रश्न आपसे है कि विश्व योग दिवस है 21 जून को, और योग दिवस पर आप हमारे जितने भी सुनने वाले श्रोता हैं जो आपको सुन रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: अभी तो मैं यही सलाह देना चाहूंगी कि अब तो योग को एज ए स्पोर्ट्स भी जोड़ लिया गया है। हाल में ही अभी वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप हुआ जिसमें अपने भारत को लगभग 114 मेडल्स मिले हैं और काफी उम्दा प्रदर्शन रहा है। और इस बार का जो थीम है स्वास्थ्य वृद्धावस्था के लिए योग, तो आप कोई ये बहाना भी नहीं कर सकते कि अभी मेरा एज नहीं है या मैं नहीं कर सकता, हर किसी के लिए योग है और हर किसी को बेनिफिट पहुंचा सकता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने डेली लाइफ में योग को जरूर ऐड कीजिए, आप किसी भी सिचुएशन में हैं आप उससे उबर सकते हैं, ये सिर्फ आपका माइंडसेट है। और हर दिन अपने लाइफ में छोटा छोटा गोल्स बनाइए, उसको अचीव करने के लिए ट्राई कीजिए और अपने न्यू वर्जन को खोलिए।
0: आपने बहुत अच्छी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि वर्तमान जीवन शैली में योग के क्या फायदे हैं और क्या क्या चीजें आपको लाभकारी हो सकती हैं। तो आपने इतना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए और आप इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: तो अभी हम बात कर रहे थे भेंटवार्ता में वर्तमान जीवन शैली में योग के क्या फायदे हैं इसके बारे में, इस विषय पर जानकारी दे रही थी प्रियंका विश्वकर्मा जो कि सर्टिफाइड योगा कोच हैं भारतीय खेल प्राधिकरण से। अब बारी है वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने की, और आज हम बात करने वाले हैं वैज्ञानिक रेने लेनियक के बारे में। हम बात कर रहे हैं रेने लेनियक के बारे में, जिन्हें आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में स्टेथोस्कोप का आविष्कारक माना जाता है। इनका जीवन समर्पण, मेहनत, वैज्ञानिक सोच और मानव सेवा का अद्भुत उदाहरण भी माना जाता है। इनका जन्म 17 फरवरी सन 1781 को फ्रांस के सुंदर नगर में हुआ। इनके बचपन का समय बहुत कठिनाइयों से भरा रहा। जब ये बहुत छोटे थे तभी इनकी माता का निधन हो गया। इसके बाद इनका पालन पोषण इनके चाचा ने किया जो स्वयं एक प्रतिष्ठित चिकित्सक थे। चाचा के मार्गदर्शन में रेने लेनियक की रुचि चिकित्सा विज्ञान की ओर बढ़ गई और इन्होंने कम उम्र में ही डॉक्टर बनने का निश्चय कर लिया। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन शुरू किया। उस समय फ्रांस में चिकित्सा शिक्षा तेजी से विकसित हो रही थी और लेनियक ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया। पढ़ाई में अत्यंत मेधावी और शरीर रचना विज्ञान, रोग विज्ञान तथा शल्य चिकित्सा जैसे विषयों में विशेष रुचि रखते थे। बाद में इन्होंने पेरिस के प्रसिद्ध चिकित्सा संस्थानों में अध्ययन किया और एक सफल चिकित्सक के रूप में अपनी पहचान भी बना ली। उस समय डॉक्टरों के पास रोगों की जांच के सीमित साधन हुआ करते थे। हृदय और फेफड़ों की धड़कनों को सुनने के लिए डॉक्टर सीधे रोगी के सीने पर कान लगाया करते थे। ये तरीका न केवल असुविधाजनक था बल्कि कई बार सही परिणाम नहीं मिलने के कारण बहुत समस्या भी हो जाती थी। वर्ष 1816 में एक ऐसी घटना घटी जिसने चिकित्सा विज्ञान का इतिहास बदल कर रख दिया। एक दिन लेनियक के पास हृदय संबंधी समस्या से पीड़ित एक महिला रोगी आई। रोगी की जांच करते समय उन्हें सीधे कान लगाकर धड़कन सुनना उचित नहीं लगा। तभी उन्हें बच्चों के एक खेल की याद आई जिसमें ध्वनि एक छोर से दूसरे छोर तक किसी खोखली वस्तु के माध्यम से पहुंचती थी। इन्होंने एक कागज को मोड़कर लंबी नली बनाई और इसके माध्यम से इसके एक सिरे को रोगी के सीने पर और दूसरे सिरे को अपने कान में लगा लिया। इन्हें आश्चर्य हुआ कि हृदय की धड़कन पहले से कहीं अधिक साफ सुनाई दे रही थी। इस प्रयोग ने उन्हें एक नए उपकरण के निर्माण की प्रेरणा दे दी। बाद में इन्होंने लकड़ी से एक विशेष नली बनाई जिसे इन्होंने स्टेथोस्कोप नाम दे दिया। ये शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ है सीने का निरीक्षण करना। यह चिकित्सा विज्ञान के इतिहास में एक क्रांतिकारी आविष्कार के रूप में साबित हुआ। स्टेथोस्कोप के माध्यम से डॉक्टर मरीज के हृदय, फेफड़ों और शरीर के अन्य अंगों की आंतरिक ध्वनियों को स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। इससे रोगों का निदान अधिक सटीक और प्रभावी हो गया। आज भी दुनिया भर के डॉक्टर स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं और यह चिकित्सा पेशे का प्रतीक माना जाता है। रेने लेनियक ने केवल स्टेथोस्कोप का आविष्कार नहीं किया बल्कि फेफड़ों के रोगों के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने तपेदिक यानी कि टीबी, निमोनिया और अन्य श्वसन रोगों के लक्षणों के निदान के बारे में भी विस्तृत अध्ययन किया है। इन्होंने विभिन्न रोगों से प्रभावित फेफड़ों की ध्वनियों को पहचानने और उनके आधार पर रोग का पता लगाने की कई सारी विधियां भी विकसित की। इनका मानना था कि किसी भी रोग का सही उपचार तभी संभव है जब उसका सटीक निदान किया जाए। इसी सोच ने उन्हें चिकित्सा विज्ञान के महानतम चिकित्सकों में शामिल करने का काम किया। की बात करें जिस तपेदिक रोग का इन्होंने गहराई से अध्ययन किया था, उसी बीमारी ने इन्हें अपनी चपेट में ले लिया। लंबे समय तक रोगियों के संपर्क में रहने के कारण टीबी से संक्रमित होने से स्वास्थ्य लगातार बिगड़ने लगा और 13 अगस्त सन 1826 को मात्र 45 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इनका जीवन बहुत लंबा नहीं था लेकिन इनके कार्यों ने चिकित्सा विज्ञान को नई दिशा देने का काम किया। इनका आविष्कार लाखों लोगों के जीवन को बचाने में सहायक बना। इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि ज्ञान, जिज्ञासा और मानव सेवा की भावना से किया हुआ कोई भी कार्य सदियों तक मानवता का मार्गदर्शन करता है। तो हमने आपको बता दिया कि रेने लेनिये कौन थे और इन्होंने चिकित्सा विज्ञान में क्या योगदान दिया था इसके बारे में। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खोज और आविष्कार में आज परमाणु रिएक्टर के बारे में। विश्व में ऊर्जा की मांग को अगर लेकर आज बात की जाए तो लगातार इसकी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। बिजली उत्पादन के लिए कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे पारंपरिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है लेकिन इनके सीमित भंडार और पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के कारण वैज्ञानिकों ने वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की खोज शुरू कर दी। इसी खोज का परिणाम है परमाणु ऊर्जा और इससे उत्पन्न करने वाला उपकरण जिसे परमाणु रिएक्टर कहा जाता है। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि परमाणु ऊर्जा है क्या। परमाणु ऊर्जा वो ऊर्जा है जो किसी परमाणु के नाभिक से प्राप्त होती है। जब किसी भारी परमाणु जैसे यूरेनियम या प्लूटोनियम का नाभिक टूटता है तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है और इसी ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। परमाणु रिएक्टर के विकास की बात करें तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। बाद में वैज्ञानिकों ने समझा कि इस प्रक्रिया से अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु ऊर्जा पर व्यापक शोध शुरू हो चुका था। इसी क्रम में इटली के महान वैज्ञानिक एनरिको फेर्मी के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम ने दुनिया का पहला सफल परमाणु रिएक्टर बना लिया। इसके बाद परमाणु रिएक्टरों का उपयोग बिजली उत्पादन, चिकित्सा, कृषि और अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में शुरू हो गया। परमाणु रिएक्टर एक विशेष उपकरण है जिसमें नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित तरीके से संचालित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षित रूप से ऊर्जा उत्पन्न करना, रिएक्टर में उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग भाप बनाने और टरबाइन चलाने के लिए किया जाता है जिससे बिजली पैदा होती है। परमाणु रिएक्टर कई महत्वपूर्ण भागों से मिलकर बना होता है। इसमें ईंधन, मॉडरेटर, नियंत्रण करने वाली छड़ें, शीतलक, शीतलक, सुरक्षा कवच जैसी चीजें शामिल होती हैं। अब अगर इसके लाभ की बात करें तो सबसे पहले तो बहुत कम ईंधन से अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अपेक्षाकृत बहुत कम होता है। बड़े पैमाने पर लगातार बिजली उत्पादन संभव है। चिकित्सा, कृषि और वैज्ञानिक अनुसंधान में उपयोगी रेडियो आइसोटोप तैयार किए जा सकते हैं। परमाणु ऊर्जा अत्यंत उपयोगी है, फिर भी इसके साथ कुछ चुनौतियां जुड़ी हैं। रेडियो धर्मी अवशिष्टों का सुरक्षित निपटान, दुर्घटनाओं की संभावना और रिएक्टरों की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसलिए परमाणु संयंत्रों में उच्च स्तर की सुरक्षा व्यवस्था अपनाई जाती है। भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास में होमी जहांगीर भाभा का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। आज भारत में अनेक परमाणु ऊर्जा संयंत्र कार्यरत हैं, जो देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। परमाणु रिएक्टर विज्ञान की एक ऐसी उपलब्धि है जिसने ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। इसका आविष्कार मानव बुद्धिमता, अनुसंधान और तकनीकी प्रगति का उत्कृष्ट उदाहरण है। यदि इसका उपयोग सावधानी और जिम्मेदारी के साथ किया जाए तो ये भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। तो अगर विज्ञान के क्षेत्र में आपका भी कुछ योगदान है, आप कुछ नई चीजों को ढूंढने में लगे हुए हैं, तो आप मेहनत करते रहें, सफलता आपको एक दिन जरूर मिलेगी और आप अपने मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो हमने ढेर सारी आपसे बातें कर ली और अब हमारे स्टूडियो की जो घड़ी है वो आपसे विदा लेने का इशारा कर रही है, लेकिन जाने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अपने स्वास्थ्य का, अपना और अपने घर परिवार के सभी लोगों का पूरा ख्याल रखें और जीवन को अच्छे से अनुशासित होकर नियमों से जीते रहें। इन्हीं सारी बातों के साथ अब आपसे लेते हैं विदा। अगली कड़ी में हम फिर से मिलेंगे नई रोचक जानकारी और तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: कृषि व्यापार मेला 2026 ये उत्सव नहीं महाउत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत।
3: भाइयों बहनों जोहार, झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूं, निमंत्रण देता हूं कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद, जोहार।
2: इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखें झारखंड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर। 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान जगत, चर्चा प्लास्टिक बोतल के उपयोग से करे परहेज पे बातें हो रही थी, और भेंट वार्ताकार थी प्रियंका विश्वकर्मा। और आप भेंट वार्ता सुन रहे थे वर्तमान जीवन शैली में योग के फायदे। वाचन एवं सहयोग बसंत कुमार का, प्रस्तुति प्रभु सिरन की।

ये आकाशवाणी का राज्य केंद्र है। मीडियम वी 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्स पर एक नए अंक के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपके साथ, आपकी दोस्त कंचन, आपका पसंदीदा कार्यक्रम जुहार रांची को लेकर। आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ और करते हैं नमस्कार जुहार। दोस्तों, कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ। तो आज का सुविचार है, जिंदगी को रंगीन कहा गया है क्योंकि यह हमें ना कई रंग दिखाती है। कभी जिंदगी हमें हंसना सिखाती है तो कभी रोना। हर कोई के जीवन में कई तरह की मुसीबत परेशानियां होती है। इनसे हमें डर कर भागने की बजाय मुसीबतों का सामना करना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए और उसका हल निकालना चाहिए और हल निकाल कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और हम आज को बेहतर करते हैं तो कल अपने आप बेहतर होगा।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कार्यक्रम में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार रांची अपनी दोस्त कंचन के साथ। चलिए कार्यक्रम

शामिल हैं और इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलने और मेघ गर्जन के साथ वज्रपात होने की बहुत ही अधिक संभावना है। और मौसम विभाग ने बताया है कि इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है और इसके अलावा बाकी 7 जिलों में भी तेज हवा के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप मौसम का मिजाज तो अभी देख ही रहे हैं, कब बदल जाए पता ही नहीं चलता है, तो ऐसे में अपना खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। घर से बाहर निकले तो छतरी लेकर ही निकले, अपने साथ पानी की बॉटल, खाने पीने की चीज़ें जो कुछ भी है लेकर निकले, बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें और इस मौसम का लुत्फ़ उठाएं।

0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं आज के दिन की। आज के दिन में आज हम बातें करेंगे इतिहास पे। सबसे पहले 1576 में आज ही के दिन मुगल बादशाह अकबर और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ था। और 1928 में पहली महिला पायलट अमेरिकी विमान चालक अमेलिया एयरहार्ट अंटार्कटिक महासागर

सागर के ऊपर विमान से उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी आज ही के दिन। आज स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा में पुर्तगालियों के दमनकारी शासन के खिलाफ एक ऐतिहासिक आंदोलन का आगाज किया था। इसी दिन की याद में आज गोवा में हर साल आज के दिन गोवा क्रांति दिवस मनाया जाता है। ये गोवा के लिए एक बहुत ही उत्साह का दिन है। और आज 1857 की क्रांति की सबसे बड़ी नायिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के मैदान में ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। सबसे पहले तो हम उन्हें अपने आकाशवाणी परिवार से की ओर से सत सत नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आपको बताया कि मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 की प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी। बलिदानों की धरती भारत में ऐसे ऐसे वीरों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने रक्त से देश प्रेम की अमिट गाथाएं लिखी। यहाँ की ललनाएं भी इस कार्य में किसी से पीछे नहीं रही। उन्हीं में से एक का नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने न केवल भारत की बल्कि विश्व की महिलाओं को गौरवान्वित किया और उनका जीवन स्वयं से वीरोचित गुणों से भरपूर अमर देश भक्ति और बलिदान की एक अनुपम गाथा है। अंग्रेजों के विरुद्ध रण यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देने वाले योद्धाओं में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का नाम सर्वोपरि माना जाता है। 1857 में उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सूत्रपात किया था और अपने शौर्य से उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। दोस्तों ये तो थी बातें रानी लक्ष्मीबाई की। दोस्तों हमें जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनसे हमें कुछ ना कुछ बहुत ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अपने जीवन में उतार सकते हैं और सीखने की भी ज़रूरत है। हमें जब चाहे जैसी आवश्यकता हो अपने देश के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए और देश को विकास करने में अहम भूमिका हम सबकी एक भागीदारी है अच्छे नागरिक होने के नाते। तो चलिए हम उनको याद करते हैं और समर्पित करते हैं ये गानों को।

कंचन के साथ। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं। इतिहास में हम बातें कर रहे थे और अब हम आगे बातें करते हैं उन हस्तियों की जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। तो आज 1958 में आज ही के दिन होमी डैडी मोतीवाला, जो नौकायान में भारत की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे थे, उनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1899 में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और गांधीवादी विचारक, गांधीवादी चिंतक थे दादा धर्माधिकारी, उनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। 1887 में अनुग्रह नारायण सिन्हा, भारत की स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, वकील, राजनीतिज्ञ और आधुनिक बिहार की निर्माता थे, उनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। और 1931 में आज ही के दिन अखिल भारतीय संगठनों के प्रमुख, संयोजक और राजनेता के एस सुदर्शन का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था।

दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं अब उन हस्तियों का जिन्होंने इस दुनिया को आज ही के दिन अलविदा कहा था। तो सबसे पहले मिल्खा सिंह भारत के ऐसे प्रसिद्ध धावक थे जिन्हें लोग फ्लाइंग सिख के नाम से जानते थे। उनका निधन आज ही के दिन 2021 में हुआ था। 1974 में सेठ गोविंद दास स्वतंत्रता सेनानी, सांसद तथा हिंदी के साहित्यकार थे। उनका निधन भी आज ही के दिन हुआ था। 2009 में प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार, शास्त्रीय गायक और सरोद वादक अली अकबर खां का निधन भी आज ही के दिन हुआ था। 2002 में हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री नसीम बानो का निधन भी आज ही के दिन हुआ था। दोस्तों, नसीम बानो, उनकी कुछ प्रमुख फिल्मों में हम बातें करते हैं। खून का खून, जो कि 1935 में यह उनकी पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने सोहराब मोदी के साथ काम किया था। उसकी हिट फिल्मों में हम बातें करें तो पुकार, उजाला, चल चल रे, नौजवान, अनोखी अदा, शीश महल जैसे कई बेहतरीन फिल्में नसीम बानो ने हमें दी। उनकी अनोखी अदा आज भी सबके चेहरों पे आज भी वैसी ताजा है। दोस्तों, उनके गाने तो हमारे पास नहीं है, लेकिन उसके बदले हम दूसरे गाने आपको सुनाते हैं। वो आपको, उम्मीद करते हैं कि वो आपको अच्छा लगेगा।

दोस्तों, आज हम एक और दिवस मना रहे हैं, गुरु अर्जुन देव शहीदी दिवस। दोस्तों, शक्ति और शांति के पुंज शहीदों के सरताज सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव जी की शहादत अतुलनीय है। मानवता के सच्चे सेवक, धर्म के रक्षक, शांत और गंभीर स्वभाव के स्वामी गुरु अर्जुन देव जी अपने युग के सर्वमान्य लोक नायक थे। वे दिन रात संगत की सेवा में लगे रहते थे। श्री गुरु अर्जुन देव जी सिख धर्म के पहले शहीदी थे। गुरु जी शांत और स्वभाव के स्वामी थे। वे अपने आप के सर्वमान्य लोक नायक थे और मानव कल्याण के लिए उन्होंने आजीवन शुभ कार्य किए। दोस्तों, हम उन्हें इस विशेष शुभ कार्यों के लिए हम उन्हें आज याद करते हैं और आज के दिन को हम गुरु अर्जुन देव जी शहीदी दिवस मनाते हैं। तो हम उन्हें सत सत नमन करते हैं और ये गीत सुनते हैं।

दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब बातें करते हैं, थोड़ी चर्चा हम खेल की। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो हम झारखंड की बातें करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जे एस सी ए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में झारखंड T20 क्रिकेट लीग के 8वें दिन गेंदबाजों का दबदबा दिखा और दोनों मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने अपने स्कोर का सफल बचाव करते हुए महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। दिन के पहले मुकाबले में जमशेदपुर स्टील्स ने संताल स्ट्राइकर्स को 15 रन से हराया। दोस्तों, ये तो थी हमारे झारखंड की बातें। अब हम थोड़ी चर्चा हम बाहर की भी कर लेते हैं। आज विश्व कप में मेसी की पहली हैट्रिक से अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया।

दोस्तों, अब आगे हम बातें करते हैं थोड़ी सेहत की। जैसा कि हम सब अभी देख ही रहे हैं कि मौसम किस तरह से चेंज हो रहा है, मौसम में उतार चढ़ाव हो रहा है, ऐसे में हमें अपनी सेहत का खास ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। जिस तरह से अभी उमस गर्मी हो रही है और इस गर्मी में बारिश होना तो सुकून देता है, लेकिन यह अपने साथ उमस और कई तरह की बीमारियों जैसे वायरल डेंगू मलेरिया स्किन इन्फेक्शन का खतरा भी लेकर आता है। तो ऐसे में बदलते मौसम में खुद का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। उमस के कारण पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, इसीलिए हल्का भोजन ले जो आसानी से पच जाए। खाना हमेशा ताज़ा और गर्म खाएं, खुला या स्ट्रीट फूड खाने से बचें, क्योंकि इससे पेट का संक्रमण का खतरा होता है। इसके अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने के लिए आप अपने आहार में हर्बल चाय, ताजे जूस, सूप, नींबू पानी, नारियल पानी आप ले सकते हैं। और अपने आसपास बेहद साफ सफाई रखें। जैसे कि अभी बारिश का अब समय तो हो ही गया है, मानसून तो अब पहुंचने ही वाला है, मतलब हम कह सकते हैं कि पहुंच ही गया है। तो ऐसे में अपने आसपास साफ सफाई रखने की ज़रूरत है। और अभी जिस तरह से मौसम में बदलाव हो रहे हैं, जिस तरह से बारिश हो रही है, ऐसे में पानी का जमना तो लाजमी है। तो रुके हुए पानी को जमा होने से रोके और गड्ढे को भर दे और गंदगी से आसपास साफ सफाई रखे और खुद को सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे।

इसी गाने के साथ जोहर रांची का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। जाते जाते बस यही कहना चाहेंगे कि आप हमेशा खुश रहे, जीवन में आगे बढ़ते रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ अपने दोस्त कंचन को दीजिए विदा। नमस्कार, जोहर। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही देर में।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर फरमाइसी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद को लेकर हाजिर हूँ मैं आज आपके साथ, आपकी दोस्त कंचन। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए कार्यक्रम की पहली भेंट आप सबों की पसंद पर। आप हैं लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिबा कौर, बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वली उल्लाह फकीर, डब्लू उल्लाह फकीर, परवीन आसमा फकीर, बुलंद शहर से बद्रू वली अंसारी, फरजू वली अंसारी, फर्जी अली अंसारी, और ग्राम बग बुड़वा पथरिया से हैं नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रो नामिका, उत्कर्ष नेताम। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर फिल्म अर्थ से ये गीत, जगजीत सिंह की आवाज़ में। कैफी आजमी का लिखा गीत है और संगीत जगजीत सिंह का ही है।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद अपनी दोस्त किंचन के साथ। दोस्तों कार्यक्रम जारी है, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, फिर लौटेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: DSNR。
1: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं आपकी पसंद पर। आप हैं सरगुजा मैनफाड़ से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम, जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बिलदार, अकरम आसमा बिलदार, उल्लाह आसमा बिलदार। आप सबों ने फरमाइश की है फिल्म आंधी से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। गुलजार का लिखा गीत है और संगीत आरडी वर्मन का है। फिल्म का नाम है आंधी।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद अपने दोस्त कंचन के साथ। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का अगला खत लेते हैं रिंगने छत्तीसगढ़ से। दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, ददरंगी से भागवत वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर। आपकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म इज्जत से, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। साहिर लुधियानवी का लिखा गीत है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

और अब कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं फिल्म भावना से जगजीत सी और चित्रा सी की आवाज में। कैफी आजमी का लिखा गीत है और संगीत बप्पी लहरी का है। और इस गाने को फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिका, बलविंदर बीरक, जैतिक बीरक, मिका बीरक, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहार नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

इसी गाने के साथ आपकी पसंद का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। अपनी दोस्त कंचन को दीजिए विदा, नमस्कार। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं हमारे बहनों का कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

0: बहनों नमस्कार। आपसे मिलकर खुशी से झूम जाती हूँ। वक्त चाहे कितना भी कठिन हो, यहाँ आकर सब भूल जाती हूँ। बताने आज जो आई हूँ, कहीं वो भूल न जाऊँ। तो चलिए सबसे पहले अपने प्रिय कार्यक्रम गृहलक्ष्मी की शुरुआत करती हूँ।
1: बहनों, कार्यक्रम को लेकर हम हाजिर हैं दो सखियाँ, महजबीन और
0: शिल्पी।
1: हाँ, नमस्कार
0: बहनों। हम जानते हैं कि आप अपना और पूरे परिवार का ख्याल बखूबी निभाती हैं, क्योंकि परिवार की खुशहाली में ही है जीवन की सुगंध।
1: और हमारी बहनों को स्वास्थ्य का मूल्य मंत्र भी पता है। जहाँ सजगता और सावधानी होगी, उस परिवार में हंसी गूंजती होगी, और यही है हमारी खुशहाल परिवार का राज।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और आज की भाग भरी जिंदगी में ज्यादातर लोग चमकदार पैकेट और बंद खाद्य पदार्थों की ओर भाग रहे हैं, क्यों मजेबिन है ना। लेकिन हमारी जो बहनें हैं काफी समझदार हैं, वो अपनी पारंपरिक भोजन ही अभी भी बनाती हैं।
1: हाँ, क्योंकि हम भी तो सखियाँ को समय समय पर जागरूक हम करते हैं ना, कि किस तरह से आपको अपनी ज़िंदगी बितानी है। बहनों, हमारी थाली में परोसा गया भोजन केवल स्वाद ही नहीं देता, बल्कि हमें स्वास्थ्य, पर्यावरण और परंपराओं से भी जोड़े रखता है।
0: क्या बात है मेजवीन। और तुम्हें याद है ना कि दादी नानी के समय में सादा भोजन कितना स्वादिष्ट और पौष्टिक होता था, पता है क्यों? क्योंकि उसमें प्रकृति का स्पर्श था, हाथों की मेहनत थी, अपने घर के अहाते में उगाए गए फल सब्जियां, मौसमी जितने भी फल सब्जियां होती है वो होती थी।
1: बिल्कुल। और ये भी है कि हम देखते हैं थे कि जिस तरह से वो पहले का खान पान, उसका स्वाद और उससे वो खुशबू जो आज तक हम लोग को ऐसा लगता है कि मतलब वो सुगंध हमारी ज़िंदगी से जुड़ गई है। घर के अहाते में जो जिस तरह से रोपे जाते थे मौसमी साग सब्जियां, और इस तरह से भारतीय समाज की यही पहचान होती थी। हम भारतीय सामानों को खरीदते हैं क्योंकि हमारे किसान भाई बहनों की मेहनत को उसमें एक कहेंगे कि उन्हें
0: सफल बनाना
1: सफल
0: है।
1: बनाना होता है, और उन्हें जागरूक करना भी होता है, उन्हें आत्मनिर्भर भी करना होता है। आर्थिक संबंध देना हमारी संस्कृति की पहचान भी है। बहनों, यह भी सत्य है कि समय के साथ साथ कदम मिलाकर चलना चाहिए, लेकिन बात जब अपनी संस्कृति की हो तो हमें पुराने दौर से भी गुजरना होता है। यानी कि हम अपनी जो पारंपरिक भोजन, वस्त्र, जो भी वेशभूषा है, जो भी जिस तरह की जिंदगी बितानी है, वो हमें नहीं छोड़नी चाहिए।
0: बिल्कुल, बहुत खूब आपने बात कही बहनों। अब जरूरत है कि प्राकृतिक भोजन और स्थानीय परिवेश के अनुरूप भोजन को अपनाने की। और कहते हैं ना कि देशी भोजन स्वास्थ्य का बहुत बड़ा खजाना है। भारतीय संस्कृति में परिवार समाज और लोगों को जोड़ता है, वह विविधता में एकता का प्रतीक माना गया है। सखियों, हर क्षेत्र का भोजन अपनी सांस्कृतिक पहचान रखता है। और अगर हम अभी झारखंड में हैं महजबीन, तो यहाँ की बात करें तो यहाँ मड़ुआ, बाजरा, ज्वार की हम देखते हैं कि सिर्फ रोटी ही नहीं बनाई जाती है, बल्कि कई तरह के व्यंजन बनते हैं जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है ना।
1: शिल्पी, तुम इस तरह की बातें कर रही हो तो मुंह में ऐसा लग रहा है कि एकदम स्वाद आ रहे हैं, मुंह से
0: बिल्कुल
1: पानी आ रही है। और हम जो बातें स्वाद को याद दिला दिया, जिस तरह से हम बातें कर रहे हैं, बहुत सारी बातों को यानी स्वाद को याद दिला रहे हैं। बिहार की लिट्टी चोखा हो, या फिर दक्षिण भारत की इडली सांभर, पंजाब की मक्के की रोटी और साग, या फिर राजस्थान की थाली, रंग बिरंगी थाली जिस तरह से सजी होती है। तो सखियों, यह केवल स्वाद ही नहीं बल्कि हमारी मिट्टी, मौसम और संस्कृति की भी पहचान होती
0: बिल्कुल।
1: है।
0: और भाई, जब हम बात करते हैं अपने दूसरे राज्य की, जैसा कि आपने कहा कि पंजाब की मक्के की रोटी, साग, राजस्थान की रंग बिरंगी थाली, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम वहाँ जा करके उसे जरूर खाना पसंद करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ स्थानीय परिवेश और संस्कृति के अनुसार भोजन किया जाता है। और पर्यटन को बढ़ावा मिले मजबीन, इसके लिए हमें चाहिए कि पर्यटक, यानी कि हम कहीं भी जाते हैं दूसरे राज्य में घूमने, तो वहाँ के स्थानीय जो फूड होते हैं ना, उसको जरूर चखना चाहिए।
1: और चखना भी चाहिए, अगर हो सके तो उसे साथ में लाने की कोशिश करें, यानी कि आप उसे बनाने का तरीका भी ज़रूर पूछें। अगर आपको आसानी हो बनाने के तो आपको अगर अच्छा लगे तो उसे बनाने की कोशिश भी करें। हमने आपसे ये बातें इसलिए कि आज बताई जा रही है कि आज ये
0: बिल्कुल आज एक विशेष दिवस है। मैं जबीन आप ये कहना चाहती हैं बहनों से कि आज सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे है, यानी कि हमारी जो छोटी छोटी खान पान की आदतें ही स्वस्थ समाज और हरित भविष्य की नींव है।
1: सखियों याद रखिए कि अन्य का सम्मान जो अन्य का जो हमें सम्मान करना चाहिए तथा भोजन ग्रहण करने से पहले और बाद में प्रणाम करना चाहिए, यानी कि उन किसानों को धन्यवाद दें जिनकी मेहनत से हमें आज थाली सजी मिल रही है और हमारी भूख भी मिट रही है। आज घर के बच्चों में भी संस्कार डालिए कि आप किस तरह से बच्चों को जो अनाज की इज्जत होती है उसे करने की जो तरीका होता है वो सिखानी चाहिए। और एक एक दाना में अपनी जो थाली में है उसे बिल्कुल व्यर्थ ना जाने दें, यानी कि खाना बचाने के जो एक फैशन सा चल गया है ना उसे कम से कम इस चीज़ को तो हटानी
0: बिल्कुल चाहिए। और मैं जब इन सिर्फ खाने घर की बात नहीं करेंगे, हम आज हम ये भी कहना चाहेंगे सखियों से कि जब हम किसी विवाह में जाते हैं, किसी बड़े समारोह में जाते हैं, तो हमारे साथ हमारे बच्चे भी जाते हैं, तो वैसे में कोशिश करनी चाहिए कि जब हमारे बच्चे जो भी प्लेट मिले तो हम ध्यान रखें कि वो क्या खा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है मैं से भी ना कि बच्चे बहुत कुछ स्वाद चखने के कारण वो इतना सारा थाली भर लेते हैं कि बाद में हाँ वो बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए हम इस बात को आज सखियों से कहना चाहेंगे इस विशेष दिन पर कि इस बात का आप ख्याल रखें कि उतना ही ले थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। और अब बहुत सारी बातें हमने कर ली अपनी बहनों से और अपनी बातों को अब यहीं पे थोड़ा सा रोकते हैं और एक सुरीला गीत सुनते हैं सखियों के संग।

0: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: कृषि व्यापार मेला 2026 ये उत्सव नहीं महाउत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत।
3: भाइयों बहनों जोहार, झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद, जोहार।
2: इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखें झारखंड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर। 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: सखियों, एक बार पुनः स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने ही कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं भेंटवार्ता। आज का विषय है खाद्य सुरक्षा और भारतीय कृषि। और आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर इरफान अंसारी, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग, और उनसे बातचीत की है हमारे रेडियो सखी मैं जबीन परवीन। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत।
3: खाद्य सुरक्षा के महत्व को उजागर करना और खाद्य जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए जागरूकता बढ़ाना है। मुख्य लक्ष्य सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के सभी स्तरों पर खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करना भी है। और खाद्य सुरक्षा न केवल स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आर्थिक समृद्धि, कृषि विकास और दीर्घकालिक के जीवन गुणवत्ता के लिए भी जरूरी है। बहुत सारी बातें हैं जो आज हम जानेंगे खाद्य सुरक्षा के बारे में। बहनों, मिलिए आज के मेहमान से। आज के हमारे मेहमान हैं झारखंड सरकार के खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के वर्तमान मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। और आज हम डॉक्टर इरफान अंसारी जी से जानेंगे कि वो खाद्य सुरक्षा पर क्या संदेश देना चाहेंगे।
4: धन्यवाद मैडम। देखिए, इस राज्य का सबसे अहम डिपार्टमेंट खाद्य सुरक्षा है हमारा, और लगातार मैं इस विभाग को खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, बेहतर काम कर रहा हूँ। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का मुझे मार्गदर्शन हमेशा प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से आपने देखा होगा कि हम लोगों ने किसानों को पहला ऐसा राज्य बना झारखंड जो वन टाइम पेमेंट हम लोगों ने किया। आज इस राज्य के तमाम हमारे जो किसान वर्ग हैं काफ़ी खुश हैं। जहाँ जाता हूँ किसान लोगों ने कहा कि नहीं मंत्री जी, आपका जो एफर्ट है हम लोग काफ़ी फ़ायदा मिला है, और हम लोगों को आगे से और हम इस राज्य में खेती करेंगे, क्योंकि आपने हम लोगों को हिम्मत दिया, आपने ताकत दिया। तो वन टाइम भुगतान से जो परेशानियां होती थी हम लोगों का, वो कम हुआ है, बिचौलिया कम हुआ है, दूसरे राज्यों में जो हम लोग अनाज भेजते थे वो कम हुआ है। तो कह सकते हैं कि झारखंड अपने पैरों में खड़ा हो रहा है। दूसरा है कि अभी हम लोग दाल की खेती हम लोग करने जा रहे हैं, जो कम होता था, इस पर हमारा फोकस है कि दाल के क्षेत्रों में भी झारखंड अच्छा करे। तीसरा है कि हम लोग बड़े पैमाने पर PDS हमारे लाभुक लोग आते हैं वहाँ दुकान में, और उसको हम लोग बेहतर संचालित करने के लिए जो 2G मशीन था, कई जो लाभुक हैं बहुत परेशान होते थे, 4-5 महीना बैकलॉग में चला गया, उनको खाद्यान्न नहीं मिलता था उनको। तो इसको देखते हुए मैंने 2G को बदल दिया और 4G 5G मशीन हम लाए, EPOS मशीन, और जिससे सभी लोग खुश हैं। अब समय पर अनाज मिल रहा है, कोई ठप्पा नहीं, कोई ऑफलाइन नहीं, एकदम ऑनलाइन मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि बेहतर से बेहतर सेवा देना राज्य के लिए मेरी प्राथमिकता है, और हम वो काम कर रहे हैं। हमारे दिशम गुरु शिवू सोरेन जी का एक योजना था, सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना। तो झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ हम लोग मात्र 10 रुपया में हम लोग साड़ी देते हैं। आप एक तरफ अनाज भी ले रहे हो, दूसरी तरफ आप साड़ी भी, वस्त्र भी दे रहे हैं। 10 रुपया तो मात्र नाम का है, लेकिन कहने का मतलब है अच्छी साड़ी हम लोग दे रहे हैं। हमारे सनातन भाइयों के लिए हम लोग धोती दे रहे हैं, और हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए हम लोग लुंगी दे रहे हैं। तो इस राज्य में एक समावेश है हमारा, यहाँ आपसी भाईचारगी, कोई भेदभाव नहीं, बेहतर काम करके दिखाना, लोगों को सम्मान करना और उनका दिल जीतना, ये मेरी प्राथमिकता है मैडम। धन्यवाद
3: बहनों, आज हम आपको जानकारी दे रहे थे खाद्य सुरक्षा के बारे में। आज के हमारे मेहमान थे झारखंड सरकार के खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के वर्तमान मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी। सर, आपका हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहनें अभी सुन रही थी भेंटवार्ता। भेंटवार्ता का विषय था खाद्य सुरक्षा और भारतीय कृषि। हमारे आज के मेहमान थे डॉक्टर इरफान अंसारी और उनसे बातचीत की है हमारी रेडियो सखी मैं जवीन परवीन। और सखियों, इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद संगीत की दुनिया में चलते हैं और सुनते हैं प्यारा सा गीत।
5: विपुरा के पतवा सर के डोले मनवा कि ही आरा में उठत हिलो, अरे पुरवा के झोंकवा में

0: हेलो, आपका स्वागत है फिर से हमारे कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। आज हम आपको जानकारी देंगे एआई का बढ़ता प्रयोग और सावधानियाँ। जानकारी के तहत हम बात करेंगे कि एक ऐसी तकनीक जो आज हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, जी हाँ, वो है एआई। देखा जाए तो बहुत ही हद तक हमारे ज़रूरत यानी आवश्यकताएं को पूरी करता है, लेकिन इसके बढ़ते प्रयोग और पूरी तरह से इस पर आश्रित होना भी एक हानिकारक है।
1: बिल्कुल सखियों, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आज हम बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि बैंक की लंबी कतार की जगह मोबाइल पर घर बैठे ही हम आराम से अपने सारे काम को निपटा लेते हैं, चाहे ऑनलाइन हो कोई भुगतान या खरीदारी। यह सुविधा हमें मिलती जरूर है। और इतना ही नहीं, एआई से आज जो भी युवा हैं घर बैठे नौकरी की भी तलाश कर लेते हैं और उन्हें अच्छी खासी नौकरी भी मिल जाती है। और मजेबिन कई ऐसे हमारे बच्चे हैं, युवा हैं, जो कि घर में अगर चाहते हैं कि हम कुछ और भी काम कर रहे हैं और कुछ और पढ़ना चाहते हैं, जैसा शिक्षा है, व्यापार है, मनोरंजन है, स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधा ले लेते हैं। और लेकिन कहते हैं ना कि एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं बहनों, और ये बात हम पे निर्भर करती है कि हम उसका कौन सा पक्ष को चुने, यानी हम अच्छे मतलब पक्ष को चुने या उसके बुरे को। तो हम तो यही चाहेंगे भाई कि सखियाँ हमारी हमेशा अच्छा ही पक्ष को चुने, है ना।
0: लेकिन ये भाई बात है ना शिल्पी, कि अगर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे सावधानियां भी बढ़ती हैं
1: बिल्कुल
0: और अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि पासवर्ड, फोटो, पता या बैंक संबंधी विवरण किसी एआई प्लेटफॉर्म पर साझा बिल्कुल भी ना करें। एआई अपनी रचनात्मकता को कम कर देता है, इसलिए इसकी सहायता तब तभी करें अगर हम जब ज़्यादा ज़रूरी है। आपको समझ जे इस तरह से अगर कहें कि अगर आपको समझ में आ रही है कि हाँ ये सही है और हमें सही जानकारी मिल रही है, तभी इसका इस्तेमाल करें।
1: बिल्कुल
0: कोई भी फोटो, वीडियो या संदेश को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच जरूर करें, क्योंकि एआई का जो कमाल है ना, जिस तरह से हम कह रहे हैं ना कि इसके दो पहलू हैं, सही में इसके दो पहलू हैं। ये अच्छाई अच्छी बात भी बताती है, लेकिन इससे सावधानियां बरतना हमें बहुत ज़्यादा
1: बिल्कुल, और
0: ज़रूरी
1: हमारी जो
0: है।
1: सखियां हैं वो वाकिफ हैं इस चीज़ कि जहाँ लाभ है तो वहाँ हानि भी होता है। बहनों, एआई का प्रयोग हमारी उलझन को जरूर सुलझा सकता है, पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि आप उसे अपनी ताकत मत समझिए, क्योंकि इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। अगर आप अच्छी कविता लिखती हैं, अगर हमारी कोई ऐसी बहनें हैं जो को बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखती हैं, तो आपके मन के विचार जो महसूस आप करती हैं, उस भाव को आप लिखती हैं अपने कागज़ पे, वो आपकी ताकत है। लेकिन जब एआई से आप पूछती हैं या उसकी आप नकल से आप उतारती हैं, तो वो आपके दिल की भावना को महसूस नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी बात है बहनों, इसलिए एआई का प्रयोग सोच समझ और सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ, सजगता के साथ करें।
0: और जिस तरह से शिल्पी आपने कहा कि उसकी जो हम रचनात्मकता के बारे में कह रहे हैं कि हमें अगर किसी तरह की जानकारी चाहिए या किसी तरह का लेखन चाहिए, तो वो सही बात है। आप खुद से जो भी लिखेंगे कि एक ज़िंदगी की सच्चाई होगी, एक ज़िंदगी के जिस तरह से उतार चढ़ाव होते हैं उसका हाव भाव होगा। लेकिन यहाँ पे है कि आपको एक नोट की तरह मिलेगा कि आप उसे सिर्फ उतार देंगी देख करके। लेकिन लिखने की भी अगर अच्छी बात यह भी है कि अगर आप लिखने की कोशिश करें तो ये आपके लिए भी बेहतर होगा।
1: कहीं ना कहीं ये
0: हाँ
1: मददगार तो साबित होता है, लेकिन वो है कि आपकी जो मन की भावना है, जो फीलिंग्स को आप लिखती हैं, वो नहीं समझ पाता
0: हाँ और ये भी ना बात है ना शिल्पी, कि हम जब कलम और कागज उठाते हैं तो हमें मतलब देखा जाए तो हम बहुत कुछ बातों में खो जाते हैं। बहुत पुरानी बातें याद आती हैं, बहुत अच्छी बातें याद आती हैं, बहुत कुछ ऐसी बातें याद आती हैं जो हमारे जहन से कभी दूर जा चुकी थी। तो अगर हम कलम और ये कागज़ उठाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि हमें कुछ कुछ बातें पुरानी याद आएंगी, कुछ कहानियाँ याद आएंगी, कुछ कविताएँ याद आएंगी, कुछ बचपन की बातें याद आएंगी। तो हम यही कहेंगे कि एआई का उपयोग तो सही है, लेकिन आप इसे अपनी आदत में शामिल बिल्कुल भी ना करें। आप एक कोशिश करें कुछ अपने से करने की।
1: बिल्कुल, यानी कि महसिबीन आप कहना चाहती हैं हमारी सखियों से कि बहनें हमारी सृजनशील बने, खुद से लिखें और अपने मन की भावों को अपने कागज़ पर उतारें। और भाई, ये बातों ही बातों में बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी बातों को अब विराम चाहिए और चलते हैं संगीत की दुनिया में एक बार फिर से।
2: ये बर्बादी का रास्ता है शबनम।
3: बेहूदा ना

0: बहनों, अब कार्यक्रम समाप्त करने की दे इजाजत। हम बता दें कि कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव पांडे की,
1: और कार्यक्रम के सफर में मैं शिल्पी
0: और मैं जमीन।
1: दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: गृहलक्ष्मी।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम बहनों का कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की पहली भेंट फिल्म जुर्म से कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में। इंदिवर की रचना है और संगीत राजेश रोशन का है।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत अपनी दोस्त कंचन के साथ। कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म दीवाना सी। गायक कुमार सानू और अलका याग्निक की है, समीर की रचना है और संगीत नदीम श्रवण का है।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म दामिनी से। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में, समीर की रचना है और संगीत नदीम श्रवण का है। फिल्म का नाम है दामिनी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का ये सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है।
1: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सिंध गोबा के चेयरमैन और सीईओ बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए इसकॉन के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर विस्तार एआई के सह संस्थापक और सीईओ आर्थर मेंज के साथ बातचीत करेंगे। इन बैठकों का समापन सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ रोदाल सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठकें भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित करती है। आकाशवाणी समाचार के लिए पेरिस फ्रांस से महेश सोपड़े।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केन्द्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। केन्द्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में 26,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंग रोधी चाकू और अन्य काटने के उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों के उपयोग से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षा और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथीन्द्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर कोई अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकलपीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। फीफा फुटबॉल विश्वकप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi is set to hold a series of high-level meetings with leading French business leaders in Paris today as part of efforts to deepen the India-France economic and industrial cooperation. The Prime Minister will also attend the VivaTech Summit alongside French President Emmanuel Macron. The summit is Europe's largest technology and startup event, where Mr. Modi is expected to highlight India's growing innovation ecosystem and technological advancements. India will have the largest national pavilion at this edition of VivaTech Summit, a fitting symbol of the enormous potential for partnership between the Indian and European innovation ecosystem. Union Home Minister Amit Shah has said the past 12 years of Prime Minister Narendra Modi's government have been a golden era of confluence of development and heritage. In a social media post today, Mr. Shah said in these 12 years, the construction of Sri Ram Janmabhoomi Mandir, Kashi Vishwanath Corridor and Ujjain Mahakal Lok took place, while world-class connectivity, infrastructure projects and initiatives like Make in India have given unprecedented momentum to the country's development journey. Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu today informed that the first cargo flight has landed at Noida International Airport, carrying multiple goods including leather goods and auto parts from Chennai. In a social media post, the minister said that Made in India mobile phones, auto parts and accessories were dispatched from the Chennai airport, strengthening supply chains and creating new opportunities for local industries. The airport began commercial operations 2 days ago. The Calcutta High Court today declined to grant any interim relief on West Bengal Assembly Speaker Ratendra Bose's decision to appoint breakaway Trinamool Congress MLA Ritabrat Banerjee as the leader of opposition in the Assembly. Hearing a petition filed by TMC MLA Shobhandeep Chattopadhyay challenging the rejection of his nomination and Banerjee's appointment, Justice Krishna Rao refused to stay the Speaker's decision. The court directed the respondents to file their affidavits within 3 weeks, while the petitioner has been granted 2 additional weeks to file a reply. The matter will be heard next on the 28th of next month. In Jharkhand, voting for 2 Rajya Sabha seats is underway, with JMM candidate Baidyanath Ram, Congress nominee Pranav Jha and independent candidate Parimal Nathwani in the fray. Polling began at 9 this morning and will continue until 4 in the evening. Counting of votes will commence at 5 p.m, following which the results will be declared. In Mizoram, voting for the lone Rajya Sabha seat is also underway, with candidates from the ruling Zoram People's Movement and the opposition Mizo National Front locked in a direct contest. Delhi Chief Minister Rekha Gupta today inaugurated the 3-day public welfare camps in New Delhi. The camp is inspired by Prime Minister Narendra Modi's 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Talking to the media after the inauguration, Ms. Gupta said the government has organized these camps at 42 locations across the national capital. The Food Safety and Standards Authority of India, FSSAI, has directed all food business operators to use only food-grade and corrosion-resistant knives, blades and other cutting equipment in food handling and processing activities. In an advisory, the food regulator noted that some food businesses have been found using rusted, corroded, chipped, painted, damaged or otherwise unsuitable knives and cutting tools. According to FSSAI, the use of such equipment can lead to physical, chemical and microbiological contamination of food, posing risks to consumer safety. A landmark memorandum of understanding between the United States and Iran has come into effect, bringing an immediate halt to nearly 4 months of direct conflict and opening a 60-day window for negotiations on a comprehensive peace settlement. The 14-point agreement, signed electronically ahead of a planned meeting in Switzerland, establishes an immediate ceasefire, commits both sides to refrain from hostile actions, and sets out a framework for addressing long-standing disputes over Iran's nuclear program and regional security issues. In FIFA World Cup 2026, Colombia began their campaign with a convincing 3-1 victory over Uzbekistan in Group K in Mexico City this morning. And with that, we end this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान जारी। तीनों प्रत्याशियों ने विधायकों के समर्थन से अपनी अपनी जीत का किया दावा। केंद्र सरकार झारखंड बिहार समेत देशभर के कई राज्यों में वित्त वर्ष 2026-27 में 26,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का करेगी निर्माण। राज्य के खान एवं भूतत्व विभाग ने अधिकारियों को वित्त वर्ष 2026-27 में 27,000 करोड़ के राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई का दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची स्थित जगन्नाथपुर मंदिर की सुरक्षा को लेकर रांची एसएसपी को 24 घंटे पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती करने का दिया निर्देश। और राजधानी रांची में 12वीं रैंकिंग नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप शुरू। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। चुनाव में इंडिया गठबंधन की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बैजनाथ राम को प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने प्रणव झा को अपना उम्मीदवार बनाया है। निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी को एनडीए का समर्थन प्राप्त है। झामुमो उम्मीदवार बैजनाथ राम ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में उनकी जीत निश्चित है।
3: ये तो दैवी कृपा है मेरे ऊपर। शुरू से आप देखते हैं, कोई भी शुभ कार्य करने के पहले हम लोग पूजा करते हैं, नॉमिनेशन के पहले भी, मतदान के पहले भी, रिजल्ट के पहले भी। ये बिल्कुल तय है और हम लोग सुनिश्चित और
4: जीत करा, यही कामना है।
2: एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी भी पूजा पाठ करने के बाद विधानसभा पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पूरी उम्मीद है कि इस बार भी उन्हें झारखंड की सेवा करने का मौका मिलेगा।
5: 2008 में भी था, 2014 में भी था और इस बार भी रहेगा। जो मिलना चाहिए उससे ज्यादा आएंगे। सारे एमएलए के ऊपर मेरा आधार है और झारखंड की सेवा करने का मौका मिलेगा तो जरूर करूंगा। सब लोगों का समर्थन है मुझे।
2: इधर भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी और लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक जनार्दन पासवान ने निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी की जीत का 100% दावा किया है। उन्होंने परिमल नाथवानी को 35 वोट मिलने की उम्मीद जताई। इधर लोजपा विधायक जनार्दन पासवान ने भी परिमल नाथवानी की जीत को पक्का बताया।
6: जीत के प्रति एकदम 100% आश्वस्त है। 5 बजे के बाद आकर बता देंगे हम। अभी हड़बड़ी मत रख, नाथवानी जी अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे है। 2-2 बार राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं वहाँ, तो निश्चित तौर पे मैं कहूँगा कि जीत के प्रति हम लोग एकदम 100% आश्वस्त है।
2: केंद्र सरकार झारखंड बिहार समेत देश भर के कई राज्यों में वित्त वर्ष 2026-27 में 26,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ से अधिक रुपए आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के अधिकारियों ने भाग लिया। खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव अरवा राजकमल ने विभागीय अधिकारियों को वित्त वर्ष 2026-27 में 27,000 करोड़ के राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है। उन्होंने राजस्व संवर्धन, खनिज नीलामी और अवैध खनन नियंत्रण के लिए विस्तृत निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने सभी जिला खनन पदाधिकारियों को संशोधित नियमों के अनुसार कार्रवाई करने और जिला स्तरीय टास्क फोर्स की नियमित बैठक करने का निर्देश दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची स्थित जगन्नाथपुर मंदिर की सुरक्षा को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने अपने आदेश में रांची के एसएसपी को मंदिर परिसर के बाहर 24 घंटे पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती का निर्देश दिया है। अदालत ने 23 जून तक इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट सौंपने को कहा। 730 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाला मामले में आरोपी अमित गुप्ता ने औपबंधिक जमानत देने का आग्रह करने वाली अपनी याचिका वापस ले ली है। हाईकोर्ट ने कल सुनवाई के दौरान याचिका इसलिए खारिज कर दी क्योंकि रिम्स की ओर से निचली अदालत को बताया गया था कि रिम्स में इलाज की पूरी व्यवस्था है। बता दें कि अमित गुप्ता ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए रिम्स की जगह कहीं बाहर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए औपबंधिक जमानत याचिका दायर की थी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सल उन्मूलन नक्सल मुक्त भारत अभियान का सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रभावित क्षेत्र के लोग केंद्र सरकार की इस पहल से लाभान्वित हो रहे हैं।
4: पहले और अभी में बहुत ही अंतर आया है क्योंकि इससे पहले हमारे गांव के लोग बहुत ही डरे

0: समय रहते थे और कब क्या हो जाएगा किसी को अंदाजा ही नहीं था। हालांकि कुछ महीना से देखा जा रहा हमारे क्षेत्र में जो गतिविधियां थी नक्सलियों का वो भी थम सा गया है और विकास का गति तेज हुआ है और इससे हम सभी बहुत ही खुश हैं।
1: झारखंड में हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल उद्योग को अतिरिक्त सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। यह जानकारी पूर्वी सिंहभूम जिला उद्योग केंद्र के जीएम रविशंकर प्रसाद ने बिष्टुपुर चैंबर भवन में आयोजित हस्तशिल्प निर्यात विपणन जागरूकता कार्यक्रम में दी। उन्होंने उद्यमियों को इस सब्सिडी का लाभ उठाने का आग्रह किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जामताड़ा में उत्साह का माहौल है। महिलाएं योग अभ्यास केंद्रों से जुड़कर नियमित योग अभ्यास कर रही हैं। जामताड़ा के कोट रोग योगाभ्यास केंद्र की संचालिका प्रीति सिंह ने बताया कि महिलाओं का मानना है कि स्वस्थ जीवन शैली में नियमित योग अभ्यास अत्यंत जरूरी है।
2: पहले योगा के प्रति लोगों में उतनी जागरूकता नहीं थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री योगा के बारे में बताना शुरू, तब से लोग थोड़ा सा जागरूक हुए हैं। महिलाएं घर से निकल के योग के प्रति थोड़ा सा ध्यान दे रही हैं, योगा क्लास में आ रही हैं। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज योगा रेगुलर कीजिए। एक स्वस्थ नारी ही एक स्वस्थ परिवार की गठन कर सकती है। आप सभी रेगुलर योगा कीजिए और स्वस्थ रहिए।
1: टाटा जूलॉजिकल पार्क में 16 वर्षीय अफ्रीकी शेरनी जोया की मौत के बाद उसी के साथ दक्षिण अफ्रीका के प्रीटोरिया से 2011 में लाए गए 17 वर्षीय अफ्रीकी शेर की हालत भी चिंताजनक है। टाटा जू के निदेशक डॉ. नईम अख्तर ने बताया कि शेर की स्थिति पर नजर रखी जा रही है और इलाज जारी है। घरेलू शेयर बाजार आज दोपहर से पहले तक मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 105 अंक गिरकर 77,051 पर और निफ्टी 36 अंक की गिरावट के साथ 24,050 पर था। इधर राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,40,900 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,55,000 रुपए प्रति किलो है। राजधानी रांची में 12वीं रैंकिंग नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप कल से शुरू हो गई। खेल विभाग के सचिव मुकेश कुमार ने नव निर्मित अत्याधुनिक स्केटिंग रिंक का उद्घाटन कर पहली रेस को हरी झंडी दिखाई। उद्घाटन समारोह में ओलंपियन अनीश राज और के शर्मा ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान जारी। तीनों प्रत्याशियों ने विधायकों के समर्थन से अपनी अपनी जीत का दावा किया। केंद्र सरकार झारखंड बिहार समेत देश भर के कई राज्यों में वित्त वर्ष 2026-27 में 26,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का करेगी निर्माण। राज्य के खान एवं भूतत्व विभाग ने अधिकारियों को वित्त वर्ष 2026-27 में 27,000 करोड़ के राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई का दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची स्थित जगन्नाथपुर मंदिर की सुरक्षा को लेकर रांची SSP को 24 घंटे पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती करने का दिया निर्देश। और राजधानी रांची में 12वीं रैंकिंग नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप शुरू। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं और अब प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। हमारी आज की कलाकार है सिप्रा बोस।

0: उप शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हमारी आज की कलाकार थी सिप्रा बोस।
1: कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: हम आकाशवाणी के राज्य केंद्र से बोल रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें हम सुनेंगे कुछ चंद गजलें गुलाम अली की आवाज में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्चस्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकल पीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाटबद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में यह बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ओआरएस, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमरीका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
3: अमरीका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य करने के औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमरीका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2000 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित एफआईएच महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,127 पर कारोबार कर रहा था। अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय और भारत ने हॉकी एफआईएच महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम जय भारती। इस समय इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं आज आपके साथ, आपकी दोस्त कंचन। इस समय सुनने वाले तमाम श्रोताओं का मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय सेना को समर्पित इस गीत के साथ।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
2: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। दो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हां, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जारी।
3: कार्यक्रम में पुनः स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जय भारती। कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनते हैं फिल्म सिंघम से, श्रेया घोषाल और अजय गुगावले की आवाज में। इस गीत को लिखा है स्वानंद किरकिरे ने और संगीत दिया है अजय अतुल ने। फिल्म का नाम है सिंघम।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म लव से। एस पी बाला सुब्रमण्यम और के एस चित्रा की आवाज़ में। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना है और संगीत आनंद मिलिंद का है।

और अब कार्यक्रम के आखिर में सुनिए फिल्म रुदाली से भूपेन हजारिका और लता मंगेशकर की आवाज़ में। गुलजार का लिखा गीत है और संगीत भूपेन हजारिका का है।

0: इसी गाने के साथ जय भारती का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। अपने दोस्त कंचन को दीजिए विदा, नमस्कार। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्य में राज्यसभा की दो सीटों के लिए वोटिंग समाप्त हो चुकी है। सदन के सभी 81 विधायकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। अंतिम वोट झामुमो नेता और मंत्री सुदिव्य कुमार ने डाला, जबकि उनसे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मतदान किया। अब सबकी नजरें नतीजों पर टिकी है। शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और 7 बजे तक अंतिम परिणाम आने की उम्मीद है। इस त्रिकोणीय मुकाबले में झामुमो के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और एनडीए समर्थित परिमल नाथवानी की किस्मत दांव पर है। 81 सदस्यीय विधानसभा में जीत के लिए 28 प्रथम वरीयता मतों की जरूरत है। इस बीच कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता ने दोनों सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास विधायकों का पूरा बहुमत और जादुई आंकड़ा मौजूद है।
1: पूरा हमारा गठबंधन 100% जीतेगा, राजद 100% साथ है। और आज देश में भाजपा के कुशासन और भ्रष्टाचार और लोकतंत्र की हत्या के विरोध में यदि कोई एक पार्टी सशक्त है तो कांग्रेस आई है। झारखंड को व्यापार न समझे, राजनीति सेवा है।
0: दूसरी तरफ भाजपा के वरिष्ठ नेता अमर बावरी ने इस दावे को खारिज करते हुए एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी की जीत की बात कही है।
2: आज जिस तरह से हालात है झारखंड के, तो उसको ठीक करने का एक अवसर और निश्चित रूप से मोदी जी को मजबूत करने का अवसर भी उनके पास है। इस बार झारखंड में राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रत्याशी को समर्थन दिया है वो पुलिस प्रत्याशी जीतेगा।
0: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 3 दिन बाद होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परीक्षार्थियों को तनाव मुक्त रहने का संदेश दिया है। एनटीए ने सुरक्षित और पारदर्शी परीक्षा का आश्वासन देते हुए नकल करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। छात्र मदद के लिए मानस हेल्पलाइन 14416 पर संपर्क कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग में लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जुलाई और अगस्त महीने में आर्टिजन्स मेले का आयोजन किया जाएगा। उपायुक्त हेमंत सत्ती की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। यह मेला 13 से 15 जुलाई और 5 से 7 अगस्त तक झील परिसर के ओपन एम्फीथिएटर में लगेगा। मेले का मुख्य उद्देश्य स्थानीय कारीगरों द्वारा निर्मित जूट उत्पाद, सोहराई कला, काष्ठ कला और हस्तशिल्प सामग्रियों के बाजार को बढ़ावा देना है। देवघर पुलिस को साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। डीएसपी कैलाश प्रसाद महतो के नेतृत्व में पुलिस ने सारवा क्षेत्र से 4 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी फ्लिपकार्ट, गूगल पे और पीएम किसान योजना के नाम पर फर्जी अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करते थे। ये आरोपी मोबाइल हैक करने के लिए एपीके फाइल भेजते थे। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें। सरायकेला खरसावां में पुलिस ने बंद पड़े अभिजीत कंपनी प्लांट से लोहा चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनुभव भारद्वाज ने बताया कि बुरुडी स्थित प्लांट परिसर में छापेमारी कर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मौके से चोरी में इस्तेमाल होने वाले 2 ऑक्सीजन सिलेंडर, गैस कटर, रेगुलेटर और भारी मात्रा में लोहे का सामान बरामद किया है।
3: जानकारी के बाद टीम गठित हुई और वहाँ पर जाके छापामारी करके 6 चोरों को जो है उन्होंने पकड़ा है और उनके पास से चीजें बरामद हुई हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर था, गैस कटर था, लगभग जो है 20 से 22 फीट का लोहा उन लोगों ने चोरी किया था। आईबीएम कीमत जो है उसमें लगभग 40,000 लगभग है।
0: रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित दूसरी साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2026 में भारतीय टीमों का दबदबा कायम है। पहले दिन के लीग मुकाबलों के बाद भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमें शानदार प्रदर्शन करते हुए अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है। महिला टीम ने अपने पहले कड़े मुकाबले में बांग्लादेश को और दूसरे मैच में श्रीलंका को हराकर लगातार 2 जीत दर्ज की। वहीं पुरुष टीम ने भी अपना दबदबा दिखाते हुए बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों को सीधे सेटों में शिकस्त दी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, हर ठोकर इंसान को गिरने से नहीं लगती, कुछ ठोकर सुधरने, संभलने और सीखने से भी लगती हैं।
3: बहुत सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखा है,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। वीर गाथा के अंतर्गत लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापुर जी के व्यक्तित्व पर केंद्रित कार्यक्रम भी सुना। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: नासिक महाराष्ट्र से प्रशांत पाटिल जी का संदेश आया है,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खीरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
3: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का,
2: ग्वालियर सुरेश खुराना, पप्पी अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा।
3: आज जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हमारी चर्चा चल रही है कुछ विशेष झीलों पर। तो अब तक हमने बातचीत की लोकटक और मानसरोवर झील के बारे में, तो आइए जानते हैं आज हम किस खास झील के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। श्रोताओं, वो झील है चिल्का झील। बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। वैसे तकनीकी रूप से ये एक लगून है। तो आइए पहले जान लिया जाए कि लगून किसे कहते हैं। जी श्रोताओं, लगून समुद्र या महासागर के किनारे एक उथले जलाशय को कहते हैं, जो समुद्र की रेत, कोरल चट्टानों या बड़े बड़े रेतीले टीलों के कारण समुद्र से अलग दिखाई पड़ता है। यानी जब कोई प्राकृतिक अवरोध आंशिक रूप से किसी बड़े जलाशय को समुद्र से अलग करता है तो उसे हम लगून कहेंगे। विशेष बात यह है कि लगून सामान्यतः उथला होता है। यह समुद्र से भी जुड़ा होता है लेकिन पूरी तरह से खुला नहीं होता। तो आपको बता दें कि भारत में दो लगून है, चिल्का झील लगून और लक्षद्वीप लगून। एक और विशेष बात श्रोताओं, समुद्र से जुड़ा होने के कारण चिल्का झील का पानी थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि लगून में मीठे जल वाली नदियां भी गिरती हैं, जिसके कारण यहाँ का पानी थोड़ा मीठा और थोड़ा खारा हो सकता है। चिल्का झील इसका सुंदर उदाहरण है। तो आइए अब जान लें कि चिल्का झील है कहाँ। तो आपको बता दें कि ये ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है। यहाँ लगभग 52 नदी नालों का मीठा पानी और बंगाल की खाड़ी का खारा पानी दोनों आते हैं। एक और रोचक बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा श्रोताओं, और वो ये है कि यहाँ डॉल्फिन मछलियां भी मिलती हैं, जिन्हें इरावडी डॉल्फिन कहा जाता है। ये प्रजाति मात्र दुनिया में दो जगहों पर ही पाई जाती है। इन्हें पानी में उछलते कूदते जल क्रीड़ा करते बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, स्वभाव से ये डॉल्फिन शर्मीली होती हैं। एक और तथ्य आपके साथ साझा करना चाहता हूं, और वो ये है कि सर्दियों के मौसम में चिल्का झील में बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। आप पूछेंगे कि ये कहां से आते हैं, तो आपको बता देते हैं, ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया, चीन, मंगोलिया और रूस जैसे देशों से आते हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके इन पक्षियों का चिल्का झील में आना कितना अनूठा है। इसी बात पर एक जानकारी और आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि यहाँ आने वाले पक्षियों की संख्या लाखों में बताई जाती है, जो करीब 225 से भी अधिक प्रजातियों के हैं। चिल्का झील का नलबन द्वीप जाना माना पक्षी विहार या अभयारण्य माना जाता है। बहुत से सैलानी यहाँ मात्र पक्षियों को देखने के लिए ही आते हैं। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे सन 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। जहाँ तक मछलियों की बात है, यहाँ मछलियों की 200 से भी ज्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो मिश्रित मीठे पानी और खारे पानी में रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ लाल केकड़े, मछली पकड़ने वाली बिल्लियाँ भी पाई जाती हैं, जिन्हें फिशिंग कैट कहा जाता है। श्रोताओं, चिल्का झील में बोट राइड या नौकायन का अलग ही मजा है। यहाँ का सबसे यादगार अनुभव है सूर्योदय और सूर्यास्त की बेला में सूर्य और झील का नजारा, पक्षियों का मधुर कलरव और जल में मछलियों को उछलते कूदते हुए देखना। इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में चिल्का झील से समुद्री व्यापार भी होता था, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी को ओडिशा में कलिंग सागर भी कहते थे। श्रोताओं, चिल्का झील से प्राचीन कलिंग के व्यापारी और नाविक सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों से आते थे। श्रोताओं, क्या आपने बोइता बंदाना के बारे में कुछ सुना है? है ना बड़ा दिलचस्प नाम? तो आपको बता दूं कि बोइता बंदाना का अर्थ है नावों की पूजा। बोइता यानी नाव और बंदाना यानी पूजा। इस उत्सव में जहाजों या बड़ी बड़ी नावों की पूजा होती थी। ये एक पारंपरिक त्यौहार है जो ओडिशा की समुद्री संस्कृति की विरासत है। इसे जनजातीय या आदिवासी भाषा में डांगा भाषा भी कहते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सन 2025 में ये 5 नवंबर को मनाया गया था। इस त्योहार में एक लोकप्रिय गीत या मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र है आ का मा बोई। आपको बता दूं कि ये नाविकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना गीत है। तो श्रोताओं, चिल्का झील न सिर्फ जैव विविधता का खजाना है, लेकिन हजारों लोगों की जीविका का साधन और कलिंग की समुद्री विरासत की गवाह भी। ये सचमुच भारत की एक अनूठी झील है। तो ये

0: थी श्रोताओं हमारी आज की जानकारी विश्व विख्यात चिल्का झील के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ, हमारा IVRS नंबर भी नोट कर लें। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की लगातार जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रम की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है चिड़िया की बच्ची।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा एक चिड़िया की बच्ची के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करती है और अपने घोंसले में आनंद से गीत गाते हुए अन्य पक्षियों से बातें भी करती है।
2: माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं।

आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन करा रहा था। माधव दास मसनत के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वो खूब खुश मालूम होती थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी।

0: माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वो उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा,
1: आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो।
0: चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, वो एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली,
2: मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी।
1: हाँ, बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो ना, जाओ नहीं, बैठो। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है।
0: चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वो बोली,
2: मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें।
1: मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो।
2: मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ाई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें।
1: प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए है? माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया।
0: चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वो बोली,
2: मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? दो दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ।
1: बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो?
2: मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती।
1: तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूं सेठ माधव दास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूं।
2: पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए।
1: चिड़िया तू मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ।
2: तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं? क्या मुझे वो तुम्हारा माला माल होना चाहिए?
1: अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती? सोना उसी की जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी।
2: वो सोना क्या चीज होती है?
1: तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूं उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है।

0: ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया? तो इस बात को समझती क्यों नहीं?
1: मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी।
0: ठहर। इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? हाँ, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह।
1: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है, और मुझे यह देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो।
0: हाँ,
1: रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी।
0: अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो।
2: ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे,
0: तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना।
2: ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वो चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे,
0: सच, तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं?
1: दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है।
0: हाँ, जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है।
1: सेठ, मुझे देर हो रही है।
0: देर? अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो।
1: क्या करूं सेठ, मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी।
0: देखते क्या हो, यही मौका है, पकड़ लो इसे।

0: मालिक।
1: इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वो चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी।
0: हाथ से निकल गई।
1: नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी। तब वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा,
2: क्या है बच्ची? उफ, क्या हुआ बेटा? बता बेटा। ना, ना, ना।
1: पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वो पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम चिड़िया की बच्ची। तो श्रोताओं, अब हमारा कार्यक्रम यानी उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार, नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ।

0: ये आकाशवाणी रांची है। आइए सुनते हैं केंद्र की एनडीए सरकार की 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष परिचर्चा। आज की परिचर्चा का विषय है झारखंड में नक्सल उन्मूलन। परिचर्चा में भाग ले रहे हैं श्री साकेत कुमार सी, भारतीय पुलिस सेवा महानिरीक्षक सीआरपीएफ झारखंड सेक्टर, श्री आनंद कुमार जरई, कमांडेड अभियान झारखंड सेक्टर, और श्री दिवाकर कुमार, सहायक निदेशक समाचार दूरदर्शन रांची। परिचर्चा का संचालन कर रही है पूनम किरकिट्टा।
1: आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से आयोजित परिचर्चा में मैं पूनम किरकिट्टा आप सभी का स्वागत करती हूं। केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज की विशेष परिचर्चा आयोजित की जा रही है। परिचर्चा का विषय है झारखंड में नक्सल उन्मूलन, और इसमें भाग लेने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री साकेत कुमार सिंह, भारतीय पुलिस सेवा महानिरीक्षक सीआरपीएफ झारखंड सेक्टर, श्री आनंद कुमार जरई, कमांडेंट अभियान झारखंड सेक्टर सीआरपीएफ, और श्री दिवाकर कुमार, सहायक निदेशक समाचार दूरदर्शन रांची। श्री साकेत कुमार जी, श्री आनंद कुमार जी और श्री दिवाकर कुमार जी, आप तीनों हमारे स्टूडियो में पधारे हैं, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, जैसा कि आज की हमारी परिचर्चा है नक्सल उन्मूलन अभियान पर, पहला सवाल मैं आपसे करूंगी साकेत कुमार जी कि ये जो नक्सल या माओवाद की जो विचारधारा शुरू हुई थी कि पूंजीवादी सरकार या लोकतांत्रिक सरकार के हाथ से पावर लेकर के किसानों मजदूरों को देने की, तो ये तो विचारधारा से हट गए, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी।
2: देखिए, इस विचारधारा में मैं एक चीज और जोड़ूंगा कि ये विचारधारा के साथ साथ उनका ये भी था कि हम लोग बंदूक के दम पर ये करेंगे, वायलेंस के दम पर करेंगे, और धीरे धीरे करके उनकी विचारधारा को ही पब्लिक रिजेक्ट कर दी और वो खुद भी विचारधारा से भटक गए। जिनके लिए लड़ाई करने की बात कर रहे थे, मजदूर के लिए, ग्रामीणों के लिए, गांव के क्षेत्र के लिए, तो अल्टीमेटली जो भी इनका वायलेंस था सब उनके खिलाफ ही चला गया। जो ये नक्सल खत्म हुआ उसमें ग्रामीणों का ही बहुत सहयोग रहा, क्योंकि उन विचारधारा से भटक गए, और जो उनकी विचारधारा थे सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ तो उन्हीं लोगों का हुआ जिसके लिए वो लड़ने के लिए बता रहे थे कि मैं उनके लिए लड़ रहा हूँ, तो उनकी विचारधारा से कभी भटक गए, वही ऑपरेस्ट रहे।
1: जी जी, आनंद कुमार जी, आप सीआरपीएफ की तरफ से आपने कई अभियानों में हिस्सा लिया है, इन अभियानों की क्या खासियत रही है?
3: सुरक्षा बलों द्वारा जब भी अभियान लॉन्च किए जाते हैं तो हमारे जो बाहर के सुरक्षा बल से बाहर के परिदृश्य में सिर्फ जो ऑपरेशन से रिलेटेड रिजल्ट और एक्शन ही नज़र आता है, लेकिन इसके साथ भी एक तथ्य है कि सुरक्षा बल के जो जवान हैं, जो दिन प्रतिदिन उस जंगल में, जब गांव वाले और नक्सलियों के लिए अगर कोई तीसरा है तो वो सुरक्षा बल है, उस परिवेश में कैसे सुरक्षा बल अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे हर काम होते हैं जो हम बाहर में नहीं उसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, और दिन प्रतिदिन में गाँव वालों के साथ सुरक्षा बलों का जो इंटरेक्शन होता है, और वहाँ जो वो एक मददगार साबित होते हैं, जो एक सरकार या मदद के रूप में जो एक हेल्पिंग हैंड है, वो सुरक्षा बलों का जो योगदान है वो शायद हम लोग बाहर में पूरी तरह उसको परिचित नहीं कर पाए बाहर के लोगों से। ये इस चीज को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ क्योंकि सुरक्षा बलों ने इसके लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है इसमें।
1: जी जी, और सुरक्षा बलों के योगदान को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता, और मैं बता नहीं सकती कि हमारे दिल में सुरक्षा बलों के लिए, एक एक जवान के लिए कितना सम्मान है, और हम कितना प्राइड फील करते हैं उनके ऊपर में, और हम बहुत ही आभारी हैं उनके लिए। दिवाकर जी, आपने जब भी रिपोर्टिंग करना हुआ आप दूर दराज के इलाकों में गए, जंगलों में गए, बिहड़ों में गए, तो जब आपको नक्सल के ऊपर में रिपोर्टिंग करनी थी, ऐसे कुछ वाक्य आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे तो हमें खुशी होगी।
4: देखिए, निश्चित तौर पर, लेकिन झारखंड में 60 और 70 के दशक में एक तरीके से उसका उफान हुआ, और जब झारखंड अलग राज्य 2000 के आसपास बना तो वो एक तरीके से नक्सलवाद की जो चरम सीमा थी वो झारखंड में पहुंच गई, और उसका मुख्य कारण कहा गया कि आदिवासियों को जो न्याय मिलना चाहिए था वो न्याय नहीं मिल पा रहा था, और शायद इसी वजह से जो कनेक्शन था ग्रामीण इलाकों में वो नक्सलियों के साथ उनका अटैचमेंट लगातार बढ़ता चला गया। लेकिन जैसा कि साकेत जी बात कर रहे थे, आनंद जी जो बात कर रहे थे कि विचारधारा से जो उनका भटकाव हुआ वो निश्चित तौर पर एक जड़ को कमजोर करने वाली कड़ी हुई, और निश्चित तौर पर जो हम कह सकते हैं सीआरपीएफ के जवान हो, राज्य सुरक्षा बल के जवानों, तमाम जो ऑपरेशन चलाए गए, और उसके बाद जो केंद्र और राज्य सरकार की नीतियां थी, जिसकी बात हम करते हैं पुनर्वास नीति की बात करते हैं, उन नीतियों का एक सकारात्मक इफेक्ट रहा जिसकी वजह से ये नक्सलवाद का खात्मा हो पाया और जिसकी बात की जा रही है कि 2026 में पूरे देश से नक्सलिज्म खत्म हो गया। बूढ़ा पहाड़ जैसे इलाके पर मैं गया हूँ, सारंडा के जंगलों में मैं गया हूँ, उन जगहों पर जब 2010 की बात अगर मैं करूँ, 2014 की बात करूँ और 2026 की बात करूँ, तो लगातार एक तरीके से कह सकते हैं ड्रास्टिक चेंजेज वहां पर आए। वहां पर जो 2014 में आदिवासियों की स्थिति थी, वहां के आम लोगों की जो स्थिति थी, वहां पे पहुंच नहीं थी, सड़कों का जाल नहीं था, वो नेटवर्क आज के डेट में खत्म हुआ। तो कहा भी जाता है कि अगर किसी भी चीज को जड़ से खत्म करना हो तो सबसे पहले आपको सूचना तंत्र को मजबूत करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा और लोगों के मन में विश्वास बहाली करनी होगी। और वो काम शायद सीआरपीएफ हो चाहे दूसरे जो भी जवान हो, उन लोगों ने लगातार अपने जो सामुदायिक पुलिसिंग का इंटा एजेंडा था उसके जरिए उन्होंने वो काम किया और वो लगातार दिखता भी था कि जिस घर में पीने के लिए पानी नहीं है, जिनके बच्चे स्कूल नहीं जाते हो, उनको इन लोगों ने एक तरीके से विश्वास बहाली का काम किया, उनके बच्चों का उन्होंने स्कूल बैग पहुंचाए, किट पहुंचाए। आज आप देखें सामुदायिक पुलिसिंग का ही असर है कि उन इलाकों में जहां कभी हॉकी के किट नहीं होते थे, फुटबॉल के किट नहीं होते थे, उन जगहों पर इन लोगों ने वो किट पहुंचाए। विश्वास बहाली के जरिए मुझे लगता है कि पहली जंग वहीं से जीती गई और उसके सकारात्मक असर, क्योंकि मैं जब बूढ़ा पहाड़ पर गया तो कई ऐसे लोग मुझे देखने को वहां मिले। बूढ़ा पहाड़ पे कहा जाता है कि पुलिस वाले, सेना के जवान और राजनीतिक लोग तो पहुंचते ही नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से नेटवर्क डेवलप किया गया, लोगों में बहाली की गई, वहां पर कहा जाता है कि आईईडी का सब जगह नेटवर्क बिछा दिया गया था, तो कोई वो भी एक डर था, खौफ था। मैं कई जगहों पर गया जहां लोगों के शरीर में कपड़े नहीं थे, ये मैं 2020 की आसपास की बात बता रहा हूं, लेकिन जब मैं पिछले 24 में वहां पर गया तो वहीं पे वो खुशहाली दिख रही थी कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, सड़कों का जाल जब बनने लगा, तो निश्चित तौर पर वो जो बदलाव है वो सकारात्मक बदलाव इस वजह से दिखा कि सरकार और सेना के जवानों ने वहां पर विश्वास बहाली की, विकास की किरण वहां पर पहुंचाई और वो जो सकारात्मक असर है वो निश्चित तौर पर अगले 5-10 वर्षों में देखने को मिलेगा।
5: जी जी, और वो रूट कॉज भी वही था कि उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, उनको शिक्षा नहीं मिल रही है, उनको स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रही है, और उनको जो आक्रोश था कि बाकी सारे लोग योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं लेकिन उन ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं, तो अब जब ये योजनाएं पहुंच रही हैं तो उनका विश्वास वाकई बहाल होगा। और जब हमारे पास सीआरपीएफ हैं, जब हमारे पास कोबरा बटालियन है या हमारे पास पुलिस व्यवस्था है इन सबको टैकल करने के लिए, तो निश्चित तौर पर ये खत्म हो रहा है और होगा। साकेत कुमार जी, नक्सलिज्म में जो इसको खात्मे के लिए जो एक बड़ी रकम लगती है, अगर वो रकम नक्सलिज्म को कर्ब करने के लिए ना लग करके कोई विकास कार्य में लगता तो देश बहुत आगे तरक्की करता। इस वॉरफेयर में नक्सलियों के पास बड़े सोफिस्टिकेटेड हथियार आते हैं, तो उनका जो हथियार का जो सप्लाई है उस चेन को खत्म करना कितना आवश्यक था आप लोगों के लिए और आप लोगों ने उसको कैसे हासिल किया, इस पर जानना चाहूंगी।
2: मैं पहले छोटा सा कमेंट जो दिवाकर जी बता रहे थे उस पर बोलना चाहूंगा, कमेंट या उसको ही ऐड करना चाहूंगा कि जैसे सुरक्षा बल का जो मुख्य काम होता है वो होता है एक वैसा माहौल तैयार करना जिससे कि वहां पर विकास के कार्य हो सके, जो लोग विकास करते हैं वो वहां पर जा पाए। तो हमारा रोल कम्युनिटी पुलिसिंग हम लोग इसलिए करते हैं कि जिससे कि ग्रामीणों का हमारे ऊपर भरोसा बने और हम लोग का भी ग्रामीणों के ऊपर धीरे धीरे करके दोनों में कहीं गैप जो होता है, भरोसे का जो गैप होता है वो खत्म हो और बाद में अल्टीमेटली बाकी सारे, चूंकि हमारा फंड उस हिसाब से कम्युनिटी एक्शन प्रोग्राम का नहीं होता है, सिविक एक्शन प्रोग्राम का कह लीजिए, कम्युनिटी पुलिसिंग कह लीजिए, तो अल्टीमेटली बाकी सारी चीजें जो बाकी डेवलपमेंट एजेंसीज हैं वो करती है, हम लोग उनको माहौल तैयार करके दे देते हैं। फिर अब मैं आपके सवाल पर आऊंगा जो जैसे उनके हथियार का सप्लाई का जो बताया गया, तो हथियार का सप्लाई माविस्ट में, बाकी सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या बाकी जो भी प्रॉब्लम जहां जहां रहे उनके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन माविस्ट का जो भी हथियार का जो मुख्य स्रोत रहा है वो सबसे पहले जो ग्रामीणों के पास लाइसेंसी हथियार होता था उन पर हमला करके उनसे हथियार छीना गया, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पर फिर पुलिस बल से जो लोकल पुलिस ऑपरेशन करना शुरू किए, तो लोकल पुलिस पर थानों पर अटैक करना या पुलिस कहीं पेट्रोलिंग पार्टी जा रही है उस पर अटैक करना, उनका हथियार छीनना। थर्ड लेवल में जब आए तो था कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज थी, चाहे सीआरपीएफ हो चाहे एसएसबी हो, सीआरपीएफ मेनली झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग बात करते हैं तो उनके ऊपर भी हमला करके उनका हथियार छीनना। तो मेनली जो उनका हथियार का स्रोत कहीं कोई बाहर से फंडिंग नहीं थी, वो हथियार बेसिकली हम लोग से ही छीन करके हम लोग के खिलाफ ही, माओइज्म का ही प्रिंसिपल है कि जो दुश्मन का हथियार है वही हमारा हथियार है, तो ये इनका एक प्रिंसिपल है। तो उसी हथियार को, कहीं हथियार बहुत ज्यादा खरीदने की बात नहीं आई। एक और इनका जो हथियार का स्रोत था, जो बाकी कुछ क्रिमिनल ग्रुप्स भी यहाँ पर एक्टिव रहे, तो उनको भी, उनसे भी लूटना, उनके पास भी कई सारे जो अच्छे हथियार थे उनको भी टारगेट करके लूटे हैं, और वैसे भी क्रिमिनल को खत्म करके उस एरिया में अपना वर्चस्व बनाने के लिए। तो जैसे जैसे माओइज्म खत्म होता गया और जैसे जैसे हम लोग भी उस हिसाब से प्रिपेयर होते गए, लड़ाई के लिए तैयार होते गए, बेटर ट्रेड होते गए, सभी तरफ से हम लोग को सपोर्ट मिलता गया, सरकार की तरफ से सपोर्ट, पब्लिक का सपोर्ट, तो वैसे वैसे नक्सलिज्म भी खत्म हो गया और साथ साथ उनका फिर हथियार भी। हम लोग करीब करीब, हम लोग अभी एक और काम कर रहे हैं, पिछले जितने करीब करीब 15 साल से जो भी हथियार लूटे गए हैं उसका हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, और वो फिर हथियार हम लोग रिकवर जो जो किए हैं उसका भी हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिससे कि आदमी भी खत्म हो गया और साथ में हथियार भी खत्म हो जाए, विचारधारा के साथ साथ उनके पास किसी तरह का वायलेंस करने का सामान हम लोग नहीं छोड़े। तो हम लोग इसका भी पूरा अच्छे से अकाउंटिंग करें, एक एक हथियार का हम लोग अकाउंटिंग करें जो हमारा गया था। इनका बाहरी कहीं से कोई स्रोत नहीं है, स्रोत जो था बेसिकली पुलिस कहिए, पैरामिलिट्री फोर्स, आर्म पुलिस फोर्स कहिए, उसका ही हथियार लूटा हुआ था। विकास को तो पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है उस क्षेत्र में, जब तक नक्सल थे तो उस क्षेत्र में विकास नहीं पहुंच पा रहा था। अब समय वो आ गया है जहां पर से कि विकास बहुत तेजी से, जैसा दिवाकर जी आप बता रहे थे, बूढ़ा पहाड़ करीब करीब 3-4 साल पहले फ्री हो गया था, सरंडा जैसे भी आप बात कर रहे थे, तो सरंडा में अब आपको और डेवलपमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। आईडीज की बात किए तो आईडीज का खतरा मैं ये जरूर कहना चाहूंगा आपके भी माध्यम से कि ये नहीं कह सकते कि जो आईडीज लगे हुए हैं वो अभी भी लगे हुए ही हैं, तो आईडीज का खतरा अभी भी बना हुआ है। बूढ़ा पहाड़ के आईडीज 4-5 साल पुराने हो गए तो इफेक्टिव नहीं रह गया, टेक्निकल रीजन सिंपल ये, आप लोग सब लोग भी जुड़े हुए, तो हर आईडीज के विस्फोट के लिए कहीं ना कहीं उसको कोई पावर सोर्स चाहिए, तो पावर सोर्स भी समय के साथ खत्म हो जाता है, जैसे बैटरी है तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा 3-4 साल में। तो सरंडा वाला जो क्षेत्र है उसमें अभी चूंकि नए आईडीज लगे हुए हैं तो वो अभी भी आईडीज इफेक्टिव है, तो गांव वाले को हम लोग अभी भी कोशिश करते हैं कि अभी जंगल में ऐसे नहीं भटके। तो अब एक्चुअली किसी को नहीं पता है कि आईडीज कहां लगा हुआ है, चूंकि सब लोग मारे गए हैं, तो हमारे लिए भी एक मेजर चैलेंज है।
5: क्या ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि यहां पर आईडी लगा होगा? अगर
2: बहुत ही, अगर आप आईडीज रिकवरी की बात कीजिएगा तो इंडिया में अगर बाकी देशों से बात करेंगे, तुलना करते तो हम लोग मच बेटर है आईडीज रिकवरी में, लेकिन फिर भी आईडीज रिकवरी करीब करीब अगर मान लीजिए 10 में से 9 के आसपास हम लोग रिकवर करते हैं, 8 रिकवर करते हैं, तो एक या दो आईडी बच जाता है, तो एक लाइफ हर आईडी के साथ कम से कम एक लाइफ या लिम का नुकसान हम लोग मान करके चलते हैं, तो आईडी रिकवरी भी काफी होते हैं। सरंडा में आज के दिन में एक भी नक्सली नहीं है, अब कोई नक्सली बचा नहीं रह गया है। पूरे झारखंड में जहां भी नक्सली हैं, एक दो करके कुछ कुछ जगह बचे, उनको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। वो लोग ऐसा नहीं हम लोग कर सकते कि बहुत ग्रुप बना करके कुछ वायलेंस करना चाह रहे हैं, लेकिन वो एक एक आदमी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं अभी।
5: जी जी, आनंद कुमार जी, ये नक्सलियों के खात्मे के बाद में जब कोई एक नक्सली ग्रुप खत्म होता है तो उस ग्रुप के नाम को भुनाने के लिए

0: के साथ उसको हमने टैकल किया है उसी अलग अलग क्षेत्रों में जैसे झारखंड के अलग अलग राज्यों में, तो उसमें अच्छे रिजल्ट्स आए हैं जो, और बहुत हद तक हमने जो इन स्प्लिटर ग्रुप्स को जो है पुलिस के सहयोग से उसको खत्म किया।
1: जी साकेत कुमार जी, नक्सलियों के बीच में महिलाओं की संख्या काफी देखी गई, बहुत सारी महिलाओं को लगता था कि हम अत्याचार सह रहे हैं तो अगर नक्सल में जाएंगे तो शायद हमें
2: जीवन यहाँ पर बढ़िया हो जाएगा,
1: बढ़िया हो जाएगा। कोई ऐसी घटना जहां आपको ये याद आता हो कि महिलाएं अपना दुख बताती हों जब वो आत्मसमर्पण कर चुकी हों या फिर आपने उनको पकड़ा हो तब?
3: बहुत पुरानी बात नहीं बताना चाहूंगा, अभी ऑपरेशन नवजीवन के तहत पिछले महीने ही 25 नक्सली सरेंडर किए थे, उसमें महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। एक तो जो महिलाओं को साथ ले जाने के कारण कई सारी ऐसी भी घटनाएं हुई जिसमें उनके शारीरिक शोषण की बात आई, मैं बहुत ज्यादा उस पर नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन एक नक्सली से अपने ऑफिस में बुला करके बात कर रहा था तो उसके द्वारा बताया गया कि उसको मुश्किल से उस समय जब पहली बार गई तो 11-12 साल की थी और उसको ये बता करके लेकर जाया गया कि वहां हम लोग का स्कूल चलता है और स्कूल में आपको पढ़ाया जाएगा और उसका उम्र भी मुश्किल से 17-18 साल ही था, तो स्कूल तो भूल जाइए, एक बार कहीं कोई किताब भी नहीं छूने को दिया गया, बिल्कुल धोखे से लेकर के ले जाया गया। और एक बार चली गई तो उस लड़की को भागने का काफी बार मन किया, जो अभी 25 लोग सरेंडर किए उसमें से कम 15 यंग लड़के लड़कियां जो कि भागने की कोशिश में लगातार लगे हुए थे, लेकिन उनको इस तरह से डरा करके रखा गया था और सबसे ज्यादा डराया उनको गया था आईडी से और उनको बताया भी नहीं गया था कि जंगल में कहां कहां से आईडी लगा हुआ है और अगर आप भागेंगे तो खुद ही मारे जाएंगे। तो एक तरह से उनको डरा करके बहला फुसला करके और जबरदस्ती पुलिस का भी डर दिखाया कि अगर आप पुलिस के पास जाएगा तो पुलिस मार देगी, तो सभी तरफ से इस तरह से एक तरह से ऐसा जाल बुना गया, ऐसा जाल बिछाया गया जिससे कि एक यंग बच्चे को समझ में नहीं आया कि मुझे अब इस जगह पे क्या करना चाहिए और मैं इस जगह से कैसी अपनी एक नई जिंदगी शुरुआत करूं। तो इसलिए हम लोगों ने इनफैक्ट जो ये ऑपरेशन का नाम भी दिया था, ये ऑपरेशन नवजीवन दिया कि नई जिंदगी की शुरुआत 25 लोग आकर के किए हैं और वो लोग सब लोग फिर आकर के मुख्य धारा में भी जुड़ गए हैं और सब लोग वेल सेटल्ड हो जाएंगे कुछ दिनों में, आने वाले समय में।
1: जी जी दिवाकर कुमार जी, इस नक्सली मूवमेंट को फंड करने के लिए उन लोगों ने एक उपाय किया था, अफीम की खेती। इन्होंने झारखंड में बहुत खेती
2: बड़ा लंबा चौड़ा नेटवर्क अभी भी है,
1: आप तो क्षेत्रों में घूमे हैं, इसके बारे आपसे जानना चाहूंगी।
2: देखिए नक्सलियों के पास कई ऐसे हथियार थे जो उनके आर्थिक तंत्र को मजबूत करते थे, उसमें से जैसा कि आपने बोला एक तस्करी उनका एक मेन काम रह गया, दूसरा जैसा कि साकेत जी बता रहे थे लोगों को छद्म मतलब झूठा सहारा इनका एक एजेंडा हो गया। जैसा हमने बोले कि नक्सली जो थे वो अपनी मुख्य धारा से भटके गए, उनके जो प्रिंसिपल्स थे उनके जो आइडियोलॉजी थे उससे वो भटक गए, उसमें उन्होंने झूठ का सहारा लिया, गलत चीजों का लगातार सहारा लिया गया, वही चीज लगातार इन्होंने अपने नेटवर्क को बढ़ाने में भी उसी का इस्तेमाल किया, लोगों को दिखाया कि भाई कैसे ग्रामीणों के बीच उन्होंने अफीम की खेती की शुरुआत की, लोगों को प्रलोभन दिया कि आप खेती करो आपके मार्केटिंग हम कर देंगे, तो इस तरह की चीजें उन्होंने वहां पे नेटवर्क तैयार किया। क्योंकि झारखंड एक तरीके से जो डेमोग्राफी के हिसाब से भी आप झारखंड को देखें तो वो एक विषम परिस्थिति वाला स्टेट है, वहां पे अभी भी कई ऐसे कोने हैं जो पुलिस प्रशासन के लिए पहुंचना वहां पे थोड़ी सी दुश्वारियां वाली काम होती है, पुलिस प्रशासन को बहुत लंबे लंबे कैंपेन करने पड़ते हैं, तो आर्थिक तंत्र को मजबूती का एक सबसे बड़ा काम सहारा यहां से मिला। दूसरा कुछ ऐसे इलाके हैं जैसे आप झारखंड का एक समय 24 में से 18 जिले घोर नक्सल की कैटेगरी में आने लगे थे, तो उसमें राजधानी जो आप रांची है वो भी नक्सल इफेक्टेड एरिया हुआ करता, आप सोच सकते हैं तो कितना बड़ा उनका नेटवर्क रहा होगा। उस नेटवर्क के जरिए जैसे लातेहार के जंगल है या आप सारंडा चले जाए, गढ़वा चले जाए, चायवासा चले जाए, इन तमाम जगहों पर जिस तरीके से इन्होंने नेटवर्क तैयार किया उसमें लेवी इनका एक बड़ा हथियार हो गया, कोई भी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं तो वहां पर लेवी वसूली इनका एक आम काम था, तो ये इनके आर्थिक तंत्र का एक बड़ा एजेंडा था, उसके जरिए ये अपने जो इनके अफीम के खेती थे या जो दो भी दूसरे तरह के गलत काम वो लोगों से जो लेवी वसूली का काम करते थे, कोई भी डेवलपमेंट का काम होता था तो उनमें इनके फिक्स होते थे, क्योंकि अब नक्सली जो विचारधारा है वो देश में पस्त हुई है और उसमें जो कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है, जैसे कि सरकार ने डेवलपमेंट की ऐसी नीतियां लेकर आए जिसके जरिए कहा जाता था कि जो पूर्वी भारत का इलाके की अगर हम बात करें जिसमें बंगाल आता है, झारखंड आता है, इन तमाम जगहों पर जहां विकास की किरण उस तरीके से नहीं पहुंची थी उन जगहों पर विकास की किरण,
1: नक्सलियों ने भी वैसे ही जगहों में अपना गढ़ बनाया था जहां,
2: क्योंकि वहां पे असंतोष की भावना थी लोगों में, लोगों में लगा कि उसको कैच करना बहुत आसान है और जहां पे सरकार की नहीं पहुंचती वहां पे उन्होंने अपनी पहुंच बना ली, तो जो कहते थे कि लाल गलियारा जो हो गया था वो उसी वजह से हावी हुआ था क्योंकि वहां पे विकास की किरण नहीं पहुंची, लेकिन वो बदलाव देश में, अगर हम जैसे पिछले 12 वर्षों की ही बात करें तो 12 वर्षों में एक तरीके से फोर्स की तरह इस पर काम किया गया कि कैसे नक्सलिज्म को खत्म किया जाए। और देश के वैसे इलाके, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हों, पूर्वी भारत के इलाके हों, जहां पर विकास जिस रफ्तार से होनी चाहिए थे

0: वहां पर नहीं हुई है, तो वहां पर विकास को एक मेन स्ट्रीम में लाया गया, तो उसका एक इम्पैक्ट हुआ कि लोगों में विश्वास जगा। दूसरा एक और लगातार ऑपरेशंस चलाए गए। तीसरी बात, लोगों में जो विश्वास बहाली हुई उसके साथ साथ ये भी किया गया कि जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां पर कैसे लोगों को मोबिलाइज किया जाए कि भाई आपके लिए सरकार काम करती है, आपके लिए सीआरपीएफ के जवान काम करते हैं, आपके लिए जैप के जवान काम करते हैं, तो आप उनको अपना सहयोगी और साथी माने और उसके साथ आप जुड़कर काम करें, तो लोगों में जो विश्वास जगा तो वो मेन स्ट्रीम में आने लगे। अब जैसे आत्मसमर्पण नीति की बात साकेत जी करते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रलोभन दिए गए लोगों को और उसका फायदा लोगों को मिल रहा है। जो बड़े बड़े नक्सली थे, जैसे अब कोई कहा जाता है कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली है, 50 लाख का इनामी नक्सली, तो उस कैटेगरी के हिसाब से आत्मसमर्पण नीति में उनको फायदे दिए गए।
1: जैसे
0: उनके परिवार के लोगों को, बच्चे को पढ़ने की मुफ्त शिक्षा की बात हो, उनके लिए घर बना के सरकार देगी, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उनके लिए तत्काल अगर कोई, जैसे कि इनको लगता है कि भाई नक्सलिज्म से ही मेरा पेट चल रहा है, तो भाई आपको नक्सलिज्म आप छोड़िए, आप मेन स्ट्रीम में आइए, आपको तत्काल मदद देते हैं, उसके बाद उनके परिवार का भार। तो ये तमाम ऐसे कदम उठाए गए जिसके जरिए हम कह सकते हैं कि देश में एक माहौल बना और नक्सली मुख्य धारा में लौट रहे हैं, और आज के डेट में हम कह सकते हैं कि छिटपुट लोगों को छोड़ दिया जाए तो देश एक तरीके से नक्सल मुक्त है।
1: जी जी साकेत जी, हमने कई बार अखबारों में भी पढ़ा कि कुछ नक्सली गांवों को छोड़कर शहरों में कस्बों में आकर बसे रहे और फिर उनको पकड़ा गया, तो ये बड़ा मुश्किल काम है शहरों में उनको ढूंढना पकड़ना है, वो कितना खतरनाक। और
2: जैसे मान लीजिए ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन में जो हथियार लेकर घूम रहा था अब उसके पास मजबूरी हो गई कि हथियार लेकर साथ नहीं चल सकते हैं, तो हथियार छोड़ करके, हथियार को कहीं गड्ढे में डाल करके, कहीं छिपा करके, और उसी विचारधारा को जिंदा रखने के लिए ही भाग करके वहाँ से आ गए शहर में, एक तरह से एक मौका देख करके कुछ दिनों तक मुझे बच करके शहर में रहना है। ये तो ये डिफरेंट हो गया, जो हथियार छोड़ करके डर से, ऑपरेशन के डर से या किसी कारण से अब नक्सलिज्म की लड़ाई को लंबा खींचने के लिए शहर में आके बस गया, तो वो हम लोग फॉलो करते करते धीरे धीरे एक एक आदमी करके उसको पकड़ करके जो भी कानून के तहत जो भी कार्रवाई उसको हम लोग करते गए।
1: जी आनंद कुमार जी, ये जो सरकार की सरेंडर पॉलिसी है उसने एक बड़ी भूमिका निभाई है नक्सलवाद को खत्म करने की, इस पॉलिसी के बारे में कि वो पॉलिसी क्या है और लोग कैसे इसका लाभ उठा रहे हैं, इस पर मैं आपसे जानना चाहूंगी।
3: सबसे पहले तो इसको हम लोगों ने, इस पॉलिसी के बारे में अगर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है, इसको हम सरेंडर पॉलिसी नहीं कह करके मुख्य धारा से जोड़ने की, आत्मसमर्पण नहीं कह के मुख्य धारा से जोड़ने की पॉलिसी के रूप में इसको हम लोगों ने प्रोजेक्ट करने की
1: कोशिश
3: की। आत्मसमर्पण कहीं ना कहीं एक स्वाभिमान से जुड़ा, लोग ये करते हैं कि मैं कैसे आत्मसमर्पण कर दूं, कहीं ना कहीं रहता है, तो उस प्रतिक्रिया से बचने के लिए और सो देट वो उसको डोमिनेट ना करे, तो हमने आत्मसमर्पण के बजाय मुख्य धारा से जुड़ने की उसको के बारे में बताया। और इसमें जितने भी इनामी नक्सली हैं, चाहे गैर इनामी नक्सली हैं, बहुत सारे ऐसे नक्सली हैं जो हमारे स्तर पे तो पहचान में आ चुके हैं लेकिन किसी के इसमें नाम नहीं है, तो ऐसे इस तरह के लोग भी जो नक्सली हैं उनको भी प्रमोट करने के लिए इस पर हम लोगों ने काम किया है।
1: जी।
3: और इसमें नक्सलियों को प्रमोट करने के लिए उन स्थानीय स्तर पर परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा और बलों के द्वारा जो भी सूचना तंत्र हमारा है उसके द्वारा सूचना पहुंचाकर नक्सलियों को प्रोत्साहित किया गया कि आप मुख्य धारा से जुड़ने की ये निर्णय लें। और इसमें सरकार के द्वारा जो सबसे बड़ी प्रोत्साहन ये है कि जो इनामी नक्सली है उसके ऊपर जितना इनाम है वो इनाम की राशि उसको दे दी जाती है,
1: खुद ही
3: दे दीजिए, तो अगर वो मुख्य धारा से जुड़ता है तो वो इनाम राशि उसके साथ ही साथ उसके लिए स्किल डेवलपमेंट, उसके लिए जमीन की देने की राशि और केसेस हैं उसके, तो जो झारखंड में अभी ओपन जेल के साथ में वहाँ परिवार के साथ एक आम नागरिक की तरह वो रह सकता है, मोबाइल अपने जो सामान्य जिंदगी है विद इन ओपन जेल के पेरिफेरी में वो रह सकता है, तो इस तरह की सुविधाएं दी गई हैं सरकार के द्वारा और जिसको हम लोगों ने नक्सलियों तक पहुंचाने की कोशिश की है सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग मुख्य धारा से जुड़ सके।
1: जी साकेत जी, ऐसी कोई घटना या कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस नीति का फायदा उठाया हो और अब समाज में बहुत अच्छा योगदान दे रहा हो?
2: वैसे एकाएक नाम पूछने से थोड़ा मुश्किल है लेकिन एक तो नहीं, वैसे सैकड़ों लोग हैं जो कि मुख्य धारा से एक बार आत्मसमर्पण किए, आत्मसमर्पण करने के बाद या जैसा पहले एक है कि हथियार छोड़ने की बात, पहले हथियार छोड़े फिर धीरे धीरे करके मुख्य धारा में जुड़ते गए और अभी आराम से घर में खेती कर रहे हैं। कुछ वैसे लोगों को मैं जानता हूँ जिनके बच्चे अच्छा, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़े, कुछ लोगों का मैंने भी कोशिश करके किसी टाउन का जो बेस्ट स्कूल है उसमें एडमिशन करवाने का कोशिश करके एडमिशन करवाया, तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि जुड़े हुए हैं, लेकिन नाम लेना उचित नहीं होगा। कई लोग ये भी ऐसा भी किए कि यहाँ पर लोग उनको जानते हैं।

0: अपने गांव से हट करके किसी दूसरे शहर में बस करके लोग
1: नई पहचान के साथ
0: जिनसे आप नई पहचान के साथ भी कुछ लोग शुरू कर दे, क्योंकि क्या होता है कि आप एक बार वायलेंस में जुड़े हुए हैं तो नेचुरली आपके जहां पर आप जिस जगह पे आप वायलेंस किए वहां पर आपके दुश्मन भी बन जाते हैं। तो अपनी उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना हम लोग कोशिश करते हैं कि उनके ऐसा ना हो कि एक बार अगर जुड़ गए हैं मुख्य धारा में तो मुख्य धारा में जुड़ के लंबे समय तक रहें, ऐसा ना कि उनके दुश्मन, वो भी एक मेजर रिस्क हो जाता है। कई लोग अपना अपनी पहचान छिपा करके या बदल करके भी लोग रहे हैं।
2: इसमें मैं चूंकि साकेत जी ने उसका नाम नहीं बताया, मैं एक बता भी देता हूँ झारखंड, क्योंकि वो बहुत पब्लिसाइज भी हुआ और लगातार प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात के एपिसोड में उसका चर्चा भी किया। गुमला के एक नक्सली थे साहू, उन्होंने 10 वर्षों तक वो नक्सली की भूमिका में रहे और कई उनपे वो थे जो आपने बोला ना कि ओपन जेल में लाकर लोगों को रखा जाता है ताकि वो एक नॉर्मल बिहेवियर की तरह फैमिली के साथ फिर वो आके जीवन यापन कर सके। उसके बाद उन्होंने मछली क्रांति, पूरे गुमला में उसने मछली क्रांति किया है और आज वो देश में उनका नाम होता है। तो ऐसा नहीं है कि भटकाव होने के बाद अगर उनको मौका मिलता है और सरकार की जो प्रोत्साहन नीति होती है उसमें अगर वो जुड़ते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट, सीधा एग्जाम्पल वो साहू जी हैं जिन्होंने पूरे इलाके में, सिर्फ वो अपना उन्नयन उनका नहीं हुआ, उनके साथ आज नहीं तो हाँ कम से कम 500 किसान जुड़े हुए हैं और उसके जरिए वो जो कह सकते हैं नीली क्रांति की पटकथा पूरे गुमला में वो लिख रहे हैं। तो ऐसे कई लोग एग्जांपल हैं।
3: और ये है कि जो इस तरह के जैसे लोग हैं वो जैसे सक्रिय नक्सली हैं वो कई बार हमारे समझाने पे हो सकता है वो नहीं समझे, लेकिन जब ऐसे लोगों के बारे में उनके पास सूचना जाती है कि हाँ वो तो मुख्य धारा में जुड़ करके ऐसे अच्छे काम कर रहे हैं तो तब उनको कहीं ना कहीं एक छोटी प्रेरणा मिलती है।
0: परिवार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, परिवार के भी लोग समझाते हैं तो कई बार नक्सली जो होते हैं मुख्य धारा में जुड़ने की कोशिश कर लेते हैं।
1: जी जी, और जब ऐसे उदाहरण आते हैं तो उनको तब ये एक विश्वास होता है कि समाज उनको एक्सेप्ट करेगा।
0: एक और मैं इसे बोलना चाहूंगा कि ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो कि मुख्य धारा में जुड़ने के बाद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं
1: जी।
0: लेकिन ऐसे एग्जांपल्स मिलना मुश्किल है जो कि एक बार मुख्य धारा में जुड़ गए तो वापस नक्सली बने हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। एग्जाम्पल्स आपको नहीं मिलेंगे अगर आप खोजने की कोशिश की जाए कि फिर दोबारा कोई नक्सली बना कि नहीं, तो बहुत मुश्किल है वैसा खोजना।
1: और ये मतलब सक्सेस का माइलस्टोन है कि वापस नहीं जा रहे हैं,
0: वापस नहीं जा रहे हैं।
2: इसके पीछे रीजन मुझे लगता है पूनम जी यही होगा कि एक तो उन्होंने दूसरी जो भटकती हुई विचारधारा थी उसमें भी जब वो गए नक्सली, जब उस लाइफ को अभी कंपैरिजन उन्होंने सामान्य लाइफ से किया तो उसके बाद आने के बाद जो उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है शायद वो प्रोटेक्शन वहां पर नहीं था, इसीलिए शायद कोई लौट के नहीं जा रहा है। क्या
0: और भी बहुत सारे उसके कारण हो सकते हैं
2: जी।
0: एक बार परिवार के साथ रहना शुरू हो गया, दूसरी बात की अगर नक्सलिज्म जिंदा भी रहता तो शायद वो नक्सल भी कि भैया एक बार आ गया तो फिर उस पर कितना भरोसा किया जाए। तीसरा जो हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एक हथियार का काउंटिंग कर रहे हैं, हथियार ना छोड़ें, हथियार उनके पास नहीं रहना चाहिए, कहीं भी अगर कहीं छिपा करके रखा गया तो हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं समझा करके,
2: क्योंकि एक चुनौती तो ये निश्चित तौर पर रहेगी ना।
0: जैसा मैंने बताया कि सिर्फ पुलिस और अर्धसैनिक बलों के दम पे काम नहीं हुआ, पब्लिक ने इसको रिजेक्ट किया है।
2: यस
1: जी।
0: तो इसलिए पब्लिक चूंकि रिजेक्ट कर दी तो फिर दोबारा नक्सलिज्म वापस रिवाइव होने के चांसेस बहुत ही कम है। वैसे जगहों से को हम लोग अभी तुरंत खाली नहीं करें जहां हम लोग बने हुए हैं कुछ सालों के लिए, जैसे कि नॉर्मेलसी, क्लोज टू नॉर्मेलसी बिल्कुल आ जाए तब हम लोग जगहों को खाली करें। जैसे सारंडा से हम लोग अभी तुरंत कैंप्स, भले ही नक्सल नहीं है लेकिन वहां से हम लोग तुरंत कैंप्स नहीं हटाने की प्लान है। जैसे बूढ़ा पहाड़ बता रहे थे तो बूढ़ा पहाड़ में अभी सीआरपीएफ का कैंप है तो हम लोग वो सब कैंप्स को रखे हुए हैं, जैसे कि कोई और एक कोई दूसरा तरह का पार्टी उसमें घुसने की कोशिश
1: ना करें,
0: जो कि गलत फिर से लोगों को गलत रास्ता दिखाने की कोशिश करें। माओइस्ट खत्म हो गया, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल को भी हम लोग ऐसे एरियाज में जाने नहीं देंगे।
1: जी जी, और मुझे लगता है ये जो डिजिटल क्रांति हुई है हमारे देश में UPI
0: उसका भी बहुत इम्पोर्टेंट,
1: उसका भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो लेवी का जो मामला था, पेट्रोल पंप लूट की घटनाएं आम थी, उगा ही आम थी, लेकिन अब लगता है कि ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर रहा है इस तरह के क्राइम को कर्ब करने में। इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा।
0: जैसा आपने बताया, अब एक बार अगर कोई, आप वैसे भी सोचिए घर में
1: जी
0: छोटे से बच्चे से आप मोबाइल ले नहीं सकते हैं
1: जी।
0: वापस अगर उसको मोबाइल की आदत लग गई है तो बहुत ही मुश्किल काम है उसे मोबाइल को दूर करना
1: जी।
0: तो ये सेम चीज है, जैसे मेरे सामने मोबाइल रखा हुआ है, मेरे दिमाग में अभी भी चल रहा है कि कोई मैसेज मिस तो नहीं हो रहा है, कोई कॉल तो मिस नहीं हो रहा है
1: जी।
0: तो अब मोबाइल छूटना पॉसिबल नहीं है, और ये सिर्फ शहरों में नहीं गाँव में भी। तो इस मोबाइल के साथ अगर कोई भी क्राइम करेगा तो क्राइम हम लोग आसानी से ट्रैक होना ही है, और मोबाइल छोड़ नहीं सकते हैं। तो लोग भी इसी हिसाब से मोबाइल को पॉजिटिव यूज करने के रूप में लगे रहते हैं, ना कि नेगेटिव गलत भी करने का कोशिश करते हैं। कई बार लेवी का डिमांड भी मोबाइल से आता है, उसी से उनको भी पता है, उससे बचने का भी कोशिश करते हैं। पुलिस भी कोशिश करते हैं कि क्रिमिनल से दो कदम आगे रह जाएं। डिजिटल क्रांति से सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अवेयरनेस लोगों के बीच में, नॉलेज आपके सारे नॉलेज आपके सारा कुछ मोबाइल में अवेलेबल है, और वो नॉलेज जरूरी नहीं है कि हमारे पास ही रहे, आप जो

0: कोई करना चाहता है तो गांव में कहीं भी बैठ करके नॉलेज हासिल कर सकता है, जानकारी हासिल कर सकता है, तो इसलिए इसका निश्चित रूप से फायदा हुआ है
1: जी। तो आनंद कुमार जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे लोगों को, खास करके हमारे युवाओं को, कि कैसे मुख्य धारा में रहें और आगे बढ़ें?
2: मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो समय है ये अपॉर्चुनिटीज से भरे पड़े हैं
1: जी।
2: बस अपने युवा साथियों को ये करना है कि अपने आप को इस लायक बनाएं और इन अपॉर्चुनिटी को हम ग्रहण कर सकें। बिना जंगलों में भटके हुए, बिना कानून को तोड़े हुए, आपको मुख्य धारा में मेंटेन करते हुए एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं।
1: जी। साकेत जी, आपका संदेश?
0: अब तो समय है ही नहीं कि हथियारबंद आंदोलन किया जाए। आपको जो भी डिमांड है, ग्रीवांसेज है, उसको आप निश्चित रूप से बहुत सारे प्लेटफॉर्म से जिस पर आप रख सकते हैं, अपनी बात को रखें जरूर। हम लोग अपने जूनियर्स को ये बोलते हैं अपनी बात को रखें, और हम लोग सब लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है कि उस बात को सुना जाए और जो भी उसको सही रास्ता दिखाया जाए, और जो भी उस मदद हो सके, जिस तरह से भी कानून के भीतर रहते हुए उसको हम लोग मदद करें। कुछ लोग जो बचे हुए हैं उनसे मैं जरूर आग्रह करना चाहूंगा कि जैसे बाकी लोग आकर के मुख्य धारा में जुड़ गए, आप भी आइए मुख्य धारा में जुड़िए। अरे बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा।
1: दिवाकर जी, आप क्या संदेश देंगे?
3: देखिए, निश्चित तौर पर देश में अपॉर्चुनिटी, जिसकी बात आप कर रहे हैं, अवसरों की कमी नहीं है, और वैसे में युवाओं के सामने हर तरह के प्लेटफॉर्म है। अगर आज हम कहें कि देश में बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है, सड़क कनेक्टिविटी बढ़ रही है, रेल कनेक्टिविटी बढ़ रही है, एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही है, हर जगह रोजगार के अवसर है, तो उस योजना का युवा फायदा उठाए, उसके जरिए उनका विकास हो सकता है। तो नेक्स्ट जनरेशन अपॉर्चुनिटी का अवसर उठाए, और नक्सलिज्म देश से खत्म हुआ है तो निश्चित तौर पर लाल आतंक हमारे नक्शे से खत्म हो चुका है,
1: गायब हो जाएगा जी। और इसके साथ ही हम आज की परिचर्चा यहां समाप्त करना चाहेंगे। आज की परिचर्चा का विषय था झारखंड में नक्सल उन्मूलन, और हमारे साथ इस परिचर्चा में भाग ले रहे थे श्री साकेत कुमार सिंह, भारतीय पुलिस सेवा महानिरीक्षक झारखंड सेक्टर सीआरपीएफ रांची, श्री आनंद कुमार जरई, कमांडेंट अभियान झारखंड सेक्टर सीआरपीएफ, और श्री दिवाकर कुमार, सहायक निदेशक समाचार दूरदर्शन रांची। आप तीनों हमारे स्टूडियो में आए, आपने नक्सल के बारे में, इसके शुरुआत से लेकर उन्मूलन और इसके खात्मे के लिए आप लोगों ने जो प्रयास किया, उसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।
0: आप धन्यवाद।
4: अभी आप सुन रहे थे केंद्र की एनडीए सरकार की 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष परिचर्चा। आज की परिचर्चा का विषय था झारखंड में नक्सल उन्मूलन। परिचर्चा में भाग ले रहे थे श्री साकेत कुमार सिंह, भारतीय पुलिस सेवा महानिरीक्षक सीआरपीएफ झारखंड सेक्टर, श्री आनंद कुमार जरई, कमांडेड अभियान झारखंड सेक्टर, और श्री दिवाकर कुमार, सहायक निदेशक समाचार दूरदर्शन रांची। परिचर्चा का संचालन कर रही थी पूनम क्रिकेटा। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
5: अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड विधानसभा में राज्यसभा की दो सीटों के लिए चल रही मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सदन के सभी 81 विधायकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। मतदान समाप्त होने के बाद अब सबकी नजरें शाम 5 बजे शुरू होने वाली मतगणना पर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि शाम 7 बजे तक चुनाव के अंतिम नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। मतदान समाप्त होने के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने भरोसा जताया कि निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी को जरूरी आंकड़ों से अधिक मत मिलेंगे और वे भारी अंतर से चुनाव जीतेंगे। इधर निवर्तमान सांसद दीपक प्रकाश ने भी परिमल नाथवानी की जीत का दावा किया है। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और विधायक स्टीफन मरांडी ने साफ कहा है कि इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों की जीत में कोई संदेह नहीं है और उनका गठबंधन नतीजों के प्रति पूरी तरह आश्वस्त है। झारखंड हाईकोर्ट ने ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्मित पुलों के ढहने के मामले में सचिव द्वारा शपथ पत्र दाखिल नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए विस्तृत ब्यौरा तलब किया है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी अगली सुनवाई में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। रांची से बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए दो नई ट्रेनें चलाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसका आधिकारिक प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। बेंगलुरु में चल रहे रेलवे के विकास कार्य पूरे होते ही

अगले महीने इन नई ट्रेनों के परिचालन की उम्मीद जताई गई है। मौसम विभाग ने रांची समेत 17 जिलों में आज और कल भारी बारिश, तेज आंधी और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद और देवघर जैसे जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने की प्रबल आशंका है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम विज्ञान जगत। चर्चा होगी प्लास्टिक बोतल के उपयोग से करें परहेज। साथ ही आप भेंट वार्ता सुन पाएंगी वर्तमान जीवन शैली में योग के फायदे। भेंट वार्ताकार होंगी प्रियंका विश्वकर्मा। साथ ही बातें होंगी खोज और आविष्कार पे, परमाणु रिएक्टर पर। साथ ही और कई सारी जानकारियां भी होंगी। वाचन एवं सहयोग बसंत कुमार का है, प्रस्तुति प्रभु सरन की।
1: कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: नमस्कार, विज्ञान जगत कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से उपस्थित है हम। मैं हूं बसंत और आप सभी का स्वागत है विज्ञान जगत कार्यक्रम में। तो हर बार की तरह आज भी हम ढेर सारी नई रोचक जानकारी और तथ्यों को लेकर उपस्थित हो चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं और क्या जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे प्लास्टिक बोतल के उपयोग से हमें क्यों परहेज करना चाहिए इसके बारे में। इसके बाद बारी होगी भेंटवार्ता की, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान जीवन शैली में योग के क्या फायदे हैं इसके बारे में। इसके बाद बारी होती है वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने की, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं वैज्ञानिक रेने लेनिएक के बारे में। और फिर इसके बाद बारी होगी खोज और आविष्कार की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं परमाणु रिएक्टर के बारे में। तो ये हमने आपको बता दिया कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करेंगे और क्या जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि प्लास्टिक के बोतल के उपयोग से हमें क्यों परहेज करना चाहिए इसके बारे में। आज के समय में प्लास्टिक की बोतलें हमारे जीवन में एक सामान्य सा हिस्सा बनकर ही नहीं बल्कि वो एक विस्तृत रूप ले चुकी हैं और घर, कार्यालय, स्कूल, यात्रा करने से लेकर हम चाहे कहीं भी चले जाएं, प्लास्टिक की बोतल हमारे साथ हमेशा देखने को मिल ही जाती है। ये सुविधा के कारण इनका उपयोग हम सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन हमें ये बात सोचनी पड़ेगी कि भविष्य में हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या इस प्लास्टिक की बोतल की वजह से उत्पन्न हो सकती है। प्लास्टिक बोतलों का अत्यधिक उपयोग न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए कई प्रकार के खतरे उत्पन्न कर रहा है। प्लास्टिक की अधिकांश बोतलें एक बार उपयोग के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन लोग इन्हें कई बार इस्तेमाल करते हैं। लंबे समय तक उपयोग करने या धूप और गर्मी के संपर्क में आने पर इन बोतलों से कुछ हानिकारक रासायनिक तत्व भी निकलते हैं। ऐसे पानी का सेवन करने से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वैज्ञानिकों की अगर हम माने तो प्लास्टिक से निकलने वाले कुछ रसायन हार्मोन संबंधी समस्याएं, पाचन संबंधी परेशानियां और अन्य स्वास्थ्य जोखिम भी पैदा कर सकती है। पर्यावरण की दृष्टि से भी अगर हम बात करें तो प्लास्टिक की बोतल एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। प्लास्टिक आसानी से नष्ट भी नहीं होता, इसे पूरी तरह गलने में सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं। फेंकी गई प्लास्टिक की बोतलें नदियों, तालाबों, समुद्र और जमीन को दूषित करने का काम कर रही है। कई बार पशु इन्हें भोजन समझकर निगल जाते हैं, जिनसे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। समुद्र में पहुंचने वाला प्लास्टिक छोटे छोटे कणों में बदलकर जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। इसके कारण खाद्य श्रृंखला के माध्यम से मानव शरीर तक भी पहुंच रहा है। प्लास्टिक बोतलों के निर्माण में भी बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम और ऊर्जा का उपयोग होता है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों पर काफी दबाव बढ़ता जा रहा है और कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि देखी जा रही है, जो जलवायु परिवर्तन की समस्या को और गंभीर बनाने का काम कर रहा है। इसलिए प्लास्टिक बोतलों का कम उपयोग करना पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अब सवाल ये है कि हम प्लास्टिक बोतलों का विकल्प क्या अपनाएं? इसके लिए हम स्टील, तांबे, कांच या फिर अन्य टिकाऊ सामग्री से बनी बोतलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बोतलें लंबी समय तक चलती हैं, सुरक्षित होती हैं और पर्यावरण के लिए भी बेहतर विकल्प बन सकती हैं। जब भी घर से बाहर जाएं, अपनी पानी की बोतल साथ लेकर जाएं, लेकिन ध्यान रखें कि वो बोतल प्लास्टिक की ना हो। इससे बार बार प्लास्टिक की बोतल खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा हमें लोगों को भी जागरूक करना चाहिए कि लोग प्लास्टिक के उपयोग में कमी लाएं, प्लास्टिक की बोतलों के उपयोग में कमी लाएं और खुद को सुरक्षित रखने के साथ साथ दूसरों को भी सुरक्षित रखने में अपनी भूमिका जरूर निभानी चाहिए। तो हमने आज प्लास्टिक की बोतलों के बारे में बात की, प्लास्टिक के बोतल का इस्तेमाल हमें क्यों नहीं करना चाहिए इसके बारे में। आशा करते हैं कि आप प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल कम करना शुरू करेंगे और इसके जगह पर अन्य विकल्पों को अपनाते हुए अपने जीवन को सुखद और खुशहाल बनाने की कोशिश करेंगे। अब अब बारी है भेंटवार्ता की, और भेंटवार्ता में आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान जीवन शैली में योग के फायदे क्या हैं इसके बारे में। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में हैं प्रियंका विश्वकर्मा, और ये सर्टिफाइड योगा कोच हैं भारतीय खेल प्राधिकरण से। और हम सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं प्रियंका जी।
1: नमस्कार।
0: अगर हम बात करें वर्तमान जीवन शैली में योग के फायदे के बारे में, तो आज हर एक व्यक्ति खुद को स्वस्थ रखने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। सुबह में उठ करके रनिंग करना, साइकिलिंग करना, या फिर वो तरह तरह के योग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक जानकारी की कहें कमी, तो लोगों को जानकारी की कमी है कि योगासन कितने प्रकार के हैं और कैसे करना चाहिए, तो इन सभी चीजों को लेकर के आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो आपसे प्रश्न है वो यही है कि योग और सामान्य व्यायाम में क्या अंतर है, इसके बारे में बताएं।
1: सबसे पहले योग की बात करें तो अगर हम बहुत सदियों पहले जाएं तो विश्वगुरु भारत एक योग विद्या प्रदान करता है हमें, जो काफी समृद्धशाली विद्या है। इसमें इसके अभ्यास से हम अपने शरीर, मन और आत्मा के बीच एक समन्वय बैठा के रखते हैं, जो आज की इस स्ट्रेसफुल लाइफ में हमें काफ़ी हद तक मदद कर सकता है कि हम अपने जीवन शैली को कितनी स्मूथली आगे बढ़ा सके। कोई भी छोटा स्ट्रेस हो या बड़ा स्ट्रेस हो, या घर में किसी भी मेंबर का, या बाहर ऑफिस जाते ऑफिस वर्कर्स का, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन का, या कोई बीमार किसी अवस्था में इंसान है, तो वो अपने स्थिति से कैसे अच्छे से उभर सकता है और अपनी सामान्य स्थिति को इतनी बेहतरीन ढंग से बढ़ा सकता है अपने लाइफ में, इसलिए योग आजकल के लाइफ स्टाइल में बहुत हद तक मदद करता है।
0: तो हम सामान्य व्यायाम में और इसमें अगर फर्क करने की बात करें तो दोनों में क्या अंतर?
1: जब सामान्य व्यायाम की हम बात करें तो सामान्य व्यायाम में हम कोई भी बॉडी मूवमेंट या अलाइनमेंट देखते हैं और उसमें बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं होता है। हमें स्वेटिंग हो जाती है और हम सोचते हैं कि हाँ हमने व्यायाम कर लिया है। बहुत सारे इक्विपमेंट्स की नीड होती है, या फिर हम जिम को भी ऐड करें तो उसमें भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स की नीड होती है। और उसके साथ ही जब हम योग की बात करें तो जब भी हम योग में किसी अलाइनमेंट का या फिजिकल एट्रीब्यूट्स जैसे स्टेमिना हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हुआ, कोऑर्डिनेशन हुआ, स्ट्रेंथ हुआ, एंड्योरेंस हुआ, तो इन सबके साथ हम जो भी बॉडी मूवमेंट्स करते हैं या फिर जो भी योगासन करते हैं उसमें हम अवेयरनेस लेके आते हैं। तो वो जो अवेयरनेस है वो हमारा मैक्सिमम किसी भी प्रकार के इंजरी को भी कम करता है और हमें बेनिफिट भी ज्यादा अच्छा देता है।
0: यानी दोनों में काफी अंतर है,
1: काफी अंतर।
0: अगर आप सामान्य प्रकार से व्यायाम कर रहे हैं तो आप उसमें थक जाते हैं, पसीना आता है, आप समझते हैं कि हम ठीक हो चुके, लेकिन ऐसा नहीं है। आप योग करते हैं उसके अलग तरीके हैं, अलग आसन है,
1: अलग आसन है। और योग सिर्फ आसन नहीं है, एक्चुअली ये 8 प्रकार के अलग अलग इवेंट्स को जोड़ता है, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और समाधि। तो इसमें जो आसन है इसमें हम बहुत सारे फिजिकल मूवमेंट्स करते हैं,
0: यानी जो पूरा शरीर है उसमें अलग अलग चीजों को ठीक करने के लिए अलग अलग आसन है, अलग अलग क्रियाएं हैं।
1: सबसे पहले क्लिंजिंग क्रिया है, फिर हमारे नियम है जो हमें सामाजिक अर्थव्यवस्था से या सामाजिक लोगों से जोड़ती है, उसके बाद आसन है जिसमें हम अपने शरीर शारीरिक किसी भी प्रकार की मूवमेंट्स को या फिर बेंडिंग को, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ट्विस्टिंग, हैंड बैलेंस, लेग बैलेंस जैसे कुछ आसन है उनको करते हैं, जिसमें सूर्य नमस्कार वगैरह भी आते हैं। उसके बाद प्राणायाम है, क्योंकि सटल योग जो है सूक्ष्मता की ओर लेकर जाता है, तो प्राणायाम हमें और सूक्ष्म बनाता है, हमारे प्राण शक्ति को और ज्यादा उजागर करता है, जिसमें इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी को बैलेंस करते हैं ताकि हम कोई भी वर्क करें तो उसकी इफिशियंसी भी बढ़े और बेनिफिट्स भी बढ़े। और समन्वयता में अगर हम कोई काम करें तो उसका अचीवमेंट भी काफी हाई होता है।
0: आपने इतनी बारीकी से समझाया है कि हमारे जितने भी सुनने वाले हैं श्रोता उनको काफी अच्छा भी लग रहा होगा और ये चीजें उनको समझ में आ रही होंगी। लेकिन अगर हम आज के वर्तमान जीवन शैली में योग की बात करें तो ये लोगों को किस तरीके से फायदा पहुंचा सकता है, अगर लोग अपने जीवन शैली में इसको शामिल करते हैं और योग करना शुरू करते हैं तो उनको क्या क्या फायदा हो सकता है, और अगर नहीं करते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है?
1: ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले मैं चाइल्डहुड से बात करना चाहूंगी, क्योंकि अगर मैं इस बार के थीम की बात करूं तो स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग लिया गया है।
0: अच्छा।
1: तो हम जब चाइल्डहुड से बात करते हैं तो चाइल्डहुड के बाद एडल्ट्स, उसके बाद एक अवस्था आता है वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था वो स्थिति है जब हम लोगों में देखते हैं कि झुर्रियां आ रही हैं, ग्रे हेयर हो रहा है, बोन वीक हो रहा है, मसल्स लूज हो रहा है, एफिशिएंसी घट रहा है काम करने का, और फ्रीडम कहीं ना कहीं चला जाता है, हमेशा साथ किसी को होना नीड होता है। तो अगर हम शुरुआत चाइल्डहुड से लेकर अडल्ट से लेकर वृद्धावस्था तक देखें, इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं तो हमें योग अपने लाइफ में 100% जोड़ना चाहिए।
0: इससे काफ़ी फायदे हैं।
1: काफ़ी फायदे हैं, क्योंकि जितने सारे अभी मैंने चीज़ें बताई वो सारी चीज़ों से लोग दूर होना चाहते हैं। तो पहला तो एक फिटनेस देगा, सेकंड कि हमें अपने मन शरीर और आत्मा तीनों को जोड़ के रखता है, तो ये हमें इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल फिजिकल फिटनेस और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है
0: जी।
1: तो ये सारे जब हमें इतने अच्छे एफिशिएंट रहेंगे तो चाहे किस भी फील्ड से आप रिलेट करते हैं आप अपने वर्क में हाईएस्ट अचीवमेंट ही करेंगे, और वो भी लेस स्ट्रेस के साथ, क्योंकि आजकल छोटे बच्चों से लेके चाहे स्कूल गोइंग हो
0: सभी के पास मानसिक तनाव है,
1: मानसिक तनाव है, डिप्रेशन है, या छोटे छोटे बात पे वो बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो जाते हैं, तो ये सभी चीजों को काम करने के लिए प्राणायाम और मेडिटेशन बहुत मदद करता है।
0: यानी कि योग करने से बहुत सारे फायदे हैं अगर आप नियमित योग करते हैं और सही योग करते हैं तब।
1: हाँ, एक अच्छे योगा ट्रेनर के अंदर आप अगर योग सीखते हैं तो आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलता है।
0: तो अगर हम रोगों की बात करें योग से ठीक होने की, तो कितने प्रकार के रोग हैं जो प्रमाणित हो चुके हैं कि योग से ठीक हो सकते हैं?
1: एक्चुअली योग जो है वो सपोर्टिव काम करता है, सपोर्टिव काम करता है, दैट मींस कि आपको आपके जो लाइफस्टाइल में भोजन का तरीका है या जो भी रोग हो चुके हैं उससे क्योर करने के लिए आप जो भी डॉक्टर से दिखा रहे हैं उसके साथ अगर आप योग अपने लाइफ में जोड़ते हैं तो उसका रिजल्ट्स बहुत अच्छा है। जैसे कि जो कुछ साइकोसोमेटिक डिजीज होते हैं जैसे माइग्रेन हो या शुगर बीपी है, तो उनमें हम लोग कुछ योगासन कुछ प्राणायाम और मेडिटेशन कराते हैं। जैसे अगर शुगर है तो योग मुद्रासन मंडुकासन और जितने फॉरवर्ड बेंडिंग आसनास हैं पाद हस्तासन, अर्ध बैकवर्ड बेंडिंग है, अर्ध चक्रासन, कुछ ट्विस्टिंग है जैसे मत्स्य

0: आसन,
1: जी
0: वक्रासन, ये सब ऐड करते हैं। साथ में अगर सूर्य नमस्कार कर लें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि वो 7 आसनों की सीरीज होती है
1: अच्छा
0: जिसमें 12 बारी हम लोग उस आसन को फिर से कुछ आसनों को रिपीट करते हैं, तो उससे बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन भी हो जाता है, ज्वाइंट्स मूवमेंट भी होता है और मेंटल स्टेबिलिटी आती है।
1: कहने का मतलब है कि अगर आपका शरीर ठीक रहेगा तो आपको बीमारियां होंगी
0: होंगी
1: नहीं,
0: ही नहीं।
1: इसलिए योग करना फायदेमंद है,
0: फायदेमंद है
1: शारीरिक, मानसिक और आप
0: सामाजिक
1: सामाजिक
0: तौर पे
1: जुड़े
0: भी।
1: रहेंगे लोगों से। अब हम लोग बात करते हैं आज के युग की। आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके हाथ में मोबाइल नहीं है, और
0: हाँ
1: ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पर लोग मोबाइल और लैपटॉप
0: लैपटॉप
1: कंप्यूटर
0: नहीं।
1: यूज ना कर रहे हों,
0: हाँ
1: या फिर
0: सही
1: कोई
0: है।
1: ऐसा दफ्तर ना होगा जहाँ पे लोग घंटों बैठकर ऑफिस में काम कर रहे हों। तो घंटों बैठकर कंप्यूटर में काम करने वाले लोग और जो लगातार मोबाइल चला रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ शारीरिक समस्याएं, मानसिक तनाव हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों को ठीक करने के लिए या फिर उससे बाहर निकलने के लिए योग के ऐसे कौन से आसन हैं जो अगर लोग करें तो उनको फायदा हो सकता है और इन सभी चीज़ों से उनको राहत मिल सकती है।
0: तो सबसे पहले मोबाइल की दुनिया की बात करें तो मैक्सिमम लोगों का कंधा आगे या सिर आगे झुका रहता है। कंप्यूटर पे काम करने वाले लोगों की बात करें तो कमर से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, या उन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने
1: जी
0: लगती है, या हेडेक, माइग्रेन जैसे प्रॉब्लम्स वो रोज़मर्रा की लाइफ में देखते हैं। तो आप चाहे मोबाइल पे कोई वर्क कर रहे हो या कंप्यूटर पे कोई वर्क कर रहे हो, आप अपना शेड्यूल ऐसा बनाइए कि आप अगर आधे घंटे काम करते हैं तो बीच में 5 मिनट या 10 मिनट निकालिए, अपने टेबल से उठिए, ताड़ासन, तीजकताड़ासन, कटिचक्रासन, इसमें हमने स्पाइन का कंप्लीट एक्सरसाइज किया है। जैसे ताड़ासन किया तो ये इलोंगेट हुआ, तीजकताड़ासन किया तो साइड्स का पूरा एक्सरसाइज हुआ है, और कटिचक्रासन किया तो ट्विस्टिंग भी हुआ है। तो जितना स्टिफनेस रहता है वो रिलीज होता है हमारे स्पाइन में, चाहे लंबर रीजन में हो, थोरैक्सिक रीजन में हो, या फिर हमारा सर्वाइकल रीजन में हो। तो जितना स्ट्रेस है वो रिलीज हो रहा है। साथ में कुछ फॉरवर्ड बेंडिंग जैसे पादहस्तासन किया, हस्तोत्तानासन किया, इसमें करने में आपको ना स्पेस की ज़रूरत है ज़्यादा, ना कोई बहुत इक्विपमेंट की ज़रूरत है। आप जहाँ बैठे हैं उसके जस्ट बगल में खड़े होना है, और ये कुछ आसनाज हैं जो करना है। साथ में जब हम भोजन कर रहे हैं तो उसके पहले 5 मिनट निकालना है अपने लिए। 5 मिनट बैठकर आप नाड़ी शोधन टेक्निक टू ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कर सकते हैं।
1: आजकल लोग घंटों ऑफिस में बैठ कर के काम करते हैं और ऐसी दिनचर्या हो गई है कि लोगों के शरीर का जो बनावट है वो भी बिगड़
0: स्ट्रक्चर
1: रहा है,
0: बिगड़
1: और
0: रहा है,
1: कहीं ना कहीं उनमें मोटापा बढ़ने का जो
0: ओबेसिटी।
1: बीमारी है वो बढ़ रही है। तो अगर किसी प्रकार से किसी को इस तरह की समस्या है तो योग करने के फायदे हो सकते हैं क्या?
0: 100% हो सकते हैं, क्योंकि आपको पहले ही बताया कि ये शरीर, मन और आत्मा तीनों को जोड़ के करता है। तो जिस चीज़ में भी, जैसे हम कोई वर्क करते हैं तो जब तक हम उसमें दिमाग नहीं लगाते वो अपना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, वैसे ही अगर हम आसन अपने लिए 24 घंटे में अगर 1 घंटे भी नहीं निकाल रहे हैं तो आप कैसी लाइफ जी
1: जी
0: रहे हैं। तो अगर आप 6 घंटे या 9 घंटे काम करते हैं तो उसमें 1 घंटे तो एटलीस्ट अपने नहीं निकाल सकते, और 1 घंटे लगातार निकालना भी नहीं है।
1: जी
0: आप 5 मिनट या 10 मिनट बैठ के प्राणायाम कर ले रहे हैं, रात में अगर अपने बेड पे जाते हैं तो 15 मिनट का मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ भी नहीं आता है तो बैठकर आंख बंद करके जो पूरी जो दिनचर्या रही है
1: ध्यान लगा सकते हैं।
0: उसको रिवाइंड कर सकते हैं, वहीं आपको बहुत सारी क्लैरिटी भी मिलती है।
1: अब हमारा आखिरी प्रश्न आपसे है कि विश्व योग दिवस है 21 जून को, और योग दिवस पर आप हमारे जितने भी सुनने वाले श्रोता हैं जो आपको सुन रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: अभी तो मैं यही सलाह देना चाहूँगी कि अब तो योग को एज ए स्पोर्ट्स भी जोड़ लिया गया है। हाल में ही अभी वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप हुआ है जिसमें अपने भारत को लगभग 114 मेडल्स मिले हैं, और काफ़ी उम्दा प्रदर्शन रहा है। और इस बार का जो थीम है स्वास्थ्य वृद्धावस्था के लिए योग, तो आप कोई ये बहाना भी नहीं कर सकते कि अभी मेरा एज नहीं है या
1: जी
0: मैं नहीं कर सकता। हर किसी के लिए योग है और हर किसी को बेनिफिट पहुंचा सकता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने डेली लाइफ में योग को जरूर ऐड कीजिए। आप किसी भी सिचुएशन में हैं आप उससे उबर सकते हैं, ये सिर्फ आपका माइंडसेट है। और हर दिन अपने अपने लाइफ में छोटा छोटा गोल्स बनाइए, उसको अचीव करने के लिए ट्राई कीजिए, और अपने न्यू वर्जन को खोलिए और
1: आपने बहुत
0: हमेशा
1: अच्छी
0: हेल्दी
1: जी
0: रहिए।
1: आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि वर्तमान जीवन शैली में योग के क्या फायदे हैं और क्या क्या चीज़ें आपको लाभकारी हो सकती हैं। तो आपने इतना कीमती समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए और आप इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।

तो अभी हम बात कर रहे थे भेंटवार्ता में वर्तमान जीवन शैली में योग के क्या फायदे हैं इसके बारे में। इस विषय पर जानकारी दे रही थी प्रियंका विश्वकर्मा, जो कि सर्टिफाइड योगा कोच हैं भारतीय खेल प्राधिकरण से। अब बारी है वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने की, और आज हम बात करने वाले हैं वैज्ञानिक रेने लेनियक के बारे में। हम बात कर रहे हैं रेने लेनियक के बारे में, जिन्हें आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में स्टेथोस्कोप का आविष्कारक माना जाता है। इनका जीवन समर्पण, मेहनत, वैज्ञानिक सोच और मानव सेवा का अद्भुत उदाहरण भी माना जाता है। इनका जन्म 17 फरवरी सन 1781 को फ्रांस के सुंदर नगर में हुआ। इनके बचपन का समय बहुत कठिनाइयों से भरा रहा। जब ये बहुत छोटे थे तभी इनकी माता का निधन हो गया। इसके बाद इनका पालन पोषण इनके चाचा ने किया, जो स्वयं एक प्रतिष्ठित चिकित्सक थे। चाचा के मार्गदर्शन में रेने लेनियक की रुचि चिकित्सा विज्ञान की ओर बढ़ गई और इन्होंने कम उम्र में ही डॉक्टर बनने का निश्चय कर लिया। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन शुरू किया। उस समय फ्रांस में चिकित्सा शिक्षा तेजी से विकसित हो रही थी और लेनियक ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया। पढ़ाई में अत्यंत मेधावी और शरीर रचना विज्ञान, रोग विज्ञान तथा शल्य चिकित्सा जैसे विषयों में विशेष रुचि रखते थे। बाद में इन्होंने पेरिस के प्रसिद्ध चिकित्सा संस्थानों में अध्ययन किया और एक सफल चिकित्सक के रूप में अपनी पहचान भी बना ली। उस समय डॉक्टरों के पास रोगों की जांच के सीमित साधन हुआ करते थे। हृदय और फेफड़ों की धड़कनों को सुनने के लिए डॉक्टर सीधे रोगी के सीने पर कान लगाया करते थे। ये तरीका न केवल असुविधाजनक था बल्कि कई बार सही परिणाम नहीं मिलने के कारण बहुत समस्या भी हो जाती थी। वर्ष 1816 में एक ऐसी घटना घटी जिसने चिकित्सा विज्ञान का इतिहास बदल कर रख दिया। एक दिन लेनियक के पास हृदय संबंधी समस्या से पीड़ित एक महिला रोगी आई। रोगी की जांच करते समय उन्हें सीधे कान लगाकर धड़कन सुनना उचित नहीं लगा। तभी उन्हें बच्चों के एक खेल की याद आई, जिसमें ध्वनि एक छोर से दूसरे छोर तक किसी खोखली वस्तु के माध्यम से पहुंचती थी। इन्होंने एक कागज को मोड़कर लंबी नली बनाई और इसके माध्यम से इसके एक सिरे को रोगी के सीने पर और दूसरे सिरे को अपने कान में लगा लिया। इन्हें आश्चर्य हुआ कि हृदय की धड़कन पहले से कहीं अधिक साफ सुनाई दे रही थी। इस प्रयोग ने उन्हें एक नए उपकरण के निर्माण की प्रेरणा दे दी। बाद में इन्होंने लकड़ी से एक विशेष नली बनाई जिसे इन्होंने स्टेथोस्कोप नाम दे दिया। ये शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है सीने का निरीक्षण करना। यह चिकित्सा विज्ञान के इतिहास में एक क्रांतिकारी आविष्कार के रूप में साबित हुआ। स्टेथोस्कोप के माध्यम से डॉक्टर मरीज के हृदय, फेफड़ों और शरीर के अन्य अंगों की आंतरिक ध्वनियों को स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। इससे रोगों का निदान अधिक सटीक और प्रभावी हो गया। आज भी दुनिया भर के डॉक्टर स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं और यह चिकित्सा पेशे का प्रतीक माना जाता है। रेने लेनियक ने केवल स्टेथोस्कोप का आविष्कार नहीं किया बल्कि फेफड़ों के रोगों के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने तपेदिक यानी कि टीबी, निमोनिया और अन्य श्वसन रोगों के लक्षणों के निदान के बारे में भी विस्तृत अध्ययन किया है। इन्होंने विभिन्न रोगों से प्रभावित फेफड़ों की ध्वनियों को पहचानने और उनके आधार पर रोग का पता लगाने की कई सारी विधियां भी विकसित की। इनका मानना था कि किसी भी रोग का सही उपचार तभी संभव है जब उसका सटीक निदान किया जाए। इसी सोच ने उन्हें चिकित्सा विज्ञान के महानतम चिकित्सकों में शामिल करने का काम किया। की बात करें जिस तपेदिक रोग का इन्होंने गहराई से अध्ययन किया था, उसी बीमारी ने इन्हें अपनी चपेट में ले लिया। लंबे समय तक रोगियों के संपर्क में रहने के कारण टीबी से संक्रमित होने से स्वास्थ्य लगातार बिगड़ने लगा और 13 अगस्त सन 1826 को मात्र 45 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इनका जीवन बहुत लंबा नहीं था लेकिन इनके कार्यों ने चिकित्सा विज्ञान को नई दिशा देने का काम किया। इनका आविष्कार लाखों लोगों के जीवन को बचाने में सहायक बना। इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि ज्ञान, जिज्ञासा और मानव सेवा की भावना से किया हुआ कोई भी कार्य सदियों तक मानवता का मार्गदर्शन करता है। तो हमने आपको बता दिया कि रेने लेनियक कौन थे और इन्होंने चिकित्सा विज्ञान में क्या योगदान दिया था इसके बारे में। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खोज और आविष्कार में आज परमाणु रिएक्टर के बारे में। विश्व में ऊर्जा की मांग को अगर लेकर आज बात की जाए तो लगातार इसकी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। बिजली उत्पादन के लिए कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे पारंपरिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है, लेकिन इनके सीमित भंडार और पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के कारण वैज्ञानिकों ने वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की खोज शुरू कर दी। इसी खोज का परिणाम है परमाणु ऊर्जा और इससे उत्पन्न
करने वाला उपकरण जिसे परमाणु रिएक्टर कहा जाता है। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि परमाणु ऊर्जा है क्या। परमाणु ऊर्जा वो ऊर्जा है जो किसी परमाणु के नाभिक से प्राप्त होती है। जब किसी भारी परमाणु जैसे यूरेनियम या प्लूटोनियम का नाभिक टूटता है तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है और इसी ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। परमाणु रिएक्टर के विकास की बात करें तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। बाद में वैज्ञानिकों ने समझा कि इस प्रक्रिया से अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु ऊर्जा पर व्यापक शोध शुरू हो चुका था। इसी क्रम में इटली के महान वैज्ञानिक एनरिको फेर्मी के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम ने दुनिया का पहला सफल परमाणु रिएक्टर बना लिया। इसके बाद परमाणु रिएक्टरों का उपयोग बिजली उत्पादन, चिकित्सा, कृषि और अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में शुरू हो गया। परमाणु रिएक्टर एक विशेष उपकरण है जिसमें नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित तरीके से संचालित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षित रूप से ऊर्जा उत्पन्न करना, रिएक्टर में उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग भाप बनाने और टरबाइन चलाने के लिए किया जाता है जिससे बिजली पैदा होती है। परमाणु रिएक्टर कई महत्वपूर्ण भागों से मिलकर बना होता है। इसमें ईंधन, मॉडरेटर, नियंत्रण करने वाली छड़ें, शीतलक, शीतलक, सुरक्षा कवच जैसी चीजें शामिल होती हैं। अब अगर इसके लाभ की बात करें तो सबसे पहले तो बहुत कम ईंधन से अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अपेक्षाकृत बहुत कम होता है। बड़े पैमाने पर लगातार बिजली उत्पादन संभव है। चिकित्सा, कृषि और वैज्ञानिक अनुसंधान में उपयोगी रेडियो आइसोटोप तैयार किए जा सकते हैं। परमाणु ऊर्जा अत्यंत उपयोगी है, फिर भी इसके साथ कुछ चुनौतियां जुड़ी हैं। रेडियो धर्मी अवशिष्टों का सुरक्षित निपटान, दुर्घटनाओं की संभावना और रिएक्टरों की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसलिए परमाणु संयंत्रों में उच्च स्तर की सुरक्षा व्यवस्था अपनाई जाती है। भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास में होमी जहांगीर भाभा का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। आज भारत में अनेक परमाणु ऊर्जा संयंत्र कार्यरत हैं जो देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। परमाणु रिएक्टर विज्ञान की एक ऐसी उपलब्धि है जिसने ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। इसका आविष्कार मानव बुद्धिमता, अनुसंधान और तकनीकी प्रगति का उत्कृष्ट उदाहरण है। यदि इसका उपयोग सावधानी और जिम्मेदारी के साथ किया जाए तो ये भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। तो अगर विज्ञान के क्षेत्र में आपका भी कुछ योगदान है, आप कुछ नई चीजों को ढूंढने में लगे हुए हैं, तो आप मेहनत करते रहें, सफलता आपको एक दिन जरूर मिलेगी और आप अपने मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो हमने ढेर सारी आपसे बातें कर ली और अब हमारे स्टूडियो की जो घड़ी है वो आपसे विदा लेने का इशारा कर रही है। लेकिन जाने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अपने स्वास्थ्य का, अपना और अपने घर परिवार के सभी लोगों का पूरा ख्याल रखें और जीवन को अच्छे से अनुशासित होकर नियमों से जीते रहें। इन्हीं सारी बातों के साथ अब आपसे लेते हैं विदा। अगली कड़ी में हम फिर से मिलेंगे नई रोचक जानकारी और तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे विज्ञान जगत, वाचन एवं सहयोग था बसंत कुमार का, प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। और अब आइए हम आपको संक्षिप्त जानकारी दे दें हमारे आज के संध्याकालीन प्रसारण की।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 4:35 से आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम। मुख्य समाचार होंगे शाम 5 बजे और 5:02 से होगा हमारा कार्यक्रम युववाणी, जो संबोधित होगा युवा श्रोताओं को। प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की और कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी समृद्धि और पूजा कच्छप। 5:30 पर होगा हमारा औद्योगिक प्रसारण श्रमिक लोक। प्रस्तुति होगी प्रशांत गौरव की। प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम दीपा घोष और महिमा गोल्डन बिलूंग। शाम 6 बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार।

Claro. छह बजकर दो मिनट से आरंभ होगा हमारा ग्रामीण प्रसारण। पहले आप सुनेंगे किसान वाणी और छह बजकर बत्तीस मिनट से हमारी दुनिया। प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की। शाम सात बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और सात बजकर ग्यारह मिनट पर जिले में आज कल। सात बजकर पंद्रह मिनट का समय होगा हमारे दैनिक प्रसारण आदिवासी अखड़ा का, जिसे आज आप सुनेंगे हो भाषा में। चर्चा होगी जल संरक्षण का महत्व इस विषय को लेकर और प्रस्तुति होगी प्रदीप कुमार की। सात बजकर पैंतालीस मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर भारती। इसमें आज आप सुनेंगे संस्कृत वार्ता प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोगाक्षयो भवेत। वार्ताकार होंगे धनंजय वासुदेव द्विवेदी। आठ बजे का समय होगा कार्यक्रम रजनीगंधा के लिए और आठ बजकर दस मिनट से आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के बारह वर्ष पूर्ण। आठ बजकर पैंतालीस मिनट पर समाचार संध्या का आज का अंक आप सुनेंगे और नौ बजे से न्यूज एट नाइन। नौ बजकर पंद्रह मिनट से होंगे समाचार उर्दू में, इन्हें रिले करेंगे हम अपने दिल्ली केंद्र से। नौ बजकर तीस मिनट पर होगा कंट्री वाइड और नौ बजकर पैंतालीस मिनट से इनसाइट्स, इन्हें भी आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। दस बजे का समय होगा कार्यक्रम सुनहरी यादें के लिए और दस बजकर तीस मिनट पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। पुनः हिंदी में समाचार होंगे रात्रि ग्यारह बजे और ग्यारह बजकर पांच मिनट पर अंग्रेजी में समाचार आप सुन सकते हैं। ग्यारह बजकर दस मिनट पर मीडियम वेव पर हमारी सभा समाप्त होगी, लेकिन एफएम पर हमारे प्रसारण का आनंद आप सुबह छह बजे तक उठा सकते हैं। ये था संक्षिप्त विवरण हमारे आज के सांध्यकालीन प्रसारण का।

कार्यक्रम सांझ सरगम में आप सभी का स्वागत है। जिंदगी का ये सफर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा है। श्रोताओं, आप सभी इस मंजिल के मुसाफिर हैं और ये सफर जितना अच्छा कटे उतना ही अच्छा होता है। इस जीवन के सफर में कई लोगों से आपकी मुलाकात होती है, कुछ अच्छे कुछ बुरे, अपना अपना अनुभव दे करके जाते हैं आपको जिंदगी का। कुछ लोग आपके साथ सफर में आगे बढ़ जाते हैं, कुछ बिछड़ जाते हैं। कुछ ऐसे ही खट्टे मीठे अनुभवों को बयां कर रहा है हमारा ये गीत जिसे अब आप सुनेंगे। इसे हमने लिया है फिल्म मुनीम जी से, आवाज़ है किशोर कुमार की, लिखा है मजरू ने और संगीत से सजाया है SD बर्मन ने।

जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को। वैसे तो दोस्तों ये जिंदगी का मतलब नियम है, परिवर्तन होता ही रहता है जिंदगी में और मिलने वाले बिछड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर प्यार हो, खुलूस हो और जिंदा दिली हो तो फिर आप किसी को भी अपना दोस्त बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो बिछड़ गया आप उसका गम मनाते रहें, आप नए का स्वागत भी तो कर सकते हैं।

0: कुछ न बोलिए।
1: मेरा ही प्यार के हमसे कुछ न बोलिए। 9-2-11 फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ थी किशोर कुमार की, शब्द थे मजरूह के और संगीत था SD बर्मन का। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं 16वां साल फिल्म का ये गीत हेमंत कुमार की आवाज़ में। शब्द एक बार फिर मजरूह के, संगीत एक बार फिर SD बर्मन का।

है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पर आएगा। 16 साल का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपको सुनवाते हैं फिल्म माया का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। मजरूह के बोलों को सुरों में पिरोया है सलील चौधरी ने। हम बातें कर रहे थे शुरुआत से अच्छे दिल की, ये गीत भी कुछ इसी बात को बयां कर रहा है।

कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला। माया फिल्म के इस गाने के बाद आइए सुनते हैं बम्बई का बाबू फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के युगल स्वरों में। नगमा निगार है मजरू और मौसीकी है एस डी बर्मन की।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
3: सूचना आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है मुख्य समाचार।
4: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्यसभा की दो सीटों के लिए मतदान समाप्त होते ही दोनों खेमों में बयानों का दौर तेज हो गया है। झामुमो के वरिष्ठ नेता स्टीफन वरांडी ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों की जीत पूरी तरह तय है। दूसरी ओर रांची के विधायक सीपी सिंह ने एनडीए समर्थित उम्मीदवार परमल नाथवानी की जीत को 100% निश्चित बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और आज सुप्रमुख सुदेश महतो ने भी परमल नाथवानी की जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि सूर्यास्त के साथ ही पूरी चुनावी तस्वीर साफ हो जाएगी। सुदेश महतो ने भरोसा जताया कि सभी सहयोगी दलों का मजबूत समर्थन परमल नाथवानी के पक्ष में है। मतदान के दौरान सभी की निगाहें जेएलकेएम नेता और डुमरे विधायक जयराम महतो पर टिकी रही। वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए जयराम महतो ने कहा कि उन्होंने झारखंड और अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज पर मतदान किया है। सिमडेगा पुलिस ने गांजा की अवैध तस्करी के मामले में ओडिशा के कंधमाल निवासी मुख्य तस्कर अश्विनी कुमार दिग्गल और फरिंकू को गिरफ्तार कर लिया है। इस साल 21 मार्च को बिहार के एक युवक को 8 किलो गांजे के साथ पकड़ा गया था। गिरफ्त में आए उस युवक के निशानदेही पर पुलिस ने ओडिशा के इस बड़े सप्लायर को दबोचने में सफलता पाई है। लोहरदगा के उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने आज किस्को प्रखंड के जनवल गाँव का दौरा किया। यहाँ उन्होंने किसान चमरू महतो द्वारा बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत की जा रही आम की बागवानी का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक बहुफसली खेती यानी इंटरक्रॉपिंग मॉडल को अपनाने की सलाह दी। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार,
3: आप सुन रहे थे मुख्य समाचार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। आज की युववाणी प्रस्तुत कर रहे हैं समृद्धि और पूजा कच्छप। प्रस्तुति है गौरव पांडे की।

0: हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने मनपसंद कार्यक्रम युवानी में। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। आप सभी के साथ मैं हूँ आपकी दोस्त समृद्धि,
1: और मैं हूँ पूजा,
0: और हमारी ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे स्पेशल डे की जो फूड कल्चर, सस्टेनेबिलिटी और ट्रेडिशंस को एक साथ जोड़ता है।
1: जी हाँ दोस्तों, आज का विषय है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी, क्योंकि आज हम मना रहे हैं सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे।
0: बिल्कुल, और इस वर्ष का थीम है सेलिब्रेटिंग फूड हेरिटेज, यानी हमारी फूड ट्रेडिशंस, लोकल क्विजींस और कलिनरी हेरिटेज को सेलिब्रेट करना।
1: दोस्तों, जब हम फूड हेरिटेज की बात करते हैं तो यह सिर्फ रेसिपी की बात नहीं होती।
0: बिल्कुल, इसमें हमारे ट्रेडिशनल डिशेस, कुकिंग मेथड्स और लोकल इंग्रेडिएंट्स भी शामिल होते हैं।
1: बिल्कुल समृद्धि, और साथ ही शामिल होती है पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हमारी फूड कल्चर।
0: बिल्कुल सही कहा, और फिर हर रीजन की अपनी यूनिक आइडेंटिटी भी तो होती है।
1: जी हाँ बिल्कुल, जैसे बिहार का लिट्टी चोखा, राजस्थान का दाल बाटी चूरमा, दक्षिण भारत का डोसा या पंजाब का सरसों का साग, हर डिश अपने साथ एक कहानी और एक हेरिटेज लेकर आती है।
0: पूजा, अब देखो थीम पर तो हमने इतनी सारी बातें कर ली, पर ये भी तो एक्सप्लेन करना होगा ना कि आखिर सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी शब्द का अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है।
1: बिल्कुल समृद्धि, दोस्तों गैस्ट्रोनॉमी शब्द सुनकर शायद आपको लगे कि ये किसी बड़े होटल या फैंसी कजिन से जुड़ा होगा, लेकिन इसका अर्थ होता है भोजन और जुड़ी संस्कृति, परंपराएं और खाने की आदतों से।
0: और जब इसके साथ सस्टेनेबल शब्द जुड़ जाता है तो इसका मतलब होता है कि एक ऐसा भोजन और ऐसी खाद्य प्रणाली, यानी कि फूड सिस्टम, जो हमारी हेल्थ के साथ साथ एनवायरनमेंट और आने वाली जनरेशंस का भी ध्यान रखे।
1: बिल्कुल, यानी हम जो भोजन खाते हैं वो सिर्फ स्वादिष्ट नहीं बल्कि जिम्मेदारी से तैयार और उपयोग भी किया गया है, यही सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी का मूल विचार है।
0: और सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे हमें ये याद दिलाता है कि हमें सिर्फ नए फूड ट्रेंड्स पर नहीं बल्कि हमारी जो ट्रेडिशनल फूड विजडम है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। क्यों पूजा?
1: बिल्कुल समृद्धि, क्योंकि हमारे पूर्वजों के कई फूड प्रैक्टिसेस नेचुरली सस्टेनेबल थे, वे सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते थे, लोकल प्रोडक्ट्स का उपयोग करते थे और फूड वेस्ट को कम रखते थे।
0: पूजा, तुम्हें नहीं लगता कि आज की लाइफस्टाइल काफी फास्ट पेस्ड हो गई है?
1: बिल्कुल हो गई है, और यही रीजन भी है
0: कि हम कन्वीनियंस फूड्स और पैकेज प्रोडक्ट्स की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं।
1: बिल्कुल समृद्धि, शायद इसलिए भी सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी इतना महत्वपूर्ण विषय है।
0: बिल्कुल, क्योंकि सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी का एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है लोकल फार्मर्स को सपोर्ट करना।
1: बिल्कुल, जब हम लोकल और सीजनल फूड को चुनते हैं तो हम न केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं बल्कि किसानों और लोकल इकोनॉमी को भी सपोर्ट करते हैं,
0: और साथ ही ट्रांसपोर्टेशन कम होने से कार्बन फुटप्रिंट भी घटता है जो एनवायरनमेंट के लिए काफी फायदेमंद होता है। दोस्तों, दुनिया क्लाइमेट चेंज, फूड इनसिक्योरिटी और फूड वेस्ट जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, ऐसे में सस्टेनेबल फूड हैबिट्स अपनाना समय की जरूरत बन गया है।
1: बिल्कुल समृद्धि, और इसकी शुरुआत बहुत छोटे छोटे कदमों से ही हो सकती है, जैसे फूड वेस्ट कम करना, लोकल प्रोडक्ट्स खरीदना, सीजनल फूड्स को अपनाना और ट्रेडिशनल रेसिपी को बढ़ावा देना।
0: बिल्कुल, इसके अलावा हमें अपने बच्चों को भी अपनी फूड कल्चर के बारे में बताना चाहिए ताकि वे सिर्फ ग्लोबल क्विजींस की ही नहीं बल्कि अपने देश की और क्षेत्र की कलिनरी हेरिटेज को भी समझ सकें।
1: बिल्कुल समृद्धि, क्योंकि हेरिटेज तभी जीवित रहती है जब उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जाए।
0: बिल्कुल दोस्तों, फूड इज मोर देन जस्ट अ मील, इट इज अ कनेक्शन बिटवीन पीपल, कल्चर, नेचर एंड कम्युनिटी।
1: बिल्कुल समृद्धि, दोस्तों अब हम एक ऐसी आदत के बारे में बातें करने जा रहे हैं जिसे बदलकर हम समाज और पर्यावरण दोनों के लिए एक बड़ा योगदान दे सकते हैं। विषय है अन्न की बर्बादी रोके।
0: बिल्कुल, फूड इज प्रेशियस, फिर भी हम अक्सर शादी पार्टीज यहाँ तक कि अपने घरों में भी जरूरत से ज्यादा खाना ले लेते हैं और बाद में यही फूड वेस्ट बन जाता है।
1: बिल्कुल समृद्धि। दोस्तों, जिस भोजन को हम कभी कभी आसानी से फेंक देते हैं उसके पीछे किसानों की कड़ी मेहनत, समय, पानी और कई प्राकृतिक संसाधन जुड़े होते हैं।
0: सही कहा पूजा, एक थाली में परोसा गया भोजन सिर्फ अन्न नहीं होता है बल्कि उसमें किसान का पसीना और प्रकृति का योगदान भी शामिल होता है।
1: बिल्कुल समृद्धि। आज दुनिया के कई हिस्सों में लोग पर्याप्त भोजन के लिए संघर्ष कर रहे हैं जबकि दूसरी ओर बड़ी मात्रा में फूड वेस्ट हो रहा है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है।
0: बिल्कुल, और दोस्तों बता दें कि वेस्टेड फूड का असर सिर्फ खाने तक ही सीमित नहीं रहता है, इससे वाटर रिसोर्सेस, एनर्जी और एनवायरनमेंट पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ता है।
1: तो समृद्धि, सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं?
0: बहुत कुछ। सबसे पहले उतना ही भोजन लें जितना आपको जरूरत हो, इफ नीडेड यू कैन ऑलवेज टेक अ सेकेंड सर्विंग, और साथ ही बचे हुए भोजन का सही तरीके से स्टोर करें, उसे रीयूज करने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि वेस्ट भी कम होगा और रिसोर्सेज भी बच जाएंगे।
1: बिल्कुल समृद्धि, मुझे लगता है कि किसी कार्यक्रम या सेलिब्रेशन में भी फूड प्लानिंग पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है।
0: बिल्कुल,
1: ताकि जरूरत से ज्यादा भोजन तैयार ना हो।
0: दोस्तों, छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं। जब हम भोजन का सम्मान करते हैं तो हम किसानों का, प्रकृति का और आने वाली जनरेशंस का भी सम्मान करते हैं।
1: बिल्कुल, याद रखिए दोस्तों, अन्न की बर्बादी रोकना सिर्फ एक अच्छी आदत ही नहीं बल्कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है,
0: क्योंकि हर दाना अनमोल है और हर बचाया गया भोजन किसी के काम आ सकता है।
1: बिल्कुल समृद्धि।
0: दोस्तों बातें और भी करेंगे पर लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, सुनते हैं ये गीत।

0: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
1: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हां, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: कृषि व्यापार मेला 2026 ये उत्सव नहीं, महाउत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत।
3: भाइयों एवं बहनों, जोहार। झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद। जोहार।
2: इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखें झारखंड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: दोस्तों अब बात करते हैं इतिहास में आज के दिन के, और आपको बताते हैं कि इतिहास में आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। 1576 में बैटल ऑफ हल्दीघाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मान सिंह वन के नेतृत्व में लड़ा गया था।
3: 1812 वार ऑफ 1812 की शुरुआत हुई, जब अमेरिका ने ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की।
2: और दोस्तों आज ही के दिन 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन बोनापार्ट की अंतिम और निर्णायक हार हुई थी। इस युद्ध ने यूरोप के राजनीतिक इतिहास की दिशा ही बदल दी थी।
3: 1928 प्रसिद्ध महिला विमान चालक अमेलिया एयरहार्ट अटलांटिक महासागर पार करने वाली पहली महिला यात्री बनी।
2: आज ही के दिन 1940 में अपील ऑफ 18 जून के माध्यम से चार्ल्स दे गॉल ने फ्रांस के लोगों से नाजी जर्मनी के विरुद्ध संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया था।
3: 1946 इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की पहली बैठक आयोजित हुई।
2: 1979 में सोल 2 ट्रीटी साइनिंग पर अमेरिका और सोवियत संघ ने हस्ताक्षर किए थे।
3: 1981 भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLU-3 सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया।
2: सैली राइड अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी महिला बनी थी, और वो आज ही के दिन 1983 में हुआ था।
3: दोस्तों चर्चा की कड़ी में अब हम आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं कुछ करंट अफेयर्स की। 18 जून 2026 भारत के लिए व्यापार, डिजिटल नवाचार, हरित ऊर्जा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां लेकर आया है।
2: बिल्कुल, इंडिया यूके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इसी साल 15 जुलाई को लागू होने जा रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग का बढ़ावा बनेगा।
3: इंडिया चेयर्स 28 IORA सीनियर ऑफिशियल मीटिंग नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई।
2: डिजिटल इंडिया भाषिनी और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने मल्टीलिंगुअल एक्सेस बढ़ाने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं।
3: भारत ने 2035 तक 155 GW वाइंड एनर्जी कैपेसिटी का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: इंडियन रेलवेज ने स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली यानी कि कवच 4.0 के विस्तार को मंजूरी दे दी है, जिससे रेल सुरक्षा और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी।
3: भारत और स्लोवाकिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में उस सुधारों का समर्थन किया है।
2: ऑटिस्टिक प्राइड डे 18 जून को यानी कि आज ही के दिन मनाया गया, जिसका उद्देश्य ऑटिस्टिक लोगों के प्रति सम्मान, एक्सेप्टेंस और जागरूकता बढ़ाना है। दोस्तों अब बात करेंगे हम कुछ अमेजिंग फैक्ट्स की।
3: बिल्कुल, माइक्रोवेव में पकाई गई पहली चीज पॉपकॉर्न थी।
2: दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर माउस 1964 में बनाया गया था, जो कि लकड़ी से बना था।
3: और गोल्ड फिश अपनी आंखें कभी भी बंद नहीं करती हैं।
2: दुनिया में सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस कारें हांगकांग शहर में हैं, और यही रीजन है कि इसे सिटी ऑफ रोल्स रॉयस भी कहा जाता है।
3: रमन

0: मैग्नस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है।
1: बुद्धिमान लोग सामान्य लोगों की तुलना में बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। तो पेरेंट्स, अगर आपके बच्चे भी ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो औरों से ज्यादा होशियार हैं।
0: महिलाओं में अक्सर आयरन की कमी हो जाती है, लेकिन अगर आप हरी मिर्च खाने के साथ रोज खाएंगी तो आपकी यह कमी पूरी हो जाएगी।
1: बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया की खोज जो है वो जेम्स कुक ने की थी।
0: दुनिया में घूमने के लिए पसंद किए जाने वाले शहरों में पेरिस को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है।
1: एक हिप्पोपोटामस जो है वो अपना मुंह 180 डिग्री तक खोल सकता है। और दोस्तों, अमेजिंग फैक्ट से हमने आपको इंटरटेन तो कर ही दिया है, साथ ही हम आपके लिए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेना चाहते हैं।

0: दोस्तों, चर्चा की इस कड़ी में अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी विषय पर, जिसे हम जाने अनजाने में ही सही पर लेकिन प्रतिदिन इसे भूल कर बैठते हैं। लेकिन इस विषय पर बात करने से पहले कुछ सवालों के जवाब भी जानना जरूरी है।
1: बिल्कुल। क्या आपने कभी उस किसान के बारे में सोचा है जो तपती धूप में पसीना बहाकर हमारे लिए अन्न उगाते हैं? क्या आपने कभी उस माँ की आंखों में झांका है जो अपने बच्चों को भूखा देखकर स्वयं ही भूखी सो जाती है? क्या आपने कभी किसी भूखे बच्चे को होटल या शादी समारोह के बाहर बची हुई रोटी की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखते देखा है?
0: और अगर देखा है तो शायद आप समझ पाएंगे कि

0: भोजन केवल अन्न नहीं है, ये जीवन है, उम्मीद है, ये किसी की मुस्कान है और किसी के लिए तो अगले दिन तक जीवित रहने का सहारा भी है।
1: बिल्कुल समृद्धि। दोस्तों, जब हम अपनी थाली में बचा हुआ भोजन कूड़ेदान में फेंकते हैं, तब शायद हमें यह एहसास नहीं होता कि उसी समय कहीं कोई बच्चा भूखा सो रहा होता है। कई वृद्ध व्यक्ति जो दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, कई मजदूर पूरे दिन की कड़ी मेहनत के बाद भी पेट भर भोजन नहीं खा पाते।
0: एक ओर भूख है तो दूसरी ओर बर्बादी है, और इन दिनों दोनों के बीच खड़ा है हमारा एक छोटा सा निर्णय।
1: बिल्कुल, आज जब हम नो फूड्स वेट्स
0: नो फूड वेस्टेज यानी कि अ स्टेप टुवर्ड्स फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो ये केवल एक अभियान नहीं बल्कि मानवता की पुकार है।
1: बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, एक दाना अन्न बनने से पहले एक बीज था।
0: उस बीज ने मिट्टी की गोद में संघर्ष किया, बारिश की बूंदों का इंतजार किया, किसान के पसीने की नमी पाई और लगातार कई महीनों की कड़ी मेहनत तक और उम्मीदों के बाद वो हमारी थाली तक पहुंच पाई।
1: बिल्कुल समृद्धि, इसलिए जब हम एक दाना भी व्यर्थ करते हैं तो केवल भोजन ही नहीं बल्कि किसी किसान के सपनों को, उसकी मेहनत और प्रकृति के अनमोल संसाधनों को भी व्यर्थ करते हैं।
0: बिल्कुल, इसलिए दोस्तों आज घर लौटते समय अपनी रसोई को एक बार ध्यान से देखिए, थाली में बची हुई रोटी को जरा गौर से देखिए, फ्रिज में रखे उस भोजन को देखिए जो कई बार बिना खाए ही खराब हो जाता है।
1: बिल्कुल, और फिर सोचिएगा, क्या हम सचमुच उतना ही भोजन ले रहे हैं जितनी हमें आवश्यकता है?
0: दोस्तों बातें तो और भी करनी थी आपसे, लेकिन समय हो चला आपसे विदा लेने का। इजाजत दीजिए अपनी दोस्त समृद्धि
1: और पूजा को।
0: नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। समय है अब हमारे औद्योगिक प्रसारण का, तो सुनिए श्रमिक लोक महिमा गोल्डन बिलुंग और दीपा घोष के साथ।

0: नमस्कार जोहार, मैं महिमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने कार्यक्रम श्रमिक लोक में। और आज हमारे साथ है दीपा। नमस्कार दीपा।
1: नमस्कार महिमा, और सभी श्रमिक साथियों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर हम हाजिर हैं जानकारियों और मनोरंजन के नए कलेवर के साथ। खाना हमारी प्राथमिक आवश्यकता है और हमारे कार्यक्रम का पहला विषय इसी से जुड़ा है।
0: आज हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण विषय, प्रकृति अनुकूलन भोजन, सतत कृषि और खाद्य सुरक्षा की बुनियाद पर। आज इस विषय पर बात करने वाले हैं सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे के अवसर पर।
1: सबसे पहले जानते हैं सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी क्या है। ऐसा भोजन और खानपान तंत्र जो पर्यावरण के अनुकूल हो, स्थानीय संसाधनों का सम्मान और किसानों को लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करना है, साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए खाद्य सुरक्षा निश्चित करना।
0: जी, और जब हम प्रकृति अनुकूल खेती और भोजन को अपनाते हैं तो हम पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ अपने स्वास्थ्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाते हैं। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता बहुत प्रभावित हो रही है। ऐसे में सतत कृषि की भूमिका और बढ़ जाती है।
1: सतत कृषि में फसल विविधीकरण, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और स्थानीय बीजों के उपयोग पर विशेष जोर दिया जाता है। इसका लाभ किसानों के साथ उपभोक्ताओं को भी मिलता है, उन्हें पोषक और सुरक्षित भोजन मिलता है।
0: बिल्कुल, और मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा,

0: विभागीय और स्थानीय मौसमी फल सब्जियां केवल स्वास्थ्यवर्धक है बल्कि इनके उत्पादन में मिट्टी पानी संसाधनों की भी कम जरूरत पड़ती है। खाद्य सुरक्षा का मतलब पर्याप्त भोजन के साथ साथ हर व्यक्ति तक एक एक व्यक्ति तक पौष्टिक सुरक्षित और सुलभ भोजन पहुंचाना भी है।
1: भोजन की बर्बादी रोकना, स्थानीय उत्पाद खरीदना और संतुलित भोजन अपनाना छोटे और प्रभावी कदम हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान स्वयं सहायता समूह और महिला उद्यमी भी स्थानीय खाद्य परंपराओं के अनुकूल भोजन को बढ़ावा देते हैं और इसका उदाहरण हम देख ही सकते हैं कि आजकल स्थानीय खाद्य पदार्थों को प्रमोट करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उनमें लगातार नए प्रयोग किए जा रहे हैं और इसका उदाहरण हमारे शहर में भी उपलब्ध है। प्लस कैफे के माध्यम से जो स्थानीय अनाज है उनसे जो वस्तुएं तैयार होती है उनका वहाँ पर मिलता है, उपलब्ध है और उस
0: पर बहुत अच्छा लगता है। हाँ। स्वाद में बहुत अच्छा लगता है ये सब। और प्रकृति के साथ संतुलन ही समृद्धि का आधार है। प्रकृति अनुकूल भोजन ही सुरक्षित भविष्य की पहचान है। इसके लिए हमें संकल्प लेना है कि ऐसी भोजन संस्कृति अपनाएं जो हमारे स्वास्थ्य, किसानों और पर्यावरण तीनों के लिए लाभकारी है।
1: बिल्कुल। और महिमा, आगे भी हम अपने कार्यक्रम में और भी बातें करेंगे लेकिन अभी एक संगीत में विराम लेते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ। झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
3: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब

0: विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
1: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को मनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हां, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आज के कार्यक्रम की अगले विषय की ओर चलते हैं। आज हम पांचवें सिख गुरु, गुरु अर्जुन देव जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके जीवन दर्शन और आधुनिक युग में सामाजिक समरसता तथा भाईचारे के महत्व पर चर्चा करेंगे।
3: गुरु अर्जुन देव जी का जीवन त्याग, सेवा, करुणा और मानवता का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने समाज को एकता और समानता का संदेश दिया। गुरु अर्जुन देव जी ने जाति, धर्म और सामाजिक भेदभाव से ऊपर उठकर मानव सेवा को सबसे ऊपर बताया। उन्होंने यह भी बतलाया कि सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान है। बहुत अच्छी बात कही।
2: आज के समय में जब समाज कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है, गुरु अर्जुन देव जी की शिक्षाएं और भी प्रासंगिक हो जाती है। उन्होंने प्रेम, शांति और भाईचारे के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम किया। उनका संदेश था कि संवाद और सेवा से हर दूरी को कम किया जा सकता है।
3: उनकी शहादत भी हमें सत्य और न्याय के लिए अडिग रहने की प्रेरणा देती है। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने धैर्य और साहस का परिचय दिया, और यही मूल्य आज के युवाओं और आने वाली पीढ़ियों के लिए अनुकरणीय है। हमें समाज में आपसी सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए। एक दूसरे के विचारों, संस्कृतियों और परंपराओं का सम्मान कर हम एक मजबूत और समावेशी समाज का निर्माण भी कर सकते हैं।
2: बिल्कुल, आज गुरु अर्जुन देव जी की पुण्यतिथि पर हम सेवा, सद्भाव, समानता और भाईचारे के मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं और समाज में सकारात्मक विचारों को फैलाने का भी संकल्प लेते हैं, जिससे देश की एकता मजबूत होती है और किसी भी राष्ट्र के लिए यह सबसे बड़ी ताकत होती है।
3: तो अब कार्यक्रम में समय है खास जानकारी का। श्रमिकों के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी और इन्हें दे रहे हैं आज के मेहमान सूरज कुमार। तो आइए सुनते हैं एक वार्ता।
4: श्रमिक साथियों, सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराना चाहता हूं, ताकि श्रमिक भाई इन योजनाओं की जानकारी से लाभ उठा सकें। सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में सबसे पहले आता है श्रमिक औजार सहायता योजना, उसके बाद साइकिल सहायता योजना, सिलाई मशीन सहायता योजना, मेधावी पुत्र अथवा पुत्री छात्रवृत्ति योजना, बाल श्रम शिक्षा प्रोत्साहन योजना, बालश्री बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना, राष्ट्रीय पेंशन योजना। तो आइए साथियों, सबसे पहले श्रमिक औजार सहायता योजना के बारे में आपको जानकारी दे दें। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ट्रेड के लिए औजार की सहायता हेतु राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, कूली, पेंटर आदि को मानक ब्रांडेड कंपनियों के उचित गुणवत्ता के औजार किट उपलब्ध कराए जाएंगे। योग्यता के लिए पात्रता है साथियों, भवन एवं सन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, इस बोर्ड से निबंधित होना अनिवार्य होगा। उम्र 18 वर्ष से कम नहीं हो। इसके पूर्व में योजना अंतर्गत किसी अन्य ट्रेड के लिए औजार किट प्राप्त नहीं किया हो। योजना हेतु आवेदक के द्वारा हस्ताक्षर युक्त आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी या श्रम अधीक्षक के कार्यालय में जमा किया जाएगा। आवेदन में निबंधन क्रमांक अंकित करना अनिवार्य होगा। स्वीकृति का अधिकार, पात्रता के जांच के उपरांत स्थानीय श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी श्रम अधीक्षक के द्वारा निबंधन पदाधिकारी के माध्यम से आवेदन उप श्रमायुक्त को 15 दिनों के भीतर अग्रसारित किया जाएगा। उप श्रमायुक्त एक सप्ताह के भीतर स्वीकृति की प्रक्रिया पूर्ण कर योजना का लाभ दिलाएंगे। दूसरा, साइकिल सहायता योजना एवं सिलाई

मशीन सहायता योजना। इस योजना के अंतर्गत लाभुकों को दोनों में से एक ही योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत बोर्ड से निबंधित महिला लाभुकों को बोर्ड के द्वारा उचित प्रशिक्षण के उपरांत उचित गुणवत्ता की सिलाई मशीन दी जाएगी। योजना की पात्रता निबंधित महिला श्रमिक के लिए उम्र 35 साल से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आवेदक के द्वारा हस्ताक्षर युक्त आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी श्रम अधीक्षक के कार्यालय में आवेदन जमा किया जाएगा। आवेदन में निबंधन क्रमांक अंकित करना अनिवार्य होगा। इसी तरह सिलाई मशीन के लिए भी आवश्यक होगा। इसके बाद मेधावी पुत्र अथवा पुत्री छात्रवृत्ति योजना। तो साथियों, इस योजना के अंतर्गत बोर्ड द्वारा निबंधित श्रमिक के ऐसे दो मेधावी संतानों तक को जिन्होंने कक्षा 1 से 5 तक को छोड़कर किसी भी परीक्षा प्रथम श्रेणी के अंक उत्तीर्ण हुए हों या किसी प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर पाठ्यक्रम में प्रवेश किया हो, छात्रवृत्ति का भुगतान बोर्ड द्वारा किया जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक के सभी छात्रों को ₹500 से ₹750, कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को ₹750 से ₹1,000, कक्षा 9 से 12 के छात्रों को ₹1,000 से ₹1,500, स्नातक कक्षा जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, डिप्लोमा इत्यादि के छात्रों को ₹1,500 से ₹2,500, स्नातकोत्तर कक्षा जैसे एमए, एमएससी, एमकॉम, स्नातकोत्तर डिप्लोमा इत्यादि के छात्रों के लिए ₹2,500 से ₹3,000, स्नातक स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होने पर इंजीनियरिंग तथा मेडिकल छोड़कर उन छात्रों के लिए ₹3,000 से ₹4,000, स्नातक स्तर के मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कोर्स में अध्ययनरत होने पर छात्रवृत्ति या संबंधित संस्था की वास्तविक ट्यूशन फी की प्रतिपूर्ति दोनों में से जो भी अधिक हो, बशर्ते न्यूनतम 1 वर्ष के अध्ययन की अनिवार्यता होगी और उन्हें किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं मिलता हो। योजना हेतु आवेदक के द्वारा हस्ताक्षर युक्त आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी श्रम अधीक्षक के कार्यालय में जमा किया जाएगा। अगला योजना है साथियों, बाल श्रम शिक्षा प्रोत्साहन योजना। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना से आच्छादित विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को प्रतिवर्ष 1 जोड़ी ड्रेस, 1 स्कूल बैग, 1 जोड़ी जूता मोजा, 1 बेल्ट, 1 टाई, परिचय पत्र एवं ₹100 स्टाइपेंड वितरण हेतु प्रति बच्चा ₹1,000 की दर से उपायुक्त सह अध्यक्ष एनसीएलपी को बोर्ड के द्वारा राशि आवंटित की जाएगी। अगला योजना है साथियों, जनश्री बीमा योजना। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा अपने निबंधित लाभुकों को जनश्री बीमा योजना का लाभ दिलाया जा रहा है। जनश्री बीमा योजना भारतीय जीवन बीमा निगम की एक सामूहिक बीमा योजना है। इस योजना के अंतर्गत बोर्ड निबंधित लाभुकों के लिए नोडल एजेंसी है। बोर्ड के द्वारा लाभुकों के लिए देय ₹100 सालाना प्रति राशि का भुगतान LIC को किया जाता है। योजना की पात्रता, सभी निबंधित लाभुक इस योजना से आच्छादित होंगे। सदस्य की मृत्यु की दशा में ₹30,000 की बीमा राशि का भुगतान नामित व्यक्ति को किया जाएगा। दुर्घटना हित लाभ, दुर्घटना से मृत्यु होने पर ₹75,000, दुर्घटना से अस्थायी पूर्ण अशक्तता होने पर ₹75,000, किसी दुर्घटना में 2 आँखों या 2 अंगों या 1 आँख और 1 अंग की हानि होने पर ₹75,000, किसी दुर्घटना में 1 आँख या 1 अंग की हानि होने पर ₹37,500,

0: जनश्री बीमा योजना के सदस्यों के बच्चों के लिए बिना किसी अतिरिक्त लागत 9वीं से 12वीं कक्षा आईटीआई कोर्स समेत के विद्यार्थियों के लिए हर 6 माही में 600 रुपया की छात्रवृत्ति, प्रत्येक परिवार के सिर्फ 2 बच्चों को ही यह छात्रवृत्ति दे होगी। अगला योजना है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अधीन निबंधित लाभुकों के मुखिया सहित 5 सदस्यों को सालाना 30,000 रुपये का स्वास्थ्य बीमा किया जाना है। इस योजना में बीमा योजना की 75% राशि का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा एवं 25% राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। बीमा योजना का लाभ चयनित बीमा कंपनी के माध्यम से दिया जाएगा। यह योजना कैशलेस है। बीमा कंपनी द्वारा सूचीबद्ध अस्पतालों में भर्ती होकर इलाज कराने पर सालाना 30,000 रुपये तक का इलाज का खर्च बीमा कंपनी द्वारा अस्पतालों को भुगतान किया जाएगा। लाभुकों को अस्पताल तक आने जाने के लिए प्रतिवार 100 रुपये एवं अधिकतम सालाना 1,000 रुपये का भुगतान अस्पताल द्वारा किया जाएगा। सभी निबंधित लाभुक इस योजना से आच्छादित होंगे, इसका लाभ उठाएंगे। अगला योजना है साथियों चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना। इस योजना की पात्रता इस प्रकार से है साथियों, निबंधित लाभुक या उसका परिवार गंभीर बीमारी जैसे एड्स, हृदय रोग, कैंसर, गुर्दे की बीमारी इत्यादि से पीड़ित लाभुकों या उनके परिवार के सदस्यों को पूर्ण चिकित्सीय व्यय की प्रतिपूर्ति योजना हेतु आवेदन आवेदक के स्वयं के हस्ताक्षर युक्त आवेदन करने पर आवेदन में पंजीयन क्रमांक अंकित करना आवश्यक है। आवेदन संबंधी क्षेत्राधिकारिता के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी श्रम अधीक्षक के कार्यालय में जमा किया जाएगा। और अगला योजना है साथियों राष्ट्रीय पेंशन योजना। साथियों इस योजना की पात्रता इस प्रकार से है, निबंधित शुल्क प्रतिवर्ष इस योजना में 1,000 का निवेश बोर्ड द्वारा किया जाएगा। योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया वही जैसे पहले कहा गया है साथियों, आवेदक के स्वयं के हस्ताक्षर युक्त आवेदन करने पर आवेदन में पंजीयन क्रमांक अंकित करना अनिवार्य होगा। आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी श्रम अधीक्षक के कार्यालय में जमा किया जाएगा। स्वीकृति का अधिकार पात्रता के जांच के उपरांत स्थानीय श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी श्रम अधीक्षक के द्वारा निबंधन पदाधिकारी के माध्यम से आवेदन उप श्रमायुक्त को 15 दिनों में अग्रसारित किया जाएगा। उप श्रमायुक्त 1 सप्ताह के अंदर स्वीकृति की प्रक्रिया पूर्ण कर योजना का लाभ लाभुकों को दिलाएंगे। इस प्रकार साथियों सरकार द्वारा चलाए जा रहे श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मैंने दी, आप लोग इससे लाभान्वित हों।
1: और बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे मेहमान सूरज कुमार ने कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर श्रमिक को लेना ही चाहिए।
2: पता है महिमा, मैं बचपन से ही रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथाओं को सुनते आई हूँ। उनकी वीर गाथा मुझे भी और बहुतों को भी आकर्षित करती है।
1: हम अपने कार्यक्रम श्रमिक लोग के माध्यम से उन्हें शत शत नमन करते हैं क्योंकि आज रानी लक्ष्मीबाई उनकी पुण्यतिथि है।
2: बिल्कुल, हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आप सभी अपनी बेटियों, बहनों और सभी को उनकी तरह निडर और मजबूत बनाइए।
1: वह सिर्फ एक बेटी, पत्नी, माँ, रानी ही नहीं थी, वह महान भारत की शान भी थी।
2: मुझे सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी की पंक्तियाँ बहुत अच्छी लगती है। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
1: बिल्कुल, और मुझे भी यह कविता बहुत ही अच्छी लगती है।
2: साथियों मुझे लगता है कि ये कविता सबको अच्छी लगती है। केवल 23 साल की उम्र में घोड़े पर सवार होकर उसने युद्ध किया, सेना का नेतृत्व किया और अपनी काबिलियत से भारतीय इतिहास में अमर गाथा बन गई।
1: बिल्कुल, और हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से पुनः उन्हें शत शत नमन करते हैं। और साथियों, बातें तो बहुत सी है पर वक्त हो चला है आप सबों से इजाजत लेने का।
2: तो आज के लिए अपनी दोस्त दीपा
1: और महिमा को दीजिए इजाजत।
2: नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रमिक लोक, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है मुख्य समाचार।
4: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्य में राज्यसभा की दो सीटों के लिए मतों की गिनती जारी है। शाम 5 बजे शुरू हुई इस मतगणना में चुनाव अधिकारी सभी 81 विधायकों के मतों की जांच कर रहे हैं। झामुमो के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परमल नाथवानी के भाग्य का फैसला कुछ ही समय में होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे, जिससे देश भर के 15 लाख से अधिक लाभार्थी सीधे लाभान्वित होंगे। झारखंड में भी इसके प्रादेशिक कार्यक्रमों की भव्य तैयारी पूरी है। रांची के डोरंडा स्थित शौर्य सभागार में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मुख्य अतिथि होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में जंगलों और प्राकृतिक इकोसिस्टम को बचाने की जरूरत पर विशेष जोर दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने जंगल की सीमाओं के पास पत्थर खनन और स्टोन क्रशर पर रोक लगाने के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी चुनौती याचिका वापस ले ली है। पाकुड़ जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आज पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह की अध्यक्षता में मासिक अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान एसपी ने जिले में अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन और आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर सभी थाना प्रभारियों को सुरक्षा व्यवस्था के कड़े निर्देश दिए। राजधानी रांची के खेलगांव स्थित रोलर स्केटिंग स्टेडियम में आयोजित 12वीं नेशनल रैंकिंग ओपन स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप के दूसरे दिन खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। देश के विभिन्न राज्यों से आए लगभग 1000 स्केटर्स ने पदक और राष्ट्रीय रैंकिंग अंकों के लिए ट्रैक पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे मुख्य समाचार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वे 540.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर आरंभ होता है हमारा ग्रामीण प्रसारण। पहले सुनिए किसान वाणी।

0: किसान वाणी सुनवैया सब किसान भाई बहन बनकर कार्यक्रम में स्वागत है। संध्या बहन
1: और जुगनी बहन दन से जोहार। और कहो संध्या बहन, का हाल समाचार है और दन ले?
0: एकदम नगद है जुगनी बहन, और अपन बताओ।
1: एकदम नगदे नगद है। देखो खेती बाड़ी भी बढ़िया है, बरखा पानी भी होला है तो खेत ले तो बढ़िया है। और देखो बरखा पानी कर बात है तो देखो हमरे के पानी कर बिना कोनो काम नहीं हो सकेला है कि नहीं?
0: सही कहा थी।
1: जल है तो कल है, कहल भी जाए ई गोइठ एकदम सोच है, जल है तो कल है। तो हमरे के पानी के संरक्षण करे के चाहिए, उके सुरक्षित रखे के चाहिए। और देखो खास करके बरखा का दिन में बरखा होवेला तो जे छत मन से पानी गिरेला और गढ़ा मन में भी रहेला तो पानी ही नहीं होने बह के चल जाएला। तो पानी मन के हमरे के बचाए के रखे के संरक्षित रखे के। और देखो खेती बाड़ी करा थी तो हमरे के पानी के जोगा के रखे के। पोखरा मन है तो पोखरा मन के कोड़े के चाहिए, गांव घर में जगह है तो पोखरा में पानी के रखे के चाहिए। कुआं इंदिरा मन में है तो कुआं इंदिरा भी कोड़े के चाहिए, उस समय हमरे के पानी के संरक्षित रखे के है ताकि हमरे के बेरा बेरा में खेती बाड़ी कर जो काम हमरे के होवेला उ बेरा हमरे के काम देवे है कि नहीं?
0: सही कहा थी। पानी बचाव हमरे मन आज बचाव तो कल हमरे के काम देवे है नहीं?
1: आ देखो पानी ऐसा चीज है कि उकर बिना कौन में काम नहीं हो सकेला। देखो गछे वृक्ष हुई चाहे खेती बाड़ी हुई तो हमरे कर गछ वृक्ष भी बगैर पानी का नहीं रह सकेला है नहीं? और देखो खेती बाड़ी तो बिल्कुल ही नहीं हो सकेला। और ये गोइठ भी सच है कि जे हमरे कर जे जीव है, जीवित प्राणी है जी दुनिया में, से कर ले भी पानी बहुत जरूरी है। बिना पानी कर हमरे भी नहीं रह सकेला है कि नहीं?
0: सही कहा थे। और बगरा जरूरत तो हमरे के पिए के लिए होला है नहीं, तो हमरे के जरूर से जरूर बचाए है। और देखो पिए के छोड़ के घर कर कोनोए काम देखो पानी कर बिना तो नहीं होला।
1: तो हमरे के पानी के संरक्षित रखे के, बगरा पानी के बर्बाद नहीं करे के। और देखो अगर हमरे पानी बचाए के रखब तो हमरे कर भविष्य ले भी छुआ पुता मन है आवे वाला पीढ़ी ले भी उमन कर जीवन जिंदगी भी बढ़िया रही, उमन का स्वास्थ्य भी बढ़िया रही, और उमन ले हमरे के पानी के संरक्षित बचाए के भी रखे के है कि नहीं? ताकि आवे वाला पीढ़ी स्वस्थ रह पाए और खुशहाल रह पाए।
0: हाँ हाँ, तो बता देवेला कार्यक्रम कर प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। पहले जानेला आज हमरे मन का जानकारी करब एकर बारे में। आज की बात में जानब हमरे मन वृक्षारोपण से खेती कर अलावा अतिरिक्त रोजगार और आय भेंटाए, एकर बारे जानकारी देवे डॉक्टर ताहिरा अर्जुमंद। कृषि गीत सुनब नागपुरी में सरिता देवी और संगी मनकर गावल तले नई उम्र की नई फसल में एगो प्रगतिशील किसान अंतर्यामी प्रधान से करल गोइट के हमरे मन सुनब। तो जुगनी बहन और करब मौसम कर हाल जाने से है नहीं?
1: तो चलो तब हमरे खेती बाड़ी करीला तो मौसम कर हाल भी जाने बहुत जरूरी है कि नहीं? तो और करीला मौसम से मौसम विज्ञान विभाग बटले मिलल जानकारी के मुताबिक आज राज्य में धूप कर चलते उमस कर गर्मी कर एहसास होलक है। और आज का तापमान इतर आकल गलक, राजधानी रांची कर अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस, जमशेदपुर कर अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री, डाल्टनगंज कर अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री, देवघर कर अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री, ओहे तर गढ़वा कर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस आकल गेलक रहे। तो ई रहे आज के मौसम कर खबर।
0: तो आगे हमरे मन जानकारी करब वृक्षारोपण से भेटाई खेती कर संगे अतिरिक्त रोजगार और आय। बताते हैं डॉक्टर ताहिरा अर्जुमंद और इनकर से बतियाए हैं कृष्ण जीवन पौराणिक।
2: किसान साथियों नमस्कार। झारखंड की पहचान उसके जंगलों और खेती किसानी से हो रही है, लेकिन आज हमारे किसान भाई बहन कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अधिकांश किसान छोटे और सीमांत हैं और उनकी आय का मुख्य आधार धान की खेती है, लेकिन मौसम में बदलाव, कभी कभी कम तो कभी अधिक बारिश, बढ़ती लागत और छोटी जोत के कारण केवल खेती पर निर्भर रहना पहले जितना आसान नहीं रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या खेती के साथ कोई ऐसा उपाय है जिससे किसानों की आमदनी बढ़े, गांव में रोजगार के अवसर पैदा हों और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। इसका एक अच्छा समाधान है वृक्षारोपण और कृषि वानिकी। खेत की मेड़ों, बाड़ी और खाली जमीन पर फलदार और उपयोगी पेड़ लगाकर किसान खेती के साथ साथ अतिरिक्त आय का एक मजबूत आधार तैयार कर सकते हैं। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर ताहिरा अर्जुमंद, वन एवं पर्यावरण विशेषज्ञ, सह सहायक प्राध्यापक, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची। डॉक्टर ताहिरा, आपको हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद, नमस्कार।
3: नमस्कार
2: डॉक्टर ताहिरा, झारखंड के किसानों के अतिरिक्त आय के स्रोत तलाशना क्यों जरूरी हो गया है?
3: बिल्कुल, यह समय की जरूरत है। आज अधिकांश किसान एक या दो फसलों पर निर्भर है, लेकिन मौसम

0: बदलाव, अनियमित वर्षा और खेती की बढ़ती लागत के कारण केवल फसल से परिवार की सभी जरूरतों को पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि खेती के साथ साथ आय के दूसरे साधन भी विकसित किए जाएं। वृक्षारोपण इसी दिशा में एक अच्छा विकल्प है। पेड़ किसान के लिए एक ऐसी पूंजी है जो एक बार लगाने के बाद कई वर्षों तक फल, बीज, लकड़ी और अन्य उत्पादों के रूप में लाभ देती रहती है।
1: जी, तो खेती के साथ वृक्षारोपण से किसानों की आय कैसे बढ़ सकती है?
0: जी, झारखंड की जलवायु कई प्रकार के वृक्षों के लिए उपयुक्त है। किसान आम, अमरूद, कटहल, आंवला, सहजन, जामुन, महुआ, इमली और करण जैसे पेड़ लगा सकते हैं। इनसे कई प्रकार के लाभ होते हैं। फलों की बिक्री से अतिरिक्त आमदनी मिलना, महुआ, इमली और बीजों से हर साल आय मिलना, पशु के लिए चारा और घरेलू उपयोग के लिए लकड़ी और साथ ही साथ आने वाले वर्षों के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान होती रहती है। यानी एक ही जमीन से खेती भी होती रहे और पेड़ों से अतिरिक्त कमाई भी होती रहे।
1: जी, किसान अक्सर पूछते हैं कि पेड़ लगाने से आमदनी तो होगी, लेकिन कितने साल बाद?
0: यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पेड़ों को हमें एक लंबे समय के निवेश की तरह देखना चाहिए। अलग अलग पेड़ों से अलग अलग समय पर लाभ मिलना शुरू हो जाता है। जैसे सहजन या मुरंगा के पेड़ 8-10 महीने में फल देना शुरू कर देते हैं और दूसरे वर्ष से अच्छी आमदनी देने लगते हैं। आंवला और अमरूद 3-4 साल में उत्पादन देना शुरू कर देते हैं। आम और कटहल के पेड़ सामान्यतः 4-5 वर्ष बाद फल देना शुरू करते हैं और 8-10 वर्ष बाद अच्छी पैदावार देने लगते हैं। साथ ही साथ महुआ और इमली जैसे पेड़ अधिक समय लेते हैं, लेकिन एक बार स्थापित हो जाने के बाद कई दशकों तक लगातार आय देते रहते हैं।
1: जी, तो मुख्यमंत्री जन वन योजना इस दिशा में किसानों और गांवों की मदद कैसे कर सकती है?
0: जी, मुख्यमंत्री जनवन योजना झारखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य गांव में वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ग्रामीण आजीविका को मजबूत करना है। यह योजना में ग्राम सभा, स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप और स्थानीय लोगों की भागीदारी पर जोर दिया गया है। गांवों की सामुदायिक भूमि और उपलब्ध स्थानों पर पौधारोपण करके भविष्य के लिए इनकम के नए साधन तैयार किए जा सकते हैं। अगर गांव में फलदार और उपयोगी पेड़ों की संख्या बढ़ेगी तो फल, बीज और अन्य वनोपज के माध्यम से लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। इस तरह यह योजना हरियाली के साथ साथ समृद्धि का रास्ता खोलती है।
1: जी, क्या देश के दूसरे राज्यों में वृक्षारोपण से किसानों की आय बढ़ने के सफल उदाहरण भी हैं क्या?
0: जी हाँ, हमारे देश में ऐसे कई उदाहरण हैं जो बताते हैं कि खेती के साथ पेड़ लगाना किसानों के लिए अतिरिक्त आमदनी का मजबूत साधन बन सकता है। पहला उदाहरण तो हमारा हरियाणा के यमुनानगर जिले का पॉपुलर आधारित कृषि वानिकी मॉडल है। हरियाणा के यमुनानगर जिले में हजारों किसानों ने गेहूं और धान की खेती के साथ पॉपुलर के पेड़ लगाने शुरू किए। पेड़ों की कटाई लगभग 6-7 वर्षों में होती है। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार यह मॉडल किसानों को फसल की आय के अलावा लगभग 8-10 लाख रुपए प्रति एकड़ तक अतिरिक्त आय प्राप्त हुई है। कुछ अध्ययनों में 7 वर्ष के चक्र में लगभग 11 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर तक शुद्ध लाभ दर्ज किया गया है। इसलिए यमुना नगर को आज देश के सफल कृषि वानिकी क्षेत्रों में गिना जाता है। जो दूसरा उदाहरण है हमारा, वो है गुजरात में सहजन यानी मोरिंगा की खेती। गुजरात और दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में किसानों ने खेत की मेड़ों और खाली जमीन पर सहजन के पेड़ लगाने शुरू किए। सहजन की फली, पत्तियां और पाउडर की देश और विदेश दोनों में मांग बढ़ रही है। सहजन के पेड़ पहले ही वर्ष से उत्पादन देना शुरू कर देते हैं और अच्छी देखभाल के बाद किसान 1.5-2.5 लाख रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष तक अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि कई राज्यों में इसे जलवायु के अनुकूल और लाभकारी फसल के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इन उदाहरणों से एक बात तो साफ होती है कि पेड़ केवल पर्यावरण की रक्षा के लिए नहीं है, बल्कि किसानों की आर्थिक सुरक्षा के लिए भी हैं। अगर

0: हरियाणा और गुजरात के किसान वृक्षों के माध्यम से अपनी आय बढ़ा सकते हैं, तो झारखंड के किसान भी आम, कटहल, सहजन, आंवला, इमली, महुआ और करण जैसे पेड़ों के माध्यम से खेती के साथ अतिरिक्त कमाई का एक मजबूत आधार बन सकते हैं।
1: जी, तो क्या वृक्षारोपण गाँवों में रोजगार के अवसर भी बढ़ा सकते हैं?
0: बिल्कुल, पौधाशाला तैयार करना यानी जैसे नर्सरी, पौधों की देखभाल, फल संग्रह, प्रोसेसिंग और बाजार तक पहुंचाने जैसे कई कामों से रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। महिलाएं स्वयं सहायता समूह से आंवला, इमली और महुआ से अचार, कैंडी और अन्य उत्पाद बनाकर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकती हैं। इस प्रकार वृक्षारोपण गाँव में रोजगार बढ़ाने का भी एक अच्छा माध्यम बन सकता है।
1: जी, तो वृक्षारोपण से खेती और पर्यावरण को क्या क्या लाभ होते हैं?
0: देखिए, पेड़ मिट्टी को कटने से बचाते हैं, नमी बनाए रखते हैं और भूजल स्तर को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इससे खेती पर सूखे और मौसम के बदलाव का असर कुछ हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा पेड़ जैसे विविधता को यानी बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा देते हैं और वातावरण को स्वच्छ रखते हैं। इसलिए वृक्षारोपण किसानों के लिए आर्थिक लाभ के साथ साथ प्राकृतिक सुरक्षा कवच का भी काम करते हैं।
1: जी, तो अंत में झारखंड के किसान भाइयों बहनों के लिए आपका क्या संदेश है इस बारे में?
0: मेरा सभी किसान भाई बहनों से यही कहना है कि खेती के साथ साथ पेड़ों को भी अपनी पूंजी समझें। खेतों की मेड़, बाड़ी और खाली जमीन पर फलदार और उपयोगी पेड़ लगाएं। आज लगाया गया आम का या कटहल का पौधा 4 से 5 वर्षों में फल देना शुरू कर देता है और एक विकसित पेड़ कई वर्षों तक हजारों रुपए की वार्षिक आय दे सकता है। इसलिए पेड़ लगाना खर्च नहीं है बल्कि भविष्य के लिए निवेश है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जनवन योजना हमें यह अवसर देती है कि हम गाँव को हरा भरा बनाएं, पर्यावरण को सुरक्षित रखें और किसानों की आय बढ़ाने के लिए नए रास्ते तैयार करें। अगर हर किसान कुछ पेड़ लगाकर उनकी देखभाल करे तो आने वाले समय में झारखंड के गांव अधिक समृद्ध होंगे और किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी।
1: जी, तो डॉक्टर ताहिरा, आपने वृक्षारोपण से हमारे किसान भाई अतिरिक्त रोजगार कैसे कमा सकते हैं इसके बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: धन्यवाद। नमस्कार।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
1: तो आगे कार्यक्रम में हमरे ग्रीजरंकरप और नागपुरी लोकगीत कर संगे और कलाकार हैं सरिता देवी और उकर शंगे मन।
2: हाँ

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ। झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
3: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा हित में जारी।
2: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ। झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
3: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जारी।
4: अब बेरा है नई उम्र की नई फसल कर। तो एगो प्रगतिशील किसान भाई हैं, अंतर्यामी प्रधान, इनकर से बतिया हैं मनोज कुमार। तो चलो इनकर गुठियाल गोइट के सुनेला।
5: चलो तब
6: नमस्कार, जोहार। नई जानकारी के साथ आप सभी का स्वागत है। आज एक ऐसे किसान से मिलवाने जा रहे हैं जिनका अधिकतर उत्पादन विदेशों में जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, जिनका 16 सदस्यीय संयुक्त परिवार है और पीढ़ियों से जैविक खेती कर रहे हैं। आज तक कभी भी रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया। इनके परिवार में सभी लोग उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं और सभी लोग मिलजुल कर जैविक खेती करते हैं। इनके और इनके परिवार को कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। पारंपरिक और आधुनिक का मिश्रण करते हुए प्राकृतिक कीटनाशक और खाद तैयार करते हैं। खेतीबाड़ी के साथ साथ पशुपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन भी करते हैं, जो कि देसी रहता है। तो चलिए मिलते हैं एक सफल किसान से।
7: नमस्कार, मैं अंतर्यामी प्रधान, ग्राम मिलारावाद, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। और मैं जैविक कृषक हूँ, जैविक खेती करता हूँ पारंपरिक तरीके से, और हमारे 5 पीढ़ी से वही खेती करते आ रहे हैं। आज तक हम लोग कोई रासायनिक खाद या दवाई का प्रयोग नहीं किए हैं खेती में। और रासायनिक खेती के साथ साथ हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं। उसमें कुछ गाय पाले हैं, मुर्गा पाले हैं, बतख पाले हैं, और साथ साथ हम लोग ये हॉर्टिकल्चर में आम का पौधा भी लगाए हैं। और मेरे ख्याल से इसमें हमको जैविक खेती का बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस, लोग बाग प्रोग्रेसिव किसान बोलते रहते हैं, हम लोग कोई प्रोग्रेसिव किसान नहीं है, हम लोग परंपरागत खेती वाले पुराने किसान हैं,
6: पुराने जमाने के
7: किसान हैं। हम लोग कोई नया ऐसा नहीं किए हैं, पुराने खेती को जीवित रखे हैं और उसका मेन कारण है कि हम लोग जैसे ही 1970 के बाद रासायनिक फील्ड में लोग उतरे तो हम लोग नहीं उतर पाए मतलब हमारे दादाजी वगैरह लोग सब विरोध किए, इसमें जाना नहीं है नहीं है, तो नहीं गए। तो उसके बाद हमारे पिताजी लोग भी नहीं गए, हम लोग भी नहीं गए, तो वही गौ पालन, भेड़ पालन, मुर्गी पालन, बतख पालन करके पूरा आजीविका चला रहे हैं। बहुत बड़ा संयुक्त परिवार है और उसमें हम लोग भी साथ देते हैं, हमारे महिला वर्ग भी सब उसी में जुड़े हैं सारे जी। और मेरे ख्याल से हमको बढ़िया सा इनकम हो जाता है और खर्चा वर्चा काट कर हमको 1 एकड़ में 1,00,000 रुपए बच जाता है।
6: तो कितना जमीन होगा आपका?
7: हम लोग तो बहुत बड़ा परिवार है लेकिन 65 एकड़ में ऑर्गेनिक करते हैं, उसमें सारी चीजें हैं व्यवस्थित रूप से। अगर बंटवारा करते तो 5-5, 7-7 एकड़ आता, लेकिन हम लोग अभी भी संयुक्त परिवार हैं। हम लोग संयुक्त परिवार का मेडल भी ले चुके हैं। किसी के पास 5 एकड़ भी जमीन है और वो इंटीग्रेटेड सिस्टम से जैविक खेती करे तो उसको कहीं पर जाने के लिए, रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, चाहे जितना भी पढ़ा लिखा हो। और हमारे लड़की लोग, मेरे लड़के लोग सब तो पढ़े लिखे हैं, कोई इंजीनियर है, कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, सभी खेती में जुड़े हैं।
6: खेती बाड़ी करते हुए भी अपना व्यवसाय कर रहे हैं?
7: व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, सब खेती बाड़ी में जुड़ गए हैं। हालांकि वो बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन सब देखे कि इस ये खेती बाड़ी में सबसे बढ़िया माहौल मिल रहा है तो सब इसी में जुड़ गए हैं। तो मेरे जो लड़के लोग, मेरे भाई के लड़के लोग सब पढ़े लिखे हैं, कोई इंजीनियर भी है आपका ये,
6: लेकिन सब खेतीबाड़ी कर
7: रहे हैं, सब खेतीबाड़ी में जुड़ गए हैं और सिस्टम अलग अलग तरीके से बहुत सारी चीजों को कर रहे हैं। और बहुत सारे चीजें हैं जैसे सब्जी उत्पादन ये करना दुनिया। और उसके बाद हम लोग एक सिस्टम ये बनाए हैं कि किसान को कभी भी पैसे की जरूरत ना पड़े। जैसे आप सुबह उठे तो कोई भी संसार में ऐसा धंधा नहीं है कि आपको 100 रुपया या 200 या 500 रुपया दे सुबह उठे कि बिना मानसिक तनाव में, वो केवल गाय है। आप सुबह उठेंगे कि गाय सीधा आपको कैपेसिटी के अनुसार 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर देगी और उसको डायरेक्ट मार्केट में सेल कर देंगे तो आपको 100 200 500 हो जाएगा जितना ज़्यादा दूध। तो संसार में कोई भी ऐसा बिजनेस बताइए जो बिना पेंशन में आपको 100 200 500 1,000 रुपया दे, उसमें गाय एक है कि आप गाय पाले हैं तो सुबह उठते ही दूध निकालो बाजार में बेच दो, जो 200 400

0: पैसा पर ये आपका खर्च निकल जाएगा। दूसरा आपका एक चीज है कि बिना खर्च में आप कैसे खेती कर सकते हैं, खर्च कम करना है आप, और खर्च कर कम करने के लिए आपको गोबर की जरूरत है, और गोबर डालेंगे तो जैविक खेती संभव है। और गाय जो है गोबर भी देती है, दूध भी देती है, मूत्र भी देती है, उसका मूत्र का दवाई, गोबर का खाद, ये दवाई बन जाते हैं, और गाय का जो दूध है वो तुरंत मार्केटिंग हो जाता है और ज़्यादा रेट में बिक जाता है। तो हमको जैसे ही ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, गौ और गाय का गोबर और मूत्र, तो आप उसका आराम से जैविक खेती के लिए आप आगे निकल सकते हैं। जैसे ही जैविक खेती आप करेंगे तो आपका मार्केटिंग के लिए, लोग बोलते हैं कि इसका मार्केटिंग नहीं है, मार्केटिंग के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और मार्केटिंग करने के लिए तब आप मार्केट बढ़िया चुन सकते हैं जब आपका उपज ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा उपज होगा तो उसमें आपको चावल जैसे है, चावल में उन चावल को आपको चुनना है जो लोगों को खाने में अच्छा लगे। जैसे हम लोगों का धान है जो 100 साल पहले का, 50 साल पहले का, दुबराज, गंगा बालू, जावा फूल, चिन्नौर, काली मूछ, ये सारी चावल, ये सारी चावल को हम लोग पैकिंग करके बेचते हैं और बाहर जाता है। और एक बार जो ये चावल को खा लेता है तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वो दूसरा चावल नहीं। और वो बोलते हैं ना कि खाने वाले लोग नहीं हैं, खाने वाले लोग हैं। दूसरा चावल मेरा कोई भी चावल का रेट जो सस्ता से सस्ता है 100 से ज़्यादा है, और सब बिक रहा है बाहर में, पैकिंग करके बाहर जा रहा है। तो किसानों को ज़रूरत है कि वो एक सिस्टम बनाए। सिस्टम कैसे, डबल धान न, धान के बाद धान न दें, एक फसल केवल धान लें, उसके बाद दूसरा जो है धान होने के बाद
1: बदल दें।
0: तो हम लोग कैसे बदलते हैं, उसके बाद हमारे मेड़ में सब अरहर लगाते हैं, उसके बाद उस अरहर की कटाई करते हैं, अरहर की कटाई करने के बाद दाल आ जाता है, दाल को भी पैकिंग करके बाहर भेज देते हैं, ठीक, उसमें अलग से पैसा आ जाता है। उसके बाद जनवरी फरवरी में क्या होता है, हम लोग गेहूँ बो देते हैं, गेहूँ बोने के बाद खाली रहता है, तो उस समय गेहूँ बोने के बाद हम लोग जो खाली टाइम रहता है उसमें गन्ना लगाते हैं, गन्ना की पेराई शुरू कर देते हैं, और हमारा गुड़ जो है एक माह तक चलता है और हाथों हाथ बिक जाता है 150 रुपये किलो में, नहीं पूर्ति नहीं कर पाते दो माह तक। और सारे चीज़ें उससे दो माह गुड़ बेची, दो माह गुड़ बेचने के बाद आपका दाल आ गया, दाल का फिर पैसा आता है, दाल का पैसा जब शुरू हो जाता है तो फिर हम लोग फिर जो तीसरा पॉइंट है, पुराने धान को जो है कुटाई करते हैं और उसका पैकेजिंग करके बाहर भेजते हैं, फिर ये चलता है 6 माह। 6 माह के बाद पुनः आपका क्या होता है, धान पुनः आ जाता है, पुनः आपका सिस्टम चलता रहेगा, तो आपको पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। हमेशा एक सिस्टम चलता रहता है जो साल भर किसान के पास पैसा आता रहता है। एक तो आपको मैं दूध का बोला, डेली पैसा है, गाय का गौमूत्र बनाते हैं, ब्रह्मास्त्र बनाते हैं, निमास्त्र बनाते हैं, सभी दवाई बनाते हैं, कोई भी खर्च न यूरिया खरीदने की, न DAP खरीदने की जरूरत है, कुछ नहीं, सारे चीज़ों को हम धान में डालते हैं और उसमें ऑर्गेनिक उत्पादन करते हैं, जिससे एक एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाता है और सारे मार्केट में चले जाते हैं चावल जो।
1: जितने सारा आप खेती बारे के बताए और इतने सारा जैविक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, जैविक की ओर आप लोग ध्यान दे रहे हैं, ये सब की जानकारी आप लोग कहाँ से मिलती है?
0: ये सारी चीज़ें वो पहले तो परंपरागत तरीके से कर रहे थे, बाकी चीज हमारे पूरा फैमिली बैठ कर इस साल क्या करना है, डेली रात को ये पूरा परिवार बैठ जाते हैं, कल क्या करना है, कैसा करना है, कैसे सेटिंग करना है, ये सारी चीज़ों को एक सेटिंग सेटेड कार्यक्रम में चलाते हैं। सामूहिक खेती और इंटीग्रेटेड फार्मिंग किया जाए तो किसी भी परिवार को आगे
1: ले जाने कोई नहीं रोक सकता,
0: जाने की शहर में जाने की जरूरत नहीं है, इसकी गारंटी है।
1: सही बात है, प्लान की समस्या भी रुक जाएगी,
0: प्लान की समस्या रुक जाएगी। और मैं देखा तो झारखंड में तो बहुत ज्यादा उसकी संभावना है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग का बहुत ज्यादा संभावना है, मैं क्योंकि घुमा।
1: अच्छा, अंत में हमारे किसान भाई को क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: मैं किसान भाई को ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप लागत कम कीजिए, लागत खेती में कम कीजिए, उत्पादन थोड़ा सा कम हो, और रासायनिक खेती का अंधाधुन और दवाई का प्रयोग मत कीजिए। अपना स्वास्थ्य को भी बनाइए और भविष्य में अपने बच्चों के भी स्वास्थ्य को ध्यान में रखिए, क्योंकि धरती माता को जितना ज़्यादा बर्बाद करेंगे और उतना ज़्यादा बर्बाद हो जाएगी, उतना ज़्यादा रोएगी, तो हमको तकलीफ होगा। तो भगवान आपको जमीन दिए हैं ब्रह्मांड, तो उसको बर्बाद करके ऊपर जाना नहीं है, उसको संजो कर बढ़िया करके रख कर जाना है।
1: तो आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार,
0: नमस्कार सभी को भी, नमस्कार।
2: तो जुगनी बहन ये रहे किसान भाई अंतर्यामी प्रधान और देखो एक संगे किसान वाणी कार्यक्रम कर बेरा सिरायला बता देवीला। कार्यक्रम कर प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार
3: और प्रस्तुति रहे संजीव कुमार लालकेर।

0: पढ़ल परिवार सुखी परिवार।
1: एक धाव फिर से सुनवैया भाई बहन मनकर कार्यक्रम में स्वागत है। संध्या बहन
0: और जुगनी बहन कर जोहार। और कहो संध्या बहन, कैसन है हाल समाचार और बटटे?
1: एकदम नगद है जुगनी बहन,
0: और नगदे नगद रह चाहिए। और आसरा करेला की सुनवाइया भाई बहन बनकर भी हाल खबर सब नगदे हुई है कि नहीं?
1: हाँ हाँ।
0: और देखो हाल खबर नगद रहेला तो काम धंधा में भी बेस मन लगेला।
1: हाँ।
0: और काम धंधा बेस होवेला तो परिवार में खुशी भी बनल रहेला है कि नहीं?
1: सही कहा थी। और कखनो अगर जीव बगड़ जाएला तो हमरे कर अड़ोसी पड़ोसी जे रहे ना ओहे मन हमरे के संग देवे ना है नी, तो हमरे मन के आपस में मेल प्रेम से रहे है
0: एकदम नगद गोरकाली के हमरे की एकजुट हो के रह के। देखो अगर कोनो काम के हमरे अगर बे कोनो काम धंधा करत थी और कोनो काम के हमरे मिलजुल के करत थी तो वो काम का तेर होलक और कैसे होलक हमरे के बुझावे नहीं करेला है कि नहीं? और काम भी कितना बढ़िया तरीका से हो जाला और बुझावो नहीं करेला, मनो नहीं थकेला है कि नहीं? और काम करे के लिए भी कितना रिझ लागेला। तो हमरे के एकता बनाए के रखे के तर से हमरे कर विकास भी बढ़िया हुई और बढ़िया काम धंधा भी हुए और हमरे आगे बढ़ सकेला। कोनो काम के हमरे अगर मिलजुल के करब तो कोनो काम आसानी से हो जाएला, बढ़िया नगद से हो जाएला। तो हमरे की एकजुट हो के रहे के, अगर पड़ोसी मन है तो पड़ोसी मन से भी बढ़िया से रहे के, समाज में हमरे की एकता बनाए के रखे के है कि नहीं?
1: सही कहा थी। जिंदगी है बहन तो केकर से कखन का जरूरत पड़ जाए पता भी नहीं चली, सेले हमरे के एक दूसरे कर संग
0: भेदभाव न के करे,
1: मेल जोल से रहे।
0: हाँ, भेदभाव न के करे। देखो धर्म कर लेके जाति जाति कर लेके हमरे के भेदभाव न के करे, हमरे के एकजुट हो के काम करब, एकजुट हो के रहब, प्रेम भावना से रहब तो हमरे कर विकास बढ़िया से हो सकेला।
1: हाँ हाँ।
0: और आगे बढ़ब हमरे तो मिलजुल के रहब है कि नहीं?
1: हाँ हाँ। और ई के देखे मने घर कर छुआ पुता मन में बढ़िया संस्कार भेटाई।
0: और देखो इक्के देख के छुआ पुता मन भी बढ़िया सीख पाए और उमन आगे बढ़ा आगे बढ़ पाए, तो जैसन उमन के संस्कार मिली वैसने छुआ मने काम कर पाए। तो छुआ मन के अगर अच्छा बनाए के तो सामाजिक एकता बनाए के रखे के, और छुआ मन के अपन जिम्मेदारी भी देवे के है कि नहीं?
1: सही,
0: ताकि छुआ मन आगे जाए के बढ़िया काम कर पाए, माए बाप का नाम रोशन कर पाए।
1: हाँ बहन, अब गोइठ बात तो हमरे मन करते रह तो और करेला नागपुरी लोकगीत कर संगे है नी,
0: तो और एक बात है तो चलो नागपुरी लोकगीत कर संगे रीज करेला। कलाकार है सीमा कुमारी और उकर संगी मन।
1: हाँ

0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
3: PLI है ना?
4: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-17-18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछे। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16-18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ। झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
3: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: कृषि व्यापार मेला 2026 ये उत्सव नहीं, महा उत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत।
5: भाइयों एवं बहनों जोहार, झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद, जोहार।
4: इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखें झारखंड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026।
6: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: तो बहन, अब हिंदी में एगो वार्ता सुनेला। मोबाइल कर बाढ़ल दुनिया और उकर का दुष्प्रभाव है, इकर बारे बतात हैं तारा प्रजापति।
8: मोबाइल ने संचार और ज्ञान की दुनिया को हमारी उंगलियों पर ला दिया है, जिससे जीवन बेहद आसान हो गया है। आज के युग में फोन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। ये सिर्फ एक संचार का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारी दिनचर्या को आसान और सुविधाजनक बनाता है। पहले हमें किसी से भी बात करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब हम एक क्लिक में दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हमें एक क्लिक में मिल रही है। और एक बात ये भी है कि मोबाइल का अत्यधिक उपयोग कब सामने आया? मोबाइल का अत्यधिक उपयोग आया 2020 लॉकडाउन। ये वो समय था जब लोग लॉकडाउन के कारण घरों में रहने के लिए मजबूर हो गए थे। अनिश्चित लंबे समय तक स्कूल बंद रहने के कारण ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा अपनाई गई और जिन अभिभावकों के

0: पास मोबाइल नहीं थे, उन्हें भी अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा के कारण मोबाइल खरीदना पड़ा और ऑनलाइन क्लासेस शुरू करवानी पड़ी। तो मोबाइल एक सुविधा भी बनी और अभिशाप भी बना, बच्चों द्वारा मोबाइल का अत्यधिक उपयोग होना, और ये धीरे धीरे बच्चों में एक लत की तरह बढ़ता चला गया। जहाँ मोबाइल बड़ों में मनोरंजन का साधन बना है, तो कहीं कमाई का माध्यम, जो चलन आज समाज में तेजी से बढ़ रहा है। आज हर दूसरे व्यक्ति के पास एंड्रॉइड फ़ोन है, जिसका इस्तेमाल हर क्षेत्र में अलग अलग है। जैसे व्यापार क्षेत्र में बिजनेस मार्केटिंग, पेमेंट सुविधा, बैंकिंग सुविधा, मोबाइल के माध्यम से बच्चों के स्कूल कॉलेज के अपडेट आसानी से जन समाज तक उपलब्ध हैं। रोजगार वाले लोगों के लिए मोबाइल का उपयोग अनिवार्य है, तो वहीं बेरोजगार वाले लोगों के लिए मोबाइल का उपयोग कमाई का जरिया बनता जा रहा है। आज की हमारी नई जनरेशन लाइफ में एक शॉर्टकट ढूंढते हुए हर तीसरा व्यक्ति ब्लॉगिंग कर रहा है, यूट्यूब में वीडियो बना रहा है, जिसका प्रभाव हर वर्ग के लोगों और ख़ास करके उसका प्रभाव बच्चों में गंभीर रूप से बढ़ रहा है। उनके सोच बदल रहे हैं। आज की जनरेशन को लगता है यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म में सक्सेस करना ही कमाई का सोर्स है। पढ़ाई का रास्ता मुश्किल और मोबाइल वीडियो बनाना आसान लगता जा रहा है। आज हमारे समाज में मोबाइल का अत्यधिक उपयोग का दुष्प्रभाव बहुत तेज़ी से हो रहा है, जिसके कारण कई गंभीर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक समस्याएं सामने आ रही हैं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। पहला, एकाग्रता में कमी। लगातार मोबाइल इस्तेमाल करने से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, अटेंशन कम होती है, जिससे पढ़ाई और काम में दिक्कत आती है। दूसरा, तनाव और डिप्रेशन। सोशल मीडिया पर खुद की तुलना दूसरों से करने और लगातार नकारात्मक खबरों के संपर्क में रहने से मानसिक तनाव और अवसाद बढ़ता है। अवसाद का मतलब डिप्रेशन। और इस बढ़ते तनाव को नोमोफोबिया, नोमोफोबिया का मतलब है नो फोन फोबिया कहते हैं। और इसके लक्षण हैं मोबाइल फ़ोन खो जाना या पास ना होने का अजीबोगरीब डर आज युवाओं में तेजी से पनप रहा है। तीसरा, शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। अनिद्रा, स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी, ब्लू लाइट, नींद लाने वाले हार्मोन को स्राव को रोकती है, जिससे रात को देर तक नींद नहीं आती। और चौथा, लगातार झुककर मोबाइल देखने से गर्दन और रीढ़ की हड्डी में गंभीर दर्द और अकड़न की समस्या हो रही है। पांचवा, आँखों की समस्याएं। कम रोशनी में लगातार स्क्रीन देखने से आँखों में सूखापन, ड्राई आईज, जलन और धुंधलेपन की शिकायत आम हो गई है। और अब तो पारिवारिक दूरी, ये भी प्रभाव मोबाइल के कारण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लोग परिवार में एक साथ तो रहते हैं, एक साथ तो बैठते हैं, फिर भी मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, जिससे आपसी संवाद और पारिवारिक रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं। छठा, घर की माताएं और बहनें, घर के बड़े अभिभावक काम में व्यस्त रहने के कारण अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, जिससे उनकी परेशानियाँ तो कम हो जाती हैं पर बच्चों को मोबाइल की लत लग जाती है। और इसके गंभीर दुष्प्रभाव भी देखने को मिलता है। जैसे बच्चे खाना खाते समय मोबाइल मांगते हैं, सोते समय मोबाइल की मांग करते हैं, और मोबाइल ना देने पर गुस्सा, रोना, चिड़चिड़ापन, ये सारे लक्षण आपको देखने को मिल सकता है। सातवां, मानसिक दुष्प्रभाव। ये दुष्प्रभाव ऐसा है जिसके लक्षण आप और हम लोगों के बीच में भी देखने को मिलेगा। मोबाइल का उपयोग बंद करें।
1: तो एखन हमरे मने जानकारी कर ली मोबाइल कर बढ़ते दुनिया में ओकर का दुष्प्रभाव पड़ेला, सिकर बारे में बतात रहे तारा प्रजापति।
2: तो जुगनी बहन इकरे संगे हमारी दुनिया कार्यक्रम कर बेरा सिरायला बताया देवीला कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे संजीव कुमार लाल कर।
1: तो कार्यक्रम सुनवाइया भाई बहन मन रौर मन कर संगे जुगनी बहन कर संगे
2: संध्या बहन के विदा देव
1: जोहार।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा ग्रामीण प्रसारण हमारी दुनिया, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
6: PLI है ना?
7: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।

0: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में खेती अब बनेगी स्मार्ट। आ रहा है झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16, 17, 18 जून।
1: यहां मिलेगा लाइव टेक्नोलॉजी डेमो, कृषि मशीनों का पावर शो, स्टार्टअप आइडियाज, किसान सरकार सीधा संवाद, सेल्फी पॉइंट्स, झारखंडी स्वाद वाला फूड कोर्ट, कल्चरल नाइट्स हर शाम।
0: डे वन ग्रैंड ओपनिंग, सम्मान और सांस्कृतिक जलवा। डे टू एक्सपर्ट से सीखे सवाल पूछें। डे थ्री स्टार्टअप शोकेस और भविष्य की खेती लाइव।
1: खेती अब बनेगी स्मार्ट, झारखंड टेक्स द स्टार्ट। किसान हो या युवा, एक्सपर्ट हो या उद्यमी, ये मेला है सबके लिए।
0: झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 मोराबादी ग्राउंड रांची 16 से 18 जून।
1: और याद रखिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ। झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
3: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: कृषि व्यापार मेला 2026 ये उत्सव नहीं, महाउत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत।
5: भाइयों बहनों जोहार, झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद, जोहार।
4: इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखें झारखंड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026।
6: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित। झामुमो के वैद्यनाथ राम और एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी ने दर्ज की शानदार जीत। प्रधानमंत्री कल 2400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का करेंगे वितरण। रांची और बोकारो में भी आयोजित होंगे कार्यक्रम। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और सांसद ढुल्लू महतो होंगे मुख्य अतिथि। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के स्टोन क्रशर और पत्थर खनन पर रोक के आदेश को रखा बरकरार। झारखंड में जंगलों और प्राकृतिक इकोसिस्टम को बचाने की जरूरत पर दिया जोर। राज्य के 17 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने रांची, हजारीबाग और धनबाद सहित कई इलाकों में आज और कल वज्रपात और तेज आंधी की दी चेतावनी। और FIH महिला नेशंस कप में भारतीय टीम ने उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। झारखंड की दीपिका सोरेंग ने दागा शानदार गोल। और अब समाचार विस्तार से। राज्य की 2 राज्यसभा सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार वैद्यनाथ राम और एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी ने जीत दर्ज कर ली है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। इस मतगणना में सबसे चौंकाने वाला मोड़ 3 वोटों का अमान्य होना रहा। अंतिम परिणामों के अनुसार विजयी प्रत्याशी वैद्यनाथ राम को 31 वोट और परिमल नाथवाणी को 28 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के प्रणव झा को केवल 19 मतों से संतोष करना पड़ा। परिमल नाथवाणी की जीत पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड से 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके नाथवाणी के अनुभव का लाभ राज्य को फिर मिलेगा।
8: एनडीए गठबंधन के सभी नेताओं को और साथ ही तमाम 81 विधायकों को भी हमारे ओर से बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। तो इसे आप समझ सकते हैं झारखंड के जो मतदाता है, खास करके हमारे जो विधायक, काफी सुलझे हुए हैं, काफी समझदार हैं। परिमल नथवानी ने 8 से 14 और 14 से उनका कामों को लोग देख चुके हैं, उनको लोग नजदीक से देखे थे और उन्होंने भी झारखंड को देखा है और झारखंड के लोगों से भी उनका अच्छा परिचय है।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे, जिससे देश भर के 15 लाख से अधिक लाभार्थी सीधे लाभान्वित होंगे। झारखंड में भी इसके प्रादेशिक कार्यक्रमों की भव्य तैयारी है। रांची के डोरंडा स्थित शौर्य सभागार में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मुख्य अतिथि होंगे, जबकि बोकारो स्टील लिमिटेड के सभागार में होने वाले कार्यक्रम में सांसद दुल्लू महतो शिरकत करेंगे। गुमला के केंद्रीय प्रभारी अधिकारी अमित सतीजा ने आकांक्षी प्रखंड डुमरी का दौरा कर समाहरणालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने जिले में गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण को शत प्रतिशत करने और डॉक्टरों की कमी दूर करने के कड़े निर्देश दिए। बच्चों में कुपोषण पर चिंता जताते हुए उन्होंने रेडी टू ईट पोषण वितरण प्रणाली को तुरंत दुरुस्त करने को कहा।
9: जो हम लोगों ने कार्य किया है नीति आयोग के तत्वाधान और जिला प्रशासन के नेतृत्व में, उसमें जो गांव वालों के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं, जिसमें कि बकरी पालन और मशरूम की खेती और एक जो कॉम्प्रिहेंसिव विकास के तौर पे जो पहल स्कीम है, उसमें गांव वालों को देख के बहुत अच्छा लगा। गाँव वालों को बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले महीनों में इसका जो रिज़ल्ट है वो ज़मीनी स्तर पर देखने को मिलेगा।
7: पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच केंद्र सरकार ने देशवासियों को आश्वस्त किया है कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं, जिससे पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि पिछले 3 दिनों में देश भर में 1,47,00,000 घरेलू LPG सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं।
10: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। LPG बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले 3 दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं और मार्च से लेकर अब तक 10.02 लाख PNG कनेक्शंस गैसिफाई किए गए हैं। 3.22 लाख कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है।
7: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में जंगलों और प्राकृतिक इकोसिस्टम को बचाने की जरूरत पर विशेष जोर दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने जंगल की सीमाओं के पास पत्थर खनन और स्टोन क्रशर पर रोक लगाने के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी चुनौती याचिका वापस ले ली है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
2: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का भी मान।
3: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: कृषि व्यापार मेला 2026 ये उत्सव नहीं, महाउत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत।
5: भाइयों एवं बहनों, जोहार। झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद। जोहार।
4: इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखें झारखंड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर। 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026।
6: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: प्रादेशिक समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। राजधानी रांची के आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंकने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 संदिग्ध को हिरासत में लिया है। पुलिस ऑपरेशन के दौरान एक संदिग्ध घायल हुआ है, जिसका फिलहाल अस्पताल में उपचार चल रहा है। सिटी एसपी पारस राणा ने इसकी पुष्टि की है।
11: रांची पुलिस के द्वारा जो मुख्य 3 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया थी, और जब थाना में उनको पूछताछ के लिए रखा गया था तो उसी क्रम में जो एक आरोपी है जिसने बाथरूम जाने का बहाना किया और फरार हो गया था, और उसके पश्चात उसको दोबारा गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उसने दूसरी बार फिर से उस भागने का प्रयास किया। इसमें इस बार उसने पुलिस का जो वेपन था उसको भी छीन कर भागने का प्रयास किया, और उसी प्रयास में जब पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई तो उसके द्वारा भी 2 से 3 राउंड फायर किए गए हैं। पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई है, उसमें उसके पैर में गोली लगी है।
7: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सहायक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर सदर अनुमंडल दंडाधिकारी कुमार रजत ने इरबा स्थित आईक्यूब डिजिटल परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह निषेधाज्ञा 22 से 24 जून तक जारी रहेगी। भाकपा के झारखंड राज्य परिषद सदस्य और गुड्डा जिले के वरिष्ठ मजदूर नेता कॉमरेड रामस्वरूप पासवान का कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद आज निधन हो गया। उनके निधन पर भाकपा झारखंड के राज्य परिषद ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए पार्टी कार्यालय में झंडा झुकाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर कोडरमा जिले में तैयारियां जोरों पर है। इन तैयारियों के बीच झुमरी तलैया के रहने वाले एक दंपति की अनूठी पहल क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रदीप सुमन और सुषमा सुमन नामक यह दंपति पिछले 22 वर्षों से लगातार योग के प्रचार प्रसार में जुटे हैं। इस दंपति ने अब तक क्षेत्र में 10,000 से अधिक योग प्रशिक्षक तैयार किए हैं। योगी सुषमा सुमन ने बताया कि वे विशेष रूप से बुजुर्गों और महिलाओं को नियमित योगाभ्यास करा रही हैं।
12: एक ऐसा समय था कि जब कोई योग के बारे में जानता भी नहीं था, और धीरे धीरे प्रचार प्रसार करते आज पूरे कोडरमा जिला में लगभग 10,000 से ज्यादा योग शिक्षक भी तैयार हो गए हैं, जो जगह जगह योग क्लास लगाते हैं। लगभग 22 वर्ष से मोहल्ले मोहल्ले में जा करके प्रतिदिन योग सिखा रही हूँ।
7: और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत 17 जिलों में आज और कल भारी बारिश, तेज आंधी और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद और देवघर जैसे जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने की प्रबल आशंका व्यक्त की है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने उरुग्वे को 3-2 से हराकर नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इस मुकाबले में झारखंड की दीपिका सोरेंग ने शानदार गोल दागा। दूसरी ओर राज्य की उभरती साइकिलिस्ट सरिता कुमारी का चयन वर्ल्ड स्पोर्ट्स एक्सपोजर टूर के लिए भारतीय टीम में हुआ है। वह 1 महीने तक यूरोपियन सर्किट की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित। झामुमो के वैद्यनाथ राम और एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी ने दर्ज की शानदार जीत। प्रधानमंत्री कल 2400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का करेंगे वितरण। रांची और बोकारो में भी आयोजित होंगे कार्यक्रम। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और सांसद ढुल्लू महतो होंगे मुख्य अतिथि। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के स्टोन क्रशर और पत्थर खनन पर रोक के आदेश को रखा बरकरार। झारखंड में जंगलों और प्राकृतिक इकोसिस्टम को बचाने की जरूरत पर दिया विशेष जोर। राज्य के 17 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने रांची, हजारीबाग और धनबाद सहित कई इलाकों में आज और कल वज्रपात और तेज आंधी की चेतावनी जारी की। और FIH महिला नेशंस कप में भारतीय टीम ने उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। झारखंड की दीपिका सोरेंग ने दागा शानदार गोल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
13: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे जामताड़ा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे जामताड़ा संवाददाता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्षों के कार्यकाल गरीब कल्याण, नारी सशक्तिकरण, स्वावलंबन, किसान हित, सेवा, सुशासन सहित आम नागरिकों के सर्वांगीण विकास को समर्पित रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रधानमंत्री के 12 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में भाजपा के जिला महामंत्री अभय कुमार सिंह ने कहा कि
2: 12 साल बेमिसाल विकास के विश्वास के साथ जनकल्याण के लिए रहा, खास करके किसानों के लिए उन्होंने जो काम किए बहुत ही सराहनीय है। हर एक किसान को साल में 6,000 तीन किस्त में देकर उन्नत बीज, उन्नत खाद के माध्यम से कम जगह में अच्छे से अधिक फसल उपजाने का काम आज किसान कर रहे हैं, जिसमें किसान काफी खुशहाल है।
1: जामताड़ा जिला प्रशासन के द्वारा गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन की पहल पर शनिवार को समाहरणालय परिसर स्थित SGSY सभागार में समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में झारखंड राज्य निर्माण में जिले के आंदोलनकारियों को झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने प्रशस्ति पत्र एवं शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि
3: इनका मूल शिल्पीकार और इनका सपना देखने वाला यही आंदोलनकारी लोग थे, जिन्होंने अपने घर परिवार अपना जीवन का परवाह किए बगैर आंदोलन में कूदे थे।
1: जिला विधिक सेवा प्राधिकार की पहल पर जामताड़ा के उदलबनी स्थित वृद्धा आश्रम में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण ने बुजुर्गों की समस्याएं सुनी और पंजीकृत करते हुए निदान की दिशा में पहल की। इस क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव पवन कुमार ने कहा कि
4: कार्यक्रम के तहत सबसे पहले मेडिकल जांच कराया गया, जिसमें सभी को दवाई दी गई तथा नेत्र का भी जांच किया जा रहा है, जिसको मोतियाबिंद होगा उसका ऑपरेशन किया जाएगा। इसके अलावा जो है सभी का आधार कार्ड जो है वो अपडेट किया गया, और जिसका आधार कार्ड नहीं था आधार कार्ड बनाया गया, जिनको कानूनी संबंधी जानकारी दी गई और एक दो इसमें थे जो कानूनी सहायता था उनको पैनल लॉयर के अधिवक्ता को दिया गया।
1: जामताड़ा जिले में राजनैतिक एवं सामाजिक संगठनों के द्वारा जागरूकता अभियान चलाकर SIR की जानकारी देकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। जिले के कुंडहित प्रखंड में 6 जून को आयोजित शिविर में स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो ने SIR की विस्तृत जानकारियां दी और अभियान को सफल बनाने की अपील की, ताकि एक भी योग्य मतदाता मताधिकार से वंचित रहने ना पाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि
5: SIR को लेकर के तत्पर है वो। SIR का जो सूची आया है इसमें आत्मैप नाम जो है, उस आत्मैप नाम में अधिकांश हम लोगों का समर्थक हम लोगों का अनुयायी है, सिखा चाहता है, हम लोगों का आदमी सीधा सपन्दा है, तमाम विषयों के बारे में उतना सचेतन नहीं रहता है, इसलिए हमारा संगठन तत्पर है कि हम लोगों का कम से कम लोगों का नाम ना छुपे।
1: प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना जामताड़ा जिले के गरीब लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। जन औषधि केंद्र से जिलेवासी सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां प्राप्त कर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। इसके लिए लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार प्रकट किया है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा।
0: अभी आप सुन रहे थे जामताड़ा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

0: आप सुन रहे थे जिले में आजकल, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा दैनिक प्रसारण आदिवासी अखड़ा। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं सलमा टुडू और राजकिशोर मुर्मू। प्रस्तुति है प्रभु शरण की।
1: आदिवासी अखड़ा संतालीते अंजोम सानाम कोगे इन सलमा टुडू
2: आर इन राजकिशोर मुर्मू
1: सेत खोन आयो बाबा बोहा मिश्रा को अलिया मानोद गोड जोहार आर हुडिंग को दो जाओ लेकागे दुलर थूम आसायलिंग अपे सानाम को नापाय रेगे मेना पे ताबोना आर सानाम कोगे नापाय रेगे बोन ताहेन मा तेहेन हो जाओ सर्दी महा लेकागे मौज मौज होड सेरेंज को बोन आंजोमा आर नुआ को साउते गे लगतियान से बाडाय जों कथा होलिंग लई आंजोमा बोना आर नुआ को ताला रेगे मिटंग गालोच हो बोन आंजोमा तेहेन्या बाडाय जों कथा दो हुयुक कना दा बांचाव रेया मोहोत आर अबुआ आवास योजना बाबत तोबे सानाम को गे बोन बाडाया जे दा दो अबु लगिन तिना लगतियाना कना बढ़ती कायते नितोगा रूठी सितुंग रे दो ओनारना मोहोत बढ़ती बोन बाडाय दाड़िया मासे तोबे राजकिशोर लय आंजोमा बोन में आबो दो दा चेत चेत करे बोन व्यवहारेट कना
2: होय दा दो अबु मनमी सुमुंग दो बांग मेनखान नोवा जगत रन सनाम जीव जियली साव सावते दारे नड़ी लगिन हो लगतियान गया दा बेगोर अबुआ जीवी बंचाव दो अहोवान गया अबुआ जोम लगी दका हों बेगोर दाते बांग बिना उना सावते उम नड़का तिकी सोबोत सनामा रगी दा रेना बेभार दो मेना गया नितो जेलका अड़ी गी रूठी सितुं कना नुंकन ओक्तो रे अबुआ होड़मो नपाय दोहय लगी दा न्यू हुयुआ होड़मो रे दा कमो ते आयमा होड़ा जीवी हों चला कना उनाते दा बंचाव दोह दो अड़ी लगती कना चिदा जे दा गे तबु अबुआ जीवी कना
1: होय नुआ दो अड़ी सरी कथा कन गया जे दा गे अबुआ जीवी दो कना चिदा जे अबो बन बाडाय गया चसी को हो दा बेगोर ओहो को चास किया से चे आर चास गे जुदी बांग हुयु आ एनखान जो मबन चिकते ओका ओक्तो रे नोंका हो नेल न्यामो आ जे चसी कुआ बद रे हुडू दलाय दलाय गेले को आ आर दा बांग ते सनाम गो चबा नोंकान दुख चसी को बांग को नेल सहाते अकुआ जीवी हो को नष्टय ताकुआ तबे नुआ बाबत लाहासेत आर हबन गापाल मारावा निद्दो मिटांग होड़ सेरेन बन आंजोमा सेरेन्या कादा को ग्रुप सोरेन आर साउतेन को

0: ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱟᱜ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱟᱜ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ
1: तेजोमयं मस्तिष्कं सर्वं एतत् स्वास्थ्यं विना निष्फलं भवति अतः अना

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। आइए सबसे पहले सुनते हैं फिल्म सिलसिला का ये गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार तथा साथियों की आवाज़ों में। लिखा है इसे जावेद अख्तर ने और संगीत से सजाया है शिव हरी ने।

0: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
1: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

श्रोताओं, हमें खेद है समय अभाव के कारण इस गीत को आप पूरा नहीं सुन पाए। आप सुन रहे थे फिल्म कभी कभी का ये गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। और इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। सुनिए विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
2: नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर भारत में बीते 12 वर्षों में जो विकास यात्रा का हमने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दौर देखा है, नए कीर्तिमान हमने देखे हैं, इस संबंध में आज हम कार्यक्रम में एक खास बातचीत आपके लिए लाए हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बीते 12 वर्षों में जो पूर्वोत्तर भारत की बदलती हुई तस्वीर को हमने देखा है, इस बदलती पिक्चर को आप कैसे देखते हैं और किस तरह से ये संभव हो पाया है, किन कदमों की बदौलत ही हो पाया है?
3: तो पूर्वोत्तर भारत में जो विकास हुआ है उसके मुख्यतः जो कारण है वो सस्टेन्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट, दूसरा टारगेटेड प्रोग्राम डिलीवरी और तीसरा स्ट्रांग इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन। और ये सब जो कार्य हुआ है इसमें कोई एक सिंगल स्कीम जो पूरी कहानी को नहीं बताती है, ये मल्टीपल इनिशिएटिव्स का एक साथ समावेश होना, उनका कॉन्वर्जेंस होना जो ये चेंज दिखाई पड़ता है उसको दर्शित करता है। 10% ग्रॉस बजटरी सपोर्ट मैकेनिज्म जो 55 भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस वर्ष लगभग 1,00,000 करोड़ नॉर्थ ईस्ट में इन मिनिस्ट्रीज ने अपना व्यय किया है। साथ ही साथ ऐसे कई फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, खासतौर पे नेशनल हाईवेज जहां पर 50,000 करोड़, एसएआरडीपी नॉर्थ ईस्ट के तहत लगभग 4,800 किलोमीटर के कार्य पूरे हुए। साथ ही साथ भारतमाला परियोजना में 3,000 किलोमीटर के काम लगभग 70,000 करोड़ से की लागत में पूरे हुए। इन सभी कार्यक्रमों से रेल, रोड्स, एयरवेज, इनमें उल्लेखनीय इम्प्रूवमेंट आया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जहां तक हमारी कनेक्टिविटी का सवाल है, कई कैपिटल्स अब कनेक्ट हो गई हैं। साथ ही साथ 17 एयरपोर्ट्स नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट जब मैं कहता हूं तो मैं सिक्किम को भी उसमें जोड़ रहा हूं, अष्टलक्ष्मी में राज्यों में 17 एयरपोर्ट्स फंक्शनल हैं, उड़ान के तहत 90 रूट्स ऑपरेशनल हैं और कृषि उड़ान स्कीम के तहत एयर फ्रेट चैनल को भी इम्प्लीमेंट किया गया है जिसके द्वारा पेरिशेबल एग्री प्रोड्यूस को फार्मर्स की इनकम्स बढ़ाने में उपयोग में लिया जा रहा है।
2: एक बहुत महत्वपूर्ण योजना रही है जो पूर्वोत्तर भारत के विकास में एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट में पीएम डिवाइन, तो इस योजना के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, कैसे इस योजना ने पूर्वोत्तर भारत के विकास को एक नई दिशा दिखाई है और कैसे ये योजना काम कर रही है?
3: पीएम डिवाइन स्कीम जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये हाल ही में लॉन्च की गई है पिछली फाइनेंस कमीशन साइकिल में। बड़े प्रोजेक्ट्स जिनकी लागत समझ लीजिए एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की 50 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ से 500 करोड़ तक के बीच के बड़े प्रोजेक्ट्स, ताकि जो बड़ी गैप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की उनको पूरी की जा सके, उस पर्पज से पीएम डिवाइन को लॉन्च किया गया। और इस योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स जो हैं वो राज्य सरकार के साथ में कंसल्टेशन करके लॉन्च किए जाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे उनकी बहुत डिटेल्ड मॉनिटरिंग करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं विभिन्न सेक्टर्स में रहें, जैसे हेल्थ केयर, टूरिज्म, एजुकेशन, आईटी पार्क्स, रूरल लाइवलीहुड, वैल्यू चेन प्रोजेक्ट्स। और इसमें ये कोशिश की जाती है कि सारे प्रोजेक्ट्स का साइट सिलेक्शन, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स और टाइमली मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके, ताकि ये प्रोजेक्ट्स अपने डिजाइंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सके।
2: आपने हाल ही में अभी जून की शुरुआत में ही पूर्वोत्तर भारत ने पीएम डिवाइन योजना के तहत सिक्किम का एक दौरा किया था और इसमें एक स्काई वॉक प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी किया था, थोड़ा हमें बताएं हमारे श्रोताओं को कि कैसे ये
3: व्यापक है और उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए भारत सरकार की टूरिज्म मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर भी अपने फंड्स को इस्तेमाल करती है और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में इंप्लीमेंट किए गए हैं। मालेडुंगा में जो ये स्काई वॉक की आप जो बात कर रहे हैं, अपने आप में बहुत ही यूनिक और अनूठा ये एक प्रोजेक्ट है। हाल ही में वहां मैं जब गया था तो मैं आश्चर्यचकित था कि जो न केवल जो स्काई वॉक वहां पे तैयार हो रहा है पर जो ऑलरेडी वहां पर एग्जिस्टिंग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है रोपवे का, वो भी अपने आप में एक बहुत ही अनूठा है। ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज का वहां पर एक क्लिफ के ऊपर वो स्काई वॉक जा रहा है। मुझे लगता है कि विश्व में इतनी ज्यादा लीनियर लेंथ और इतना ज्यादा ऑल्टीट्यूड क्रॉस करने वाली ये रोपवे शायद ही कहीं विश्व में हो। डेफिनेटली ये टॉप 1-3 में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख होगा। और ये सब स्कीम्स इसलिए हैं ताकि वहां पर लोकल जॉब क्रिएशन हो सके, फुटफॉल बढ़ सके, टूरिज्म का बहुत एडवांटेज मिलता है लोकल एम्प्लॉयमेंट और लोकल जॉब क्रिएशन में। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हर जगह पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के द्वारा सिग्नेचर टूरिज्म सर्किट्स भी इम्प्लीमेंट की जा रही है। 2 प्रोजेक्ट्स मेघालय में, सोरा सर्किट और माताबारी सर्किट त्रिपुरा में ऑलरेडी सैंक्शन की गई है, उसके प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। और उन सब प्रोजेक्ट्स से ये कोशिश की जा रही है जो हमारे माननीय मंत्री जी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर में कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले नहीं बन रहा है, जब वो एक पर्यटक अपने फ्लाइट से या ट्रेन से उतरता है तो उसका जो पहला कदम पड़ता है, चाहे एक लोकल टैक्सी हो या लोकल टैक्सी ड्राइवर के साथ में उसका इंटरेक्शन हो, या बाद में होटल में उसकी, चाहे वो 5-स्टार हो या 3-स्टार हो, चाहे वो एक छोटी सी लॉज हो या होम स्टे हो, वहां जो उसका इंटरेक्शन होता है उस इंटरेक्शन में एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर, साथ ही साथ गाइड्स। और इसीलिए ऐसे कई प्रोजेक्ट्स को वहां पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि हमारे सारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में कम्युनिटी लेड लाइवलीहुड को हम प्रमोशन दे सकें, खासतौर पर सस्टेनेबल टूरिज्म को कर सके। और हाल ही में इस बजट में बुद्धिस्ट सर्किट के लिए भी एक घोषणा हुई है, उसके तहत भी आने वाले समय में एक वृहद कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है जिसका इम्प्लीमेंट अष्टलक्ष्मी राज्यों में होगा।
2: आपने जैसे कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में बताया, लेकिन पूर्वोत्तर भारत एक और बीड़ा उठा रहा है, वो है पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, इस दिशा में वो काम कर रहा है। ग्रीन हब के तौर पर बहुत सारे स्टेट्स उभर रहे हैं, सिक्किम के उदाहरण को हमने देखा, कैसे पूर्वोत्तर भारत के राज्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक मिसाल छोड़ रहे हैं और ग्रीन हब के तौर पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर पर कैसे सामने आ रहे हैं।
3: हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों का बहुत योगदान है, ना केवल भारत के लिए, मैं तो कहूंगा पूरे विश्व के लिए, कि जो यहाँ पर ट्रेडिशनल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, जो यहाँ की बायोडायवर्सिटी है, जो यहाँ की ऑर्गेनिक फार्मिंग की टेक्निक्स हैं, यहाँ पर जो कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, यहाँ पर जो ओवरऑल एक इको टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब मॉडल्स हमारे सारे ग्रीन मॉडल्स हैं। और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जब ये यूएसपी डेवलपमेंट का हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें जो यहाँ की प्रीमियम वेराइटीज हैं, चाहे वो लैकाडोंग टर्मेरिक हो मेघालय में, या क्वीन पाइनएप्पल हो त्रिपुरा का, या मिजोरम की जिंजर हो, या ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम हो, ये सारी कार्यक्रम जो है, इनका जो मूलभूत आधार है वो सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। तो ये सारे कार्यक्रम ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि ग्रीन ग्रोथ हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों के लिए नहीं, विश्व के लिए ही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टूवर्डशिप को कंबाइन किया जा सके।
2: आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की और अष्टलक्ष्मी शब्द से हमारे श्रोताओं को बताया, तो हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि सरकार का फोकस है कि पूर्वोत्तर भारत पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट का भी एक बड़ा हब बनेगा, इस दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और पूर्वोत्तर भारत में इस दिशा में काम हो रहा है, तो कैसे आप बताना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज कितना अहम रोल अदा कर रही है पूर्वोत्तर भारत के डेवलपमेंट में, और सरकार इसे कैसे देख रही है?
3: जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नॉर्थ ईस्ट में तैयार हो रहा है, उसी के अनुपात में अब बहुत जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर और बड़ी कंपनीज और छोटी एमएसएमईज भी जाएं और अपना इन्वेस्टमेंट्स करें। बहुत पोटेंशियल है, ना केवल एग्रीकल्चरल वैल्यू एडिशन में, बट टूरिज्म में, साथ ही साथ चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे हाइड्रो पावर हो, हर सेगमेंट में बहुत पोटेंशियल है। तो उसके लिए एक नॉर्थ ईस्ट का इन्वेस्टर समिट लास्ट ईयर हुआ था, लगभग 4.5 लाख करोड़ के कमिटमेंट्स, एमओयूज और लेटर ऑफ इंटेंट उसमें हासिल हुए थे। उन सभी के इम्प्लीमेंटेशन को भी बड़ी बारीकी से राज्यों के साथ में मॉनिटर किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आए और इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकें। कुछ स्टेट्स अपने स्तर पर भी सिंगल विंडो पोर्टल्स इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, उससे भी आने वाले समय में अष्टलक्ष्मी राज्यों को बहुत फायदा होगा।
2: एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है पूर्वोत्तर भारत के विकास में, वो है जो बीते सालों में शांति स्थापित हुई है, प्रॉस्परस एक हमने पूर्वोत्तर भारत को होते हुए देखा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है कि पूर्वोत्तर भारत में जो पहले अशांति और हिंसा थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कैसे गृह मंत्रालय के साथ मिलकर आपके मंत्रालय ने इस पर काम किया है और कैसे जो विवाद थे, जो हिंसा थी, अशांति थी, उसको सुलझाने में बीते सालों में मदद मिली है और कैसे इससे और विकास को तेजी मिल रही है?
3: गृह मंत्रालय ने कोऑर्डिनेट किया है समस्त राज्यों के साथ में, सेंट्रल एजेंसीज के साथ में, और उसी का परिणाम है कि आज शांति है। और उस शांति का जो बेसिस है वो एक सस्टेन्ड पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, डायलॉग्स हैं और खास तौर पे एग्रीमेंट्स हैं। उन एग्रीमेंट्स के टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए डोनर मिनिस्ट्री का बहुत मेजर रोल है। उन डेवलपमेंट पैकेजेस को इम्प्लीमेंट करना जो एग्रीमेंट का पार्ट है, खास तौर पे लाइवलीहुड से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, और ये इंश्योर किया जाए कि सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स उन कम्युनिटीज तक पहुंचे जिन्होंने इस एग्रीमेंट में अपने योगदान दिए हैं। और ये सारे इनिशिएटिव्स हमें हेल्प करेंगे आने वाले समय में वहां पर शांति को बरकरार रखने के लिए और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी नॉर्थ ईस्ट की इन एग्रीमेंट्स के का एक मेजर आउटकम के तौर पर निकलेगा।
2: पहले कभी जो लुक ईस्ट का नजरिया था पूर्वोत्तर भारत का, वो एक्ट ईस्ट में सरकार ने बदला है, तो कैसे स्ट्रेटेजिक तौर पर इसको आप देखते हैं, इस रणनीति को कैसे सरकार पूर्वोत्तर भारत को इस नजरिया

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम।
1: का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 8:45 होने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति

0: सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: द मैसेज आई शेयर देन एट विवाटेक 2021 वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन हेल्प। इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी फ्रॉम क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
1: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
0: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
1: 2026 इज अ स्पेशल ईयर फॉर इंडिया एंड यूरोप। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वी कंक्लूडेड the historic India-EU free trade agreement. This agreement will expand our trade and investment and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
2: सेंट कोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।

0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
2: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
3: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
1: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
4: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
1: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि डॉक्टर श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉक्टर श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खारब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसर और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक बताया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says technology can lead to progress only when it's democratized. Highlights use of technology in India's rapid digital transformation at VivaTech Summit in Paris. Prime Minister also holds discussions with leading French business leaders on investment opportunities and expansion plans in India. Education Minister Dharmendra Pradhan chairs high-level review meeting to assess preparations for NEET UG re-examination scheduled on Sunday. Iranian President Masoud Pezeshkian describes newly signed MOU between Iran and US as a historic document. Ukraine strikes a Moscow oil refinery for the second time within a week, And Meenakshi Hooda advances to quarterfinals of World Boxing Cup 2026 in China. Four Indian boxers to be in quarterfinal action tomorrow. Prime Minister Narendra Modi today projected India as a global hub of innovation and technology while addressing the VivaTech 2026 summit in Paris. The Prime Minister said, technology can lead to progress only when it's democratized. Mr. Modi urged global innovators to work with India and deliver for all.
4: India believes that in this era of disruption, technology must deliver for all. Let us take the example of AI. AI must improve lives, widen access, drive growth, and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision.
3: The Prime Minister highlighted that in the last decade, India has been going through a rapid transformation that is powered by technology.
4: In the last decade, India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms, we are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture, and more.
3: Mr. Modi also held meetings with leading French business leaders to deepen economic and technological cooperation between the two countries. The discussions focused on investment opportunities and expansion plans in India. Talking to Akashwani, CMA CGM Chairman and CEO Rodolphe Sade said, India is rapidly developing as a hub for green shipbuilding.
5: It's a great honor to meet with the Prime Minister to discuss about our development in India. We have been serving this market for many years and we are looking forward to expanding further. We are developing many initiatives, of which the building of 1700 TU container in a shipyard in India. So we look forward to not only building those ships, but eventually building even more.
3: Our correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this report.
6: Addressing the VivaTech Summit in Paris today, the Prime Minister said technology must deliver for all and highlighted India's rapid digital transformation in areas such as financial inclusion, education, healthcare, and agriculture. He noted that UPI now powers nearly half of world's real-time digital transactions and is available in France also. Earlier in the morning, Mr. Modi met top French CEOs, Saint-Gobain, Mistral AI, and CMA CGM leaders, expressed confidence in India's growth prospects and announced plans for greater investments and collaboration in manufacturing, artificial intelligence, and green shipping. The Prime Minister is now attending a grand cultural program, Bonjour Modi, organized by the Indian community at the Sol Pleyel Center in Paris. Mahesh Sopre, Akashwani News, Paris, France.
3: The Ministry of External Affairs today highlighted the key outcomes of Prime Minister Modi's visit to France. Briefing the media in Paris, Foreign Secretary Vikram Misri said the visit focused on three major pillars: trade, technology, and regional and international security. He said India and France jointly launched the Bharat Innovates initiative in Nice, providing a global platform for Indian deep tech startups. More than 120 Indian startups participated in the program. At VivaTech 2026 in Paris, where India was the AI country of focus, the Prime Minister emphasized a human-centric approach to artificial intelligence and the use of technology for inclusive development. Foreign Secretary Misri also noted progress in trade negotiations with the United Kingdom, Canada, the European Union, and the United States. He said discussions at the G7 Outreach Summit focused on maritime security, the safety of seafarers, developments in West Asia, and enhanced international cooperation on health and economic challenges. Union Minister Amit Shah today chaired a series of review meetings in New Delhi and reviewed national roadmap to strengthen cooperative banking, organic products and cooperative exports. During the review of major cooperative banking initiatives, Mr. Shah took stock of the progress of various measures.

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए रोजगार के नए अवसरों को गति देती प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
1: श्रोताओं, पिछले साल केंद्रीय कैबिनेट ने एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी दी थी। देश में रोजगार बढ़ाने की दिशा में ये योजना महत्वपूर्ण योजना के तौर पर उभर कर सामने आई है। श्रम व रोजगार मंत्रालय ने ईपीएफओ के माध्यम से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की थी, जिसे लगभग 1,00,000 रुपए के कुल बजट के परिव्यय से शुरू किया गया है। और इस योजना के तहत लक्ष्य रखा गया है कि देश भर में 2 साल के अंदर करीब 3.5 करोड़ रोजगार पैदा किए जाएं। अगर कहा जाए कि ये एक ऐसी योजना है जिसमें रोजगार देने पर या रोजगार प्राप्त होने पर एक तरह से प्रोत्साहन सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो इस संदर्भ में ये एक बड़ी महत्वपूर्ण इस योजना का तथ्य है। और हम आज कार्यक्रम में इस योजना के संदर्भ में एक विशेष चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि कल एक महत्वपूर्ण दिन है जिसमें पहली बार इस योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की जा रही है। तो आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा, और साथ में हम इस कार्यक्रम में ऐसे लाभार्थियों से जिन्होंने इस योजना का लाभ लिया है, साथ ही जिन कंपनियों ने रोजगार दिया है उनके उन नियोक्ताओं से भी हम कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तो आशुतोष जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। किस तरह से आप देखते हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को, कि 2 वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार को पैदा करने का जो इस योजना के तहत लक्ष्य रखा गया है, कितनी महत्वाकांक्षी योजना है ये?
2: सच्चाई ये है, समाज में इसकी जरूरत थी कि सरकार की ओर से आप ऐसा कुछ करें कि इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इसके लिए आगे बढ़े कि भाई हमें नौकरी देनी है लोगों को। तो उस दिशा में जब ये सरकार ने सोची और बजट में ही इसकी घोषणा हुई थी और उसके लिए फिर पूरी तैयारी हुई, कल पहली बार 2400 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी थी। ये पहली किस्त है क्योंकि अदरवाइज तो ये कुल बजट इसका करीब करीब 1,00,000 करोड़ है, 99 लाख समथिंग कुछ इस तरीके से इसका है। तो वो चीजें पहली किस्त जा रही है। और आपने ये बात जो कही कि आप कुछ ऐसे लाभार्थियों से भी बात करेंगे और कंपनियों से भी बात करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए कि जो औपचारिक नौकरी पाने वाले जो युवा हैं उसके इसमें जो है 2 किस्तों में 15,000 रुपीज तक की कोई प्रोत्साहन राशि दी जाती है, वो दी जाएगी। और इससे जाहिर तौर पर कंपनियों को भी एक प्रोत्साहन मिलता है कि चलिए एक असिस्टेंट सरकार की ओर से मिला, हम लें, उनको भी जरूरत है। देखिए आज के दिन क्या है, अब जब फिर से वर्ल्ड ओपन अप होने वाला है, बहुत अच्छी बात हो गई कि वेस्ट एशिया क्राइसिस भी खत्म हो गया, अभी देखिए एक बार भी बहुत तेजी से काम भी बढ़ेंगे, कंपनियों के लिए भी बहुत काम आने वाला है हर क्षेत्र में, उसमें सरकार की ओर से ये मदद भी जब जाएगी तो और एक अच्छा माहौल बनेगा
1: निश्चित तौर पर। और इससे पहले कि हम एक लाभार्थी को जोड़ें, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस योजना में जो रोजगार पाने वाले की मासिक अधिकतम जो सैलरी है वो 1,00,000 तक रखी गई है, यानी हम देखें तो इस योजना के तहत रोजगार पाने वाला एक बड़ा मध्य वर्ग भी स्थापित होने जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? जिस तरह से इसमें जो सैलरी का प्रावधान रखा गया है कि जो ईपीएफओ रजिस्टर्ड कंपनी में 1,00,000 रुपए तक की मासिक सैलरी या वेतन पाने वाला कोई भी व्यक्ति है उसको ये लाभ मिलने वाला है
2: कि 1,00,000 तक की किसी को नौकरी मिल रही है, बहुत ही प्रतिष्ठित माना जाता है।
1: बिल्कुल।
2: दूसरी तरफ देखिए कि इस 1,00,000 से जोड़ते हुए सरकार ने अभी कुछ दिन पहले ही बजट में 12,00,000 रुपए तक के ये जो है सो टैक्स फ्री
1: किया था। बिल्कुल,
2: ये देखिए ये दोनों चीजें जोड़ती हैं कि 1,00,000 रुपए वेतन पाने वाला एक युवा जिसकी कि समाज में एक प्रतिष्ठा होगी, लेकिन जिस तरीके से समाज बढ़ रहा है, जिस तरीके का आकांक्षी समाज है, उसमें 1,00,000 रुपए में बहुत सारी चीजें उसे जुटानी होती है, तो उस पर सरकार की ओर से एक्स्ट्रा भार न पड़े तो उसको टैक्स फ्री किया गया। कंपनियों को ये राहत दी गई कि आपको हम मदद करते हैं इसमें, तो ये मुझे लगता है बहुत अच्छा स्ट्रक्चर हुआ है आज के।
1: बिल्कुल, जुड़े रहिए आशुतोष जी। एक लाभार्थी को हम शामिल करते हैं, अमन त्रिवेदी जो एक डेटा इंजीनियर हैं हमारे साथ जुड़े हैं। अमन जी, स्वागत है आपका।
3: नमस्कार
1: अमन जी, अपना अनुभव बताएं, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आपको किस तरह से लाभ मिला है, और थोड़ा अपनी प्रोफाइल के बारे में भी बताएं, किस तरह से आप एक ईपीएफओ रजिस्टर्ड कंपनी में काम कर रहे हैं और कैसे आपको इस योजना का प्रोत्साहन मिला है।
3: अगर सबसे पहले बात करें कि मुझे लाभ कैसे मिला है, तो उसमें सबसे पहले बात करें तो कंपनीज जो हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, उनको सबसे पहले तो इंसेंटिवाइज करा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप फ्रेशर्स जो होते हैं, जिनका पहली बार ईपीएफओ का अकाउंट खुला है,
1: हाँ
3: उन्हें हायर करिए।
1: बिल्कुल
3: तो मैं एक फ्रेशर हूं, मैं इंजीनियरिंग करा हूं, राइट, मैं और अभी मैं एज अ डेटा इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ। तो पहले क्या होता था कि इंटरव्यू से पहले ही आपसे पूछते थे, एक्सपीरियंस है नहीं है तो नहीं इंटरव्यू होगा, तो स्किल सेट पे बात ही नहीं आती थी। अब एज अ फ्रेशर भी मौका मिलेगा बहुत लाखों करोड़ों युवकों को कि एटलीस्ट इंटरव्यू तक जा तक इंटरव्यू में जाए और बता पाए कि उनकी प्रतिष्ठा कितनी है और उनकी कैपेबिलिटीज के बारे में। और बात करें तो जैसे कि जो 15,000 रुपए की राशि जो इम्प्लॉयज को भी दी जा रही है, वो दो टाइप, या तो वो कुछ 6 महीने बाद जो 7,500 और उसके 6 महीने बाद वापस 7,500। सो मेरा मानना है कि वो कुछ के लिए रिवॉर्ड है और कुछ के लिए मोटिवेशन है, वो कि कॉरपोरेट में गए हैं जो एम्प्लॉय एज एन एम्प्लॉय 6 महीने में, उसके बाद जो ये राशि आती है वो एक रिवॉर्ड लगता है कि ये मेरे एक नया कदम था और इसके साथ एक रिवॉर्ड मिला है। तो और वर्कफोर्स में इसके बाद मैं जो हमारी यंग जनरेशन है वो ज्यादा दिख रही है और ज्यादा दिखेंगी। तो आई थिंक जॉब सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो भी ये योजना जो है ये बहुत मददगार साबित हुई है यंग जनरेशन के लिए। उस हिसाब से बहुत यंग एज के अंदर भी एक इस कॉरपोरेट के अंदर घुसने में भी बहुत मदद की है इस योजना ने मेरी और लाखों युवाओं की।
1: आशुतोष जी, आपको मैं फिर से जोड़ना चाहूंगा और कि इस योजना के तहत नए लोगों को सामने लाने का मौका मिलेगा जो रोजगार की तलाश में है, और इसमें जैसे कंपनी और नियोक्ताओं के लिए भी ये शर्त है कि अगर 50 कर्मचारियों से कम संख्या की कंपनी है तो उन्हें दो नए लोगों को हायर करना होगा, और अगर 50 से ज्यादा बड़ी कंपनी है तो 5 नए लोगों को हायर करना होगा। यानी जो नियोक्ता हैं उन पर फोकस है कि वो नए लोगों को रोजगार दें। किस तरह से इस दिशा में ये एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है कि जो फ्रेशर्स हैं और जैसा कि अमन जी ने भी बात की, जो स्किलफुल लोग हैं वो सामने आए। हाँ
2: अब क्या है कि दो इसके पहलू देखिए इस योजना के। 1 लाख रुपए तक के लिए ये है जो किसी यूथ को मिलता है, उसमें सरकार इस योजना में लेकर के आई है। दूसरी तरफ जो फर्स्ट टाइम ईपीएफओ में एनरोल हो रहे हैं, अब आज के दिन आप थोड़ी सी अगर पीछे थोड़ा पीछे घूम कर देख लें तो आप देखेंगे कि इतनी कितनी संख्या है ऐसे लोगों की जो कि बिल्कुल फ्रेशर आ रहा हो और उसे सीधे 80,000, 90,000, 1 लाख रुपये मिल रहा नहीं। ये यहाँ पर आप जो है सो एक माहौल ऐसा क्रिएट करते हैं कि कंपनियां जो हैं, और उसमें आपने ये बात भी कही कि 50 से कम है तो दो और उससे ऊपर है तो कम से कम 5 की जो बात है वो एक लिमिट भी डाल करके, क्योंकि कंपनियां भी दोनों चीजों से चलती है, एनर्जी के साथ भी चलती है, अनुभव के साथ भी चलती है, तो वो अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन उस बीच में फ्रेशर्स के लिए जो नए युवा आ रहे हैं स्किल लेकर के, उनको कैसे एक मौका मिले उसके लिए माहौल बने।
1: बिल्कुल, तो यहां पर मैं नीलेश वर्मा जी को भी शामिल करना चाहूंगा जिन्होंने रोजगार को लेकर एक अपनी कंपनी में भी इस योजना के तहत रोजगार देने में मदद की है। नीलेश जी, स्वागत है आपका, अपने बारे में बताएं, अपना परिचय दें पूरा, और साथ ही इस योजना को किस तरह से आपने इम्प्लीमेंट किया अपने लिए इसके बारे में भी बताएं।
4: धन्यवाद। मेरा नाम नीलेश वर्मा है। आई एम वन ऑफ दी को फाउंडर ऑफ इंटेलीडीबी एंटरप्राइज। वी आर वन ऑफ दी प्रीमियम स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन जो एआई के तहत एंटरप्राइज डेटाबेस में काम कर रही है। हम लोगों की सबसे बड़ी परेशानी हायरिंग थी और हायरिंग के साथ साथ लोगों को रिटेन करना था, बिकॉज हायरिंग वॉज वन पार्ट एंड रिटेंशन वॉज दी अनदर पार्ट। जितने भी न्यू ब्लड हैं आज की डेट में, नए लोग हैं जो कॉलेज पास आउट हैं, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्रेशर्स, दी प्रॉब्लम विद दीज फ्रेशर्स वर देयर रिटेंशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज दे ऑलवेज लुक एट मनी ओवर दी करियर, मोस्ट ऑफ देम। आई वुड नॉट से ऑल ऑफ देम, बट मोस्ट ऑफ देम दे लुक एट हॉपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लुकिंग एट देयर करियर मोर रादर देन स्टिकिंग टू वन ऑफ दी वन एनी ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन। अभी रिसेंटली जब से ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना लागू हुई है, इससे हमारे जैसे एम्प्लॉयर्स को काफी बेनिफिट मिला है इन टर्म्स ऑफ यू नो हायरिंग दी राइट सेट ऑफ रिसोर्सेज एंड मेकिंग देम स्टिक टू दी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बहुत ही फोकस्ड अप्रोच है और इसको मैं यू नो आई एम ग्रेटफुल टू दी ईपीएफओ एंड दी ईएम ऑर्गेनाइजेशन फॉर रोलिंग दिस आउट। हालांकि इस योजना के बारे में आज भी बहुत लोगों को पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू नो आई बीइंग एन एम्प्लॉयर आई गॉट टू नो अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन कपल ऑफ मंथ्स अगो, बट मैं इसके बारे में और डीप जानना चाहूंगा, अंडरस्टैंड करना चाहूंगा, एंड I would also want to understand how can we leverage it towards the young generation employment.
1: बिल्कुल, तो आपको क्या उम्मीद है इस योजना से? जैसे आप जैसे जो एक तरह से मैं कहूं कि देश के योग विकास में भी आप जैसे जो एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं बिजनेसेस एंटरप्रेन्योर्स, तो कैसे इस योजना से आगे आने वाले समय में एक बहुत स्किलफुल वर्कफोर्स आपको मिलने वाली है, और जो इंसेंटिव्स मिल रहे हैं उससे भी कैसे अट्रैक्ट होंगे आजकल के जो यूथ हैं वो इस योजना के जरिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में टैलेंटेड पूल हमारे सामने आ पाए?
4: जी जी, सो मेरे लिए इनफैक्ट सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह योजना केवल एक फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है फॉर द एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर, यह एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटीज एंड मैकेनिज्म है, एंड इट

0: actually encourages companies to create more jobs, and it encourages young professional to enter into the formal workforce with confidence. जब सरकार रोजगार देने वाले संस्थानों को समर्थन देती है तो उसका प्रभाव केवल कंपनी तक सीमित नहीं रहता है. इट एक्चुअली क्रिएट्स अ मल्टीप्लायर इफेक्ट्स अक्रॉस फैमिलीज, कम्युनिटीज एंड द ब्रॉडर इकोनॉमी. एवरी न्यू एम्प्लॉय सपोर्ट्स अ हाउसहोल्ड एंड एवरी हाउसहोल्ड कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द कंजम्पशन एंड एवरी सक्सेसफुल बिजनेस कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स अ नेशन बिल्डिंग. तो बेसिकली जितने भी नए रोजगार को हम प्रोत्साहन देते हैं, अलग अलग योजनाओं को के तहत सरकार हमें इंसेंटिव देती है एज एन एम्प्लॉय एज एन एम्प्लॉयर, ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी की हमारी कंट्री की कॉन्ट्रीब्यूशन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है.
1: बिल्कुल आशुतोष जी, आपसे अब मैं जुड़ना चाहूंगा. कुछ आंकड़े बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस योजना से संबंधित. जैसे जो कुल रजिस्ट्रेशन इस योजना के तहत अब तक हुआ है कर्मचारियों का, जो नए कर्मचारी जुड़े हैं, लगभग 60 लाख के करीब नए कर्मचारी इससे जुड़े हैं. और युवाओं की संख्या अगर हम देखें तो 71% के आसपास है इसमें. और साथ में एक और महत्वपूर्ण तथ्य इस योजना के तहत निकल कर आया है कि महिलाएं भी 30% के आसपास जुड़ी हैं, यानी वुमेन वर्कफोर्स भी इस योजना से बढ़ता हुआ देश भर में देखा जा रहा है. और कैसे आप देखते हैं जिस तरह से ये आंकड़े हैं कि इतनी कम समय में और इतना अच्छा उत्साह है रोजगार के सृजन में, और साथ ही जैसा कि मैंने युवाओं की और वुमेन वर्कफोर्स की तो बात की ही, क्या आपका कहना है?
2: दोनों चीजें हैं, एक तो इसकी जरूरत थी और दूसरी बात कि सरकार की ओर से मदद तो कंपनियां भी आगे बढ़ी. तो ये रजिस्ट्रेशन तो आपको दिखना ही था, ये जो जोश है वो तो दिखना ही था. जैसे अभी नीलेश जी ने बात कही ना, इनके ऑर्गेनाइजेशन में 15 लोग हैं जो फ्रेशर हैं, बिल्कुल जो जाकर के इन्होंने कॉलेज से पिक किया, कैंपस से उठाया और लेकर के आ गए. अब यही इस योजना की जो खूबी है वो यही है.
1: बिल्कुल.
2: तो ये और जाहिर तौर पर ये फोकस ही किया गया है उस एज ग्रुप पे, जो बात अभी शुरुआत में अमन जी ने भी कही ना कि 21 से 30 के बीच में जो सबसे ज्यादा फोकस भी वही है, क्योंकि वही जरूरत है, वही आने वाले दिनों में बदलेंगे विभाग को.
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर. जैसा कि नाम में ही है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, तो विकसित भारत का एक रोड मैप ये योजना देती है, क्योंकि इसमें एक तरफ इंसेंटिव है नियोक्ताओं को और रोजगार पाने वालों को, दूसरी तरफ देश में एक स्किल्ड वर्कफोर्स को औपचारिक सेक्टर में लाने की इस योजना के तहत पूरी कवायद है, जिससे कि रोजगार बड़ी संख्या में बढ़े और एक पूरा स्किल सेट तैयार हो युवाओं का, जिससे कि देश के विकास में वो अपना योगदान दे सकें. बहुत धन्यवाद आप सभी का कार्यक्रम में जुड़े और इस योजना के जो फायदे हैं और आने वाले समय में जो एक बड़ा इसका आउटकम निकल कर सामने आएगा, इन सभी बातों पर आप सभी ने विस्तार से बात की. बहुत बहुत धन्यवाद.
3: धन्यवाद. अभी आप सुन रहे थे रोजगार के नए अवसरों को गति देती प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर चर्चा. इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं. ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044.
4: Countrywide.

श्रोताओं, वक्त बीत जाता है लेकिन अपनी निशानियां हम पर हमारे आसपास छोड़ जाता है। हम उन यादों को सहेजते हुए रहते हैं, कभी याद करते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी उदासियों में डूब जाते हैं। लेकिन कुछ शख्सियत ऐसी हैं जिन्हें याद करके हम हमेशा ही खुशी महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत थी पार्श्व गायिका अभिनेत्री सुरैया जमाल शेख। आइए आज सुनहरी यादें कार्यक्रम में सुनते हैं उन्हीं के गाए कुछ फिल्मी गाने। सुरैया जमाल शेख, जिनका जन्म 15 जून 1929 को हुआ था, भारतीय सिनेमा के इतिहास की महानतम अभिनेत्रियों और गायिकाओं में से एक थी। 1940 के दशक के मध्य से 1950 के दशक की शुरुआत तक वह हिंदी फिल्मों की सबसे अधिक फीस लेने वाली सुपरस्टार थीं। उन्हें मल्लिकाए तरन्नुम और मल्लिकाए हुस्न के खिताब से भी नवाजा गया था।

सुरैया का जन्म, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, 15 जून 1929 को लाहौर में हुआ था, यानी जो अभी पाकिस्तान में है। वह जब महज 1 साल की थीं, तब उनका परिवार मुंबई आकर बस गया था। उन्हें बचपन से ही गाने का शौक था और उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के बच्चों के कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया था।

सुरैया ने 1936 में जद्दन बाई की फिल्म मैडम फैशन में मिस सुरैया के रूप में एक बाल कलाकार के रूप में अपने अभिनय की शुरुआत की। बाद में उन्होंने अपने चाचा एम जहूर की मदद से एक प्रमुख फिल्म में भूमिका पाई। 1941 में स्कूल की छुट्टी के दौरान वह उनके साथ बॉम्बे के मोहन स्टूडियो में नानू भाई वकील द्वारा निर्देशित ताजमहल की शूटिंग देखने गई थी। युवा सुरैया के आकर्षण और मासूमियत को देख उन्हें मुमताज महल की भूमिका निभाने के लिए चुना गया। यह फिल्म 1942 में रिलीज हुई और इससे उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत की।

जब सुरैया 6 साल की थी और

मुंबई में ऑल इंडिया रेडियो के बच्चों के कार्यक्रम के लिए गा रही थी, तब राज कपूर और मदन मोहन उनके सहकलाकार थे। दरअसल उन्होंने ही सबसे पहले उन्हें ऑल इंडिया रेडियो से परिचित कराया था। बाद में व्यस्क होने पर भी दोनों उनके साथ जुड़े रहे, एक बार फिल्मों में उनके हीरो के रूप में और दूसरी बार उनके संगीत निर्देशक के रूप में। ऑल इंडिया रेडियो में उस समय जुल्फिकार अली बुखारी मुंबई बॉम्बे रेडियो स्टेशन के स्टेशन निदेशक थे। संगीत निर्देशक नौशाद अली ने जैसे ही सुरैया की आवाज़ सुनी, उन्होंने उन्हें अब्दुल राशिद करदार की फिल्म शारदा में मेहताब के लिए गाने के लिए चुना। वो सुरैया के गुरु बन गए और उन्होंने उनके निर्देशन में अपने करियर के कुछ बेहतरीन गाने गाए।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनहरी यादें आकाशवाणी के रांची केंद्र से, और इस समय मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त मीता। आप सुन रहे हैं सुरैया को।

वर्ष 1944 में सुरैया की कोई फिल्म रिलीज नहीं होने के कारण 1945 का वर्ष उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ। उस वर्ष उनकी 5 फिल्में रिलीज हुई, यतीम, सम्राट चंद्रगुप्त, मैं क्या करूं आदि आदि। उन्हें 40,000 रुपये की पेशकश की गई। आसिफ ने अपनी फिल्म के लिए उन्हें ये ऑफ़र दिया था। फिल्म तदबीर उनके केएल सहगल के साथ पहली फिल्म थी, जिन्होंने जयंत देसाई के साथ फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त के गाने के रिहर्सल के दौरान उनकी आवाज़ को पसंद किया था और उसमें वो अभिनय भी कर रही थीं। सुरैया की 1946 में रिलीज पहली दो फिल्में जग बीती और 1857 थी। 1857 में जो भारतीय विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित थी, उन्होंने सुरेंद्र के साथ तस्नीम की भूमिका निभाई। अनमोल खड़ी और उमर खयाम उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी और जिसने सुरैया के करियर को मजबूती प्रदान की।

1963 में आई फिल्म रुस्तम सुहराब, जिसमें पृथ्वीराज कपूर मुख्य भूमिका में थे, उनकी आखिरी फिल्म थी। सुरैया ने कपूर के रुस्तम जुबली के विपरीत राजकुमारी शहजादी तहमीना का किरदार निभाया था। एक साक्षात्कार में सुरैया ने बताया था कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें निम्न रक्तचाप की समस्या हो गई थी और इसी के कारण उन्होंने अभिनय से संन्यास लेना मुनासिब समझा। फिल्म का गीत ये कैसी अजब दास्तां हो गई है उनके सर्वश्रेष्ठ गीतों में गिना जाता है। भारतीय सिनेमा में

के योगदान के लिए सुरैया को 1996 में स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और विमल राय मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया।

सुनहरी यादें में आज आप सुन रहे थे सुरैया के गाए कुछ फिल्मी गाने, और इसके साथ ही कार्यक्रम सुनहरी यादें समाप्त करने की मीता बोले तो आपकी मीता आपसे यही अनुमति चाहती है। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। शास्त्रीय संगीत में आइए आज सुनते हैं तरुण भट्टाचार्य का संतूर वादन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं संतूर पर राग हेमंत।

अभी आप सुन रहे थे तरुण भट्टाचार्य से संतूर पर राग हेमंत, और इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत यहीं समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति भारतीय समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को

संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की है, जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमरीका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।